0: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं
1: जी।
0: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीज़न हो जाता है कई बार, इसको आप जो है हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त हैं जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की देखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाएँ। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी जबकि इनको पता था कि ये गॉड PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया है।
1: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurated the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
2: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore Rural Vision Care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
3: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटियाँ लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशंस इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
2: अबाउट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना, द प्रोजेक्ट इज डिजाइन्ड टू डिलीवर अफोर्डेबल आई केयर टू अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज व्हाइल आल्सो क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग रूरल हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग नेटवर्क। The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
3: Adani Group ka ek mantra bhi raha hai business ke sath sath mein ki seva hi sadhna hai, aur seva hi sadhne ke mantra ke sath sath hum hamara har prayas is tarah se rahega ki khali business ke liye hum yahan nahi aaye, uske sath sath mein hum seva karte hain to wo hamare ko andar ki khushi aur milti hai.
2: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau report, NDTV.
1: We are stepping into a very short break. News and updates continue on the other side.

0: நாங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து பொறாமப்பட்டது கிடையாது, போட்டி போடுவோம் பட் பொறாமப்பட்டது கிடையாது. We are the best sportsman you can find in Tamil Nadu. அது நாங்க சினிமா துறையில இருக்கோம், நாங்க கிரிக்கெட் விளையாடி இருந்தாலும் இப்படித்தான் இருந்திருக்கோம்.
1: ஆந்திரப்பிரதேஷ் சீஃப் மினிஸ்டர் என் சந்திரபாபு நாயுடு அனவுன்ஸ் கேஷ் இன்சென்டிவ்ஸ் ஃபார் ஃபேமிலிஸ் ஹேவிங் மோர் சில்ட்ரன், சேயிங் தட் த ஸ்டேட் மஸ்ட் ஆக்ட் டு ரிவர்ஸ் இட்ஸ் டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷன் க்ரோத் ட்ரெண்ட். அட்ரெஸிங் அ பப்ளிக் மீட், நாயுடு செட் தட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வுட் ப்ரொவைட் ருபீஸ் 30,000 ஃபார் த பர்த் ஆஃப் த தேர்ட் சைல்ட் அண்ட் 40,000 ஃபார் த ஃபோர்த் ஒன். The TDP said that this policy is being brought in to boost the falling fertility ratios in the state. The Congress has hit out at Andhra Pradesh government's move and has criticized the decision, questioning the practicality of such a policy. The government population move is being seen to encourage higher birth rates amid a sharply falling total fertility rate and declining rural family sizes.
2: We had adopted national policy of having two children, and that was how it was propagated and advertised in the entire country. Now if somebody is advising against him, it is not only him. Earlier also there were some pracharaks who were advising people to have more children. There were people from different walks of life who were advising in this regard. I think these people, for their popularity and for all kinds of reasons, whoever are advising for third child, fourth child, or large number of children and a bigger family, they are actually working against the interests of our country. They are working against the interests of family life in our country.
3: Andhra Pradesh today has a TFR fertility ratio of only 1.7%, whereas the replacement level is 2.1%. That is the reason why today our honorable leader Mr. Naidu is appealing to people to have more children. We have to manage our population well, then only we'll have the required young workforce for the future. And that is the reason why the honorable CM had announced that every family which has a third child will be given a financial assistance of 30,000, and a family having a fourth child will be given a financial assistance of 40,000.
4: That is wrong first. But what will he do? When we strictly followed this Government of India's family planning plan scheme, the northern states did not follow that. But southern states strictly followed it, and our population is under control. But northern states have not followed, and their population is more. But this BJP government wants to make use of this wrongful doing of the northern states.
5: देखिए, आबादी को लेकर पहले भी ये चिंता रही है कि बहुत सी जगह आबादी बढ़ रही है, बहुत सी जगह घट रही है. तो जहाँ घट रही है वहाँ उसमें आंध्र प्रदेश भी है. तो चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने तौर पे स्कीम बनाई है, और सरसंचालक जी ने भी कहा था कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए. तो देश में सबको 3 बच्चे कम से कम पैदा करना चाहिए.
6: देखिए, ये इस तरह के ऐलान हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से भी होते हैं, और राजनेता भी अलग अलग फॉर्म में करते रहते हैं. ये बयान भी एक उसी क्रम में आया है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता. वजह क्या है कि हिंदू जो है गर्भ में बच्चों को मार रहा है. अगर उसे पता चल जाए कि लड़की है पेट में, तो गर्भपात करा दिया जाता है. जब हिंदू खुद अपने बच्चे को पेट में मारेगा, तो जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद उससे कैसे की जा सकती है?
1: Well, with that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खाबेन झालमुड़ी ना माचर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
4: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
5: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
0: One clip that went more

0: announcing that India had elevated ties with Sweden to a strategic partnership, adding that cooperation between the two democracies was important in a turbulent global political landscape that's emerging.
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। इंडिया ईयू एफटीएसए इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सुला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप और मोबिलिटी एग्रीमेंट से हमारी स्ट्रेटेजिक और पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप को नई गहराई मिली है। इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने हमारी साझेदारी को सशक्त बनाया है। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
2: The European Union, Sweden and India all recognize the immense potential that lies in deepening our partnership, not least when the world is as complicated and unpredictable as it obviously is today. Prime Minister Modi, your visit marks another milestone in this history of India-Sweden relations. Today we have launched a strategic partnership and a joint action plan for our shared objectives. We upgrade and we modernize existing areas of cooperation, and we expand this cooperation to new areas

0: टीवी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आटे और मसाला।
4: इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू। फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स। योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज। इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी, वीक नाइट्स ऑन एनडीटीवी प्रॉफिट।
5: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द

0: excellence measured by those who built it. Presenting the
1: Welcome back. Let's get you the latest when it comes to 7 days on and 31-year-old Twisha, who died in Bhopal. Her body still in the mortuary. The family is refusing to take the body without an assurance by the court. The family says there'll be no conclusion till they get justice. And of course, it is a husband who continues to be on the run. Twisha's husband's anticipatory bail hearing is coming out today. In fact, the family has been protesting. We have Manpreet joining us. Manpreet, there was a protest. In fact, protest kar rahe the unki family chief minister ke ghar ke bahar kal. Unki demands kya hain? Zara bataiye. Wo keh rahe hain ki wo cremation nahi karenge jab tak unko justice nahi milega. Wo AIIMS jana chahte hain ek fresh postmortem ke liye.
2: बिल्कुल, देखिए आज तुषा की मौत को 7 दिन हो चुके हैं और अब तक उसकी जो डेड बॉडी है वो भोपाल एम्स की मॉर्चुरी में रखी हुई है। उसके परिजनों ने उसकी बॉडी लेने और अंतिम संस्कार करने से तब तक मना कर दिया है जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। कल वो सीएम के हाउस पर भी पहुंचे थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उन्होंने मिलने की कोशिश की थी, लेकिन हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। उनका ये कहना है कि ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में वो करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में हुआ है उस रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि उसने फांसी लगाई है, उससे उसकी मौत हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे मौत के घाट उतारा है। उसकी सास और उसके पति पर उन्होंने आरोप यहाँ पर लगाए हैं और यही वजह है कि वो इसे आत्महत्या नहीं हत्या बता रहे हैं और भोपाल की बजाय अब वो दिल्ली एम्स में सेकंड पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं और इसी की परमिशन वो चाहते हैं। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई है जिसमें ट्विशा का जो पति है समाज सिंह

0: बोला कि बेटे गलत डिसीजन हो जाता है कहीं पर, इसको आप जो है हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है और मैं इसमें आज हिचक्कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाएं। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये गॉड PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया।
1: It was a cousin and the father of Tushar speaking to NDTV. We're going to keep tracking that story. For now, we're slipping into a very short break.

0: 5 p.m. and spoke about alleged harassment at a matrimonial home. At 10:20 p.m., which is 15 minutes after, the family was informed that Twisha was not breathing, raising serious questions about what really happened during those crucial 15 minutes. Just yesterday, Twisha's father and cousin spoke to NDTV, describing their ordeal. They are currently distraught. Here's what they told us.
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है. क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी.
2: Yes, madam, absolutely. The moment we realized that our daughter has passed, the moment we got the call that she is no more, the three words that were spoken to us, we immediately started from Delhi, from Ajmer. The family came here. And after coming here, all we are seeing, all we have witnessed is horror when we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying. The continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the Women Commission, the Mahila Thana, the Human Rights Commission, the Office of the Commissioner of the Police. We were made to run from pillar to post, and it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered, that too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested, the proceedings conducted under undue pressure. In the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening, the courts are getting changed? There must be some certain reason behind it.
1: Navnidhi ji, main aapke paas aana chahungi. परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियां थी? त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
3: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीजें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती है.
1: जी,
3: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ. मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीज़न हो जाता है कई बार, इसको आप जो है हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना. और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए. ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ. इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है. मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाए. अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी. जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की जो दूसरा समर सिंह है उसकी

0: पार्टिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया।
1: Meanwhile, my colleague Divyankar has filed a ground report from the parents' house in Noida. Here's what he found.
2: भोपाल में रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह की बहू तुषा शर्मा के सुसाइड के मामले में नए नए जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं, और NDTV की टीम की मौजूदगी तुषा शर्मा के जो ग्रेटर नोएडा वाला घर है उसके ठीक बाहर है, और मेरे ठीक पीछे जो ये सोसाइटी आप देख पाएंगे 16th Avenue गौर सिटी 2, इसी सोसाइटी में जो के ब्लॉक है वहाँ पर तुषा शर्मा अपने माता पिता के साथ रहती थी। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तुषा ने जो 11-12 मई की रात में भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 31 साल की तुषा शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और जिसके बाद मायके पक्ष ने उसकी सास रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह और जो पति तुषा के हैं समर सिंह पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। और जो शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसमें हैंगिंग बताई गई है वजह है जिसके चलते तुषा की मौत हुई है, और कई जगहों पर शरीर में चोट भी जो है वो भी मिली है। और ससुराल पक्ष ने अंतिम संस्कार के लिए शव मांगा तो मायके पक्ष यानी तुषा के जो परिवार वाले हैं माता पिता हैं उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। और आपको बता दें कि तुषा मूल रूप से जो नोएडा है यहीं पर बीते 15 सालों से अपने माता पिता के साथ रह रही थी, और एक साल पहले जो शादी है उनकी भोपाल में हुई थी, रिटायर्ड जज के परिवार की वो बहू थी, लेकिन किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई ये लगातार सवालों के घेरे में है। इसी को लेकर तुषा शर्मा के जो पिता हैं वो ससुराल वालों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से लगातार तुषा को प्रताड़ित किया जा रहा था, और जिसके चलते तुषा ने जो सुसाइड जैसा कदम है वो उठाया।
1: Well, you know, the investigation into the death of Tusha Sharma is now focusing intensely on the final 15 minutes before she was declared dead. According to her family, Tusha called her mother at 10:05 p.m. on the 12th of May and spoke about alleged harassment at her matrimonial home. Her brother says the call disconnected abruptly after Tusha's husband entered the room, and what happened next is now central to this case. The family says they repeatedly tried contacting Tusha, her husband and other family members, but they received no response initially. But at around 10:15 p.m., the in-laws allegedly answered the call. The family says they urged them to immediately check on Tusha. Then at approximately 10:20 p.m., the family was informed that Tusha was not breathing. She was later taken to a hospital and declared dead on arrival. Police have registered a case against the husband and mother-in-law under charges including dowry harassment and abetment to suicide. Investigators, meanwhile, are now examining call records, digital evidence, also forensic findings, to establish whether the timeline and statements actually align consistently. And of course, beyond the investigation itself, this case is once again raising disturbing questions around alleged harassment within marriages, delayed intervention, and whether warning signs communicated privately are being recognized too late. My colleague Harpreet is tracking the latest for us. She joins us live at the moment. Harpreet, we're given to understand investigators are now closely examining the final 15-minute timeline before Tusha Sharma's death.
3: अब बिल्कुल देखिए, तुषा के परिजनों का भी यही कहना है कि बहुत जल्दबाजी में ये पोस्टमार्टम किया गया है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। ये पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में किया गया है। मौत की वजह बताई गई है कि उसके गले में फंदा लगा था और उसने खुद फंदा लगाकर आत्महत्या की है। परिजन पिछले 7 दिन से यही मांग कर रहे हैं कि तुषा का एक और पोस्टमार्टम यानी सेकेंड पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करवाया जाए जिसमें उनको सही रिपोर्ट की उम्मीद है। उनका कहना है कि जो ससुराल वाले हैं वो कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कह रही है कि तुषा ने आत्महत्या की है, उसने फंदा लगाकर खुद को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तुषा के परिजनों का कहना है कि ये थ्योरी गलत है, तुषा को मारा गया है, उसकी बॉडी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरीज भी मिली हैं, यानी कि पहले उसे मारा पीटा गया और बाद में जब उसकी मौत हो गई तो फांसी के फंदे पर चढ़ाकर इसे

0: आत्महत्या बता दिया गया। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि ट्विशा की मौत 12 मई को हुई थी और आज तक उसका शव भोपाल एम्स के मोर्चुरी में रखा हुआ है। परिजनों ने अभी तक शव नहीं लिया है। उनका कहना है जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करवाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक वो ट्विशा का शव भोपाल एम्स मोर्चुरी से नहीं लेंगे। 7 दिन बीत चुके हैं और भोपाल एम्स के डॉक्टर्स ने भी पुलिस को कहा है कि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो सकती है। ऐसे में परिजनों को कहा जाए कि वो ट्विशा का शव लें और उसका अंतिम संस्कार करें। फिलहाल आज ट्विशा के पति की अग्रिम याचिका जो जमानत की लगी है उस पर सुनवाई होनी है और ये उम्मीद भी की जा रही है कि पुलिस भी कोर्ट में अपील कर सकती है कि ट्विशा के परिजन उसकी डेड बॉडी भोपाल एम्स से लें और उसका अंतिम संस्कार करें। तो फिलहाल आज देखना होगा कि क्या ये अनुमति पुलिस की तरफ से परिजनों को दी जाएगी, इसके साथ ही क्या उसके पति को आज जमानत मिलेगी या नहीं, या फिर सेकंड पोस्टमार्टम की अनुमति ट्विशा के परिजनों को मिलेगी। जी
1: well, as Harpreet is reporting from Bhopal, Twisha's family is raising questions about the postmortem that's already been conducted, requesting for a fresh one to be conducted at Ames, Delhi. Harpreet, meanwhile, we are given to understand the family has alleged pressure surrounding termination of a pregnancy and also the transfer of financial assets.
0: बिल्कुल, देखिए परिजनों का यही कहना है कि वो बिल्कुल भी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि सेकंड पीएम की उन्हें रिपोर्ट नहीं मिल जाती, अनुमति नहीं मिल जाती। जब अनुमति मिलेगी, अगर सेकंड पीएम होगा तो उसकी जो रिपोर्ट होगी उसके बाद वो अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन वो किसी भी बात को, ना पुलिस ना ही शासन की बात को मानने के लिए कल उन्होंने मुख्यमंत्री के OSD से भी मुलाकात की थी, लेकिन परिजन किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक सेकंड पीएम की अनुमति नहीं मिलेगी वो ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उसकी डेड बॉडी अभी भी भोपाल एम्स की मॉर्चुरी में रखी हुई है। पेच यहीं पर फंस रहा है। उम्मीद है कि आज पुलिस कोर्ट में अपील कर सकती है, जिसके बाद कोर्ट निर्देश ट्विशा के परिवार को दे सकता है कि वो डेड बॉडी ले जाएं। लेकिन देखने वाली बात है कि आज कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश मिलेंगे।
1: Harpreet, as always, thank you so much for breaking down the latest details for us. We will of course revert to you for regular updates. Well, as this investigation into Twisha Sharma's death intensifies, investigators are now trying to answer a series of critical unanswered questions. The first one revolves around timing. What exactly happened between 10:05 p.m. when Twisha last spoke to her mother and 10:20 p.m. when the family says they were informed she was not breathing? Police are now examining call records, statements, and also forensic evidence to reconstruct those final minutes. Then comes the post-mortem findings. The report mentions death due to antemortem hanging, but it also notes multiple antemortem injuries on the body. Investigators will now try to determine how those injuries were sustained and whether they are connected to the circumstances surrounding Twisha's death. Another major question is the medical response timeline. As we've already mentioned, the family has alleged there was a delay in taking Twisha to hospital despite the facility actually reportedly being nearby. So police are expected to verify hospital records and movement timelines too. You must note, investigators are also examining why repeated calls made by the family after Twisha's final conversation allegedly went unanswered for several minutes. And finally, investigators may look at whether Twisha had previously shared concerns about the alleged harassment she mentioned with friends, with relatives, or through any online communication, especially after reports of an alleged Instagram conversation have surfaced publicly. So at this stage, police have registered a case of dowry harassment and abetment to suicide, and this investigation remains ongoing. All right, on that note, let's turn our attention now to the Prime Minister's action-packed agenda. He arrived in Sweden after receiving a ceremonial fighter jet escort. He held talks that focused on trade, on artificial intelligence, on defense, and green transition cooperation. In fact, he was awarded Sweden's highest honor in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and visionary leadership. And addressing a joint press briefing, Prime Minister Modi announced that India had elevated ties with Sweden to a strategic partnership, adding that cooperation between the two democracies was important in a turbulent global political landscape. We've got crucial reactions lined up for you. Listen in, followed by my colleague Mohammed Ghazali's report.
2: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्व

0: मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। इंडिया ईयू एफटीएसए इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सुला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप और मोबिलिटी एग्रीमेंट से हमारी स्ट्रेटेजिक और पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप को नई गहराई मिली है। इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने हमारी साझेदारी को सशक्त बनाया है।
1: The European Union, Sweden and India all recognize the immense potential that lies in deepening our partnership, not least when the world is as complicated and unpredictable as it obviously is today. Prime Minister Modi, your visit marks another milestone in this history of India-Sweden relations. Today we have launched a strategic partnership and a joint action plan for our shared objectives. We upgrade and we modernize existing areas of cooperation, and we expand this cooperation to new areas shaping the future: innovation, emerging technologies, AI, space, and geospatial technology.
2: Since you hosted me in New Delhi for our groundbreaking EU-India summit, we succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to one quarter of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra Port in your home state in Gujarat, and in doing so, creating jobs and prosperity for our people.
3: India and Sweden sent out a strong message in the joint statement when Prime Minister spoke about Pahalgam terror attack, saying that how India received Swedish support from the Swedish Prime Minister during the Pahalgam attack, and Prime Minister Modi, while issuing a joint statement alongside Swedish Prime Minister as well as Ursula von der Leyen, the EU Commission President, Prime Minister said that how he is grateful to the Swedish Prime Minister for extending his support during the Pahalgam terror attack. Prime Minister also spoke about that how both the countries condemn terror and know the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: What's the drama?
5: Hello, peace people.
6: Kolkata drama.
7: Highest number of voters.
8: Tamil Nadu votes decisive.
9: Afraid of Africa, mahal hai. Udhampur batrao kya gaya ha?
10: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
11: TVK headquarters here.
12: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
13: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
14: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
10: So I really love the channel. I saw Shiv sir, and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
15: Happy meeting NDTV team here.
16: Thanks for NDTV.
17: Padmija Joshi.
18: Shreya Shide.
19: This is Shreya Ghosh.
20: Sandeep Chaudhary.
21: Manoj Yalowiwal.
22: Deepak Bopanav.
23: This is Vikti.
24: Tanushka Datta.
25: Sam Daniel.
26: Vika Ramaswamy.
27: Ritu Raj Purohit.
28: Shiv Arur.
29: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
30: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
31: वाओ मामा क्या स्वाद है।
32: अरे मेरे राजा
33: का राजा आर प्योर मसाला।
34: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल। वी आर विथ यू।
35: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
36: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ। भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
37: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
38: ओडिशा का है। महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
39: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
40: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
41: And that kind of victory is truly astonishing, and I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
2: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
42: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधू,
43: सो मेनी अटैक्स,
42: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
43: It's incredible.
42: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
43: Welcome to Left, Right, Center.
42: Hard facts.
43: War struck country.
42: Hard questions.
43: In the Ukraine.
42: 30 years of trust.
43: In the Kargil area.
42: North Ukraine.
43: In France. In Italy.
42: At Srinagar.
43: I am in France.
42: Vishnu Shom for NDTV. Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: अक्रॉस द कंट्री ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV network.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर प्योर मसाला।
7: इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू। फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स। योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज। India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
8: What seems settled?
9: Well, in a tragic incident, a 25-year-old woman has died by suicide. This happened in Greater Noida. This woman was married and she has jumped off from the roof. She has died. She has passed away. The in-laws have now been accused of harassing her for dowry, while her family members have alleged that the girl was beaten up. The marriage took place only 14 months ago. Police have taken the body in custody now. They've also sent it for post-mortem. The husband is the accused here, also the father-in-law. The father-in-law and the husband both have been arrested by police officials today. The incident took place in Jaipura of Ecotech 3. This is in Greater Noida. More details are awaited in the suicide case that happened in Noida as well. 14 months ago, the marriage took place. The marriage took place on the 11th of December 2024. Woman who has died, who has passed away, her husband and his family were repeatedly demanding 50 lakhs from her is what we understand, and this was in the form of dowry, and the family had already given them a Scorpio car and 11 lakh cash that was given to them, and gold that was worth over 50 lakh that was also given. My colleague Akhil joins us with more details on this. Akhil, a Greater Noida case has now emerged even as we were dealing with something that happened in Noida. Tell us what's happening, what happened in the case of the woman who died in Greater Noida. Where did this happen and what are the police saying?
10: Well, that's right. If you see, this is a case of greed and recklessness in which what we have seen that an unfortunate tragedy has come out from Gautam Budh Nagar's Greater Noida area, in which what we have seen that a 25-year-old Deepika Nagar, a young woman, died by suicide. This is what the initial inputs have come out. But the family members are alleging that in-laws family basically pushed her from the terrace. So what is the actual reason? Things will come out in the later stage. But right now you can see the visuals just outside the Sector 94 post-mortem house. This is the mortuary center where we are standing right now. And I'm going to speak to some of the family members over here. Achha, mujhe ye bataiye, kya naam hai aapka?
11: Sunil Nagar.
10: सुनील जी, क्या रिश्ता है आपका दीपिका नागर?
11: जी भतीजी लगती है।
10: भतीजी लगती है
11: जी।
10: पूरा का पूरा मामला क्या है, कब, किस रात हुआ, कितने बजे हुआ?
11: ये रात हमारे पास कॉल आई उसके ससुराल से, दीपिका नागर के, कि आपकी बिटिया गिर गई है और आप हॉस्पिटल में आ जाइए। तो जब परिवार के लोग शारदा हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ देखा कि बेटी के ऊपर मारपीट के निशान थे बहुत ज़्यादा और वो बेसुध। तो डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि ये अब नहीं रही। तो उसके बाद जो ससुराल वाले थे वो वहाँ से भाग गए और बुरी तरह से मारपीट करके उसकी
10: जो शरीर पे जो वुंड्स हैं, किस तरह के जख्म जो है, किस तरह
11: पूरे शरीर पर कट के निशान भी हैं, मारपीट के निशान हैं, नील पड़े हुए हैं पूरे शरीर पर। काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान हैं, काफ़ी
10: देखिए कट के जो लेजन्स के मार्क, कट के मार्क्स अलग होते हैं, ठीक है, अगर कोई इंसान सुसाइड करता है, कूदता है, ठीक है, उसके चोट अलग,
11: इसके तो कट के निशान भी हैं, पेट में एक छेद भी हो रखा है जो कि संभवतः या तो गोली मारी गई है या कोई सरिया या पेचकस नुमा कोई चीज़ उसके पेट में दी गई है।
10: इस मामले के अंदर पुलिस ने अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है, लड़की के पिता पति को और उनके ससुर को। क्या आप संतुष्ट हैं अभी तक के इन्वेस्टिगेशन?
11: हम अभी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बेटी को दुर्दांत तरीके से तड़पा तड़पा के मारा गया है, उसके पूरे परिवार की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सही है। उसमें चार पांच लोग और हैं जिनके नाम है, उसकी जो सास है, नंद है, सब लोगों के नाम है इसमें, बाकी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये जो व्यक्ति है ये भूमाफिया टाइप का व्यक्ति है और राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है, जो इसके जो ससुर है मनोज, ये राजनीतिक रसूख है इसका अच्छा खासा, तो ये प्रभावित करने का प्रयास करेगा पूरा इस मामले को, ये क्योंकि इसका रोज का काम है पुलिस प्रशासन के पास में उठना बैठना, वहाँ पे प्लॉटिंग करता है, लोगों के प्लॉटों पे कब्जे करता है, इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे वहाँ पे पहले से दर्ज है।
10: पहला सवाल, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता थी तो उस घर में बेटी क्यों दी? और दूसरा सवाल, जब आपने शादी करी बेटी की 14 महीने पहले, उसके बाद आपने स्कॉर्पियो कार दहेज में भी दिया, दहेज देना भी गलत है, ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि फिर वो लोग फॉर्च्यूनर मांग रहे थे और 50 लाख कैश एडिशनल मांग रहे थे, डिस्पाइट डेट कि आपने उनको पहले जो है 50 लाख का सोना भी दिया, तो आपने पुलिस में पहले कंप्लेन क्यों नहीं की?
11: देखिए मैं बताता हूँ, जो पहला जो जब शादी करते हैं तो उस टाइम पे जो भी दिया जाता है हर पिता अपनी बेटी के लिए अपने हैसियत के हिसाब से देता है, ठीक है, उसे आप एक बेटी के लिए गिफ्ट के तरह से आप मान सकते हैं, उसमें कोई मांग वाली बात नहीं होती है जो पहला जो होता है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपको पहले पता नहीं था, हर आदमी के दो चेहरे होते हैं, हमें जब बताया गया था इसके बारे में तो इनका बताया गया था कि इसके स्कूल हैं, इसका वाकई में वहाँ पे स्कूल है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हाँ बाद में पता चला कि ये जो स्कूल है ये सारा अवैध प्रॉपर्टी पे इसका निर्माण है और इसका जो काम है ये अवैध प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है और इस तरह से ही भूमाफिया बना हुआ है।
10: आप लोगों के परिवार की बेटी को कितने महीने से परेशान कर रहे थे वो?
11: इसको कई महीने से परेशान किया जा रहा था, मांग की जा रही थी, तो इन्होंने बेटी ने कल अपने पिताजी को फ़ोन करके बताया, तो इसके पिताजी वहाँ पर गए तो घर पे जाकर के इन्होंने आराम से समझाया, बातें की, तो कोशिश की कि ऐसी चीज़ें हैं पारिवारिक चीज़ें हैं तो आराम से हल हो जाएं, कुछ ऐसा ना करना पड़े, लेकिन जैसे ही वो वापस घर आए, घर आने के कुछ घंटे बाद ही, आधे या एक घंटे के बाद ही कॉल आ गई कि आपकी बेटी को चोट लग गई और आप हॉस्पिटल आ जाइए, तो जब वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ बेटी मरी।
10: एक चीज़ और बताइए, दिन ब दिन जो है वो लालच ग्रीड जो है वो बढ़ता जा रहा था, आखिरी में जो डिमांड्स थी तीन बड़ी मांगें।
9: थैंक यू सो मच, लेट्स आल्सो लिसन इन टू व्हाट द मदर of the victim said today, mother of Deepika Nagar, who has unfortunately passed away after being harassed and beaten up by her in-laws in Greater Noida. Her mother has spoken and this is what she said.
12: क्या हुआ आपकी बेटी के साथ?
13: वो वही हम वो तो कुछ भी न पता कहा हुई है।
12: अच्छा।
13: वो वही हम वो न पता कुछ भी। भैया मैं वो पते न कुछ भी कहा करो हुयो मेरी की गए
14: अच्छी वाली गई हमारी बेटी तो यहां से
13: भैया मैंने तो
14: दादी खुशी
13: अरे मोटा तो कल भी अच्छी बतलाई ओ मेरी लाडो
12: कैसे पता लगी आपको
14: उन्होंने फोन करा
13: फोन आया उनको ही
14: फोन आया
13: ओ
14: अब तुम्हारी बेटी जीने पर से गई थी
13: जा
12: क्या हुआ आपकी बेटी के साथ
13: ओ वही हम वो तो कुछ भी न पता कहा हुए
9: We are also tracking Tusha Sharma's death mystery. A 33-year-old Noida woman was found dead 5 months after her marriage. While Tusha's family has claimed harassment, in-laws have said that the death was by suicide. Tusha's father has said that Tusha's husband and her mother-in-law, a retired judge, are the main culprits in this case. Now, in the latest update, Tusha's latest Insta chat has also surfaced where she had written to a friend on how she feels completely trapped in the marriage. Now, the final 15 minutes before Tusha's death have become the biggest focus of the investigation that's going on. According to the family, Tusha called her mother at 10.05 p.m. and she spoke about the alleged harassment that she was going through in her home by her in-laws. And this was at 10.20 p.m. that her family was informed that Tusha was not breathing anymore. This has raised several questions and several serious questions about what really happened. Yesterday, Tusha's father and cousin spoke to NDTV describing what they went through. Listen in to what they said.
15: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है। क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उस इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी,
16: यस मैडम, एब्सोल्युटली। द मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट आवर डॉटर हैज पास्ड, द मोमेंट वी गॉट द कॉल दैट शी इज नो मोर, द थ्री वर्ड्स दैट वर स्पोकन टू अस, वी इमीडिएटली स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अजमेर, द फैमिली केम हियर, एंड आफ्टर कमिंग हियर ऑल वी आर सीइंग, ऑल वी हैव विटनेस्ड इज हॉरर व्हेन वी सॉ द डेड बॉडी ऑफ माय सिस्टर, द इंजरीज दैट शी वाज कैरिंग, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the Women Commission, the Mahila Thana, the Human Rights Commission, the Office of the Commissioner of the Police, we were made to run from pillar to post, and it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered, that too in a very shoddy manner. Thereafter we have been witnessing the grant of bail almost uncontested, the proceedings conducted under undue pressure in the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening the courts are getting changed? There must be some certain reason behind it.
15: Navnidhi ji, main aapke paas aana chahungi. Bab, परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियां थी? त्विषा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
17: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीजें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं।
15: जी,
17: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार को दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीज़न हो जाता है कई बार, इसको आप जो है हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे, जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है, और मैं इसमें आज हिचक्कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त हैं, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि

0: रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया।
1: So those are the family members of Twisha Sharma, 31-year-old woman from Noida who got married to an influential family in Bhopal in Madhya Pradesh. She died under very mysterious circumstances on the 12th of May, and now her family members are demanding justice and transparency. They have also approached the Chief Minister's office in this regard, and they feel that it is the in-laws who have played a murky role in the passing away of their daughter. But the in-laws have said that this is entirely death by suicide. But what does the post-mortem report of Twisha Sharma say with regard to her cause of death? The anti-mortem details, which is the pre-death details, say that the death took place by hanging by ligature, which is the strap that's used in suicides. The report also says that Twisha was alive at the time of the hanging. Injuries have also been recorded. Multiple injuries have been recorded in the body. Bruises and other wounds have been found in different parts of the body. Pregnancy details have emerged on medical termination of pregnancy that was done a week earlier. That's what we know from the report. Forensic examination samples have been sent to the FSL lab, and this is to check for toxic substances for poisoning. Remember, Twisha Sharma, just minutes before she passed away, she died, she reached out to a friend of hers and she said that she felt trapped in her marriage. Now, her family members have intensified their protest, seeking justice and transparency in the investigation. My colleague Harpreet joins us with more details on this. Harpreet joins us from Bhopal. Harpreet, ye bataiye ki inke jo family members hain, in-laws jo hain Twisha Sharma ke, inka kya kehna hai, aur police ka investigation kahan tak gaya hai, aur jo inke family, Twisha ke jo family members hain, inhone chief minister ke office tak ko bataya hai iske bare mein, उनकी तरफ से कोई इंटरवेंशन हुआ है कि नहीं?
2: बिल्कुल, देखिए 5 महीने पहले जिस बेटी की शादी धूमधाम से की गई थी, अब उस बेटी की मौत के बाद न्याय के लिए उसके परिजन पिछले 7 दिन से भोपाल में लड़ाई लड़ रहे हैं। कल वो मुख्यमंत्री के OSG से मिले थे और उन्होंने यहाँ पर भी गुहार लगाई थी कि ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम करवाया जाए, इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए, उसके पति और सास पर और ज़्यादा जो कड़ी धाराएँ हैं वो लगाई जाए। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक पहलू ये भी है कि मौत को ट्विशा की 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसका पोस्टमार्टम होने के बाद भी उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, उसके परिजनों ने उसका शव अभी तक नहीं लिया है। भोपाल एम्स की मॉर्चुरी में उसका शव रखा गया है। भोपाल एम्स प्रबंधन ने पुलिस को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द ये शव यहाँ से उठाया जाए, क्योंकि अब डीकम्पोज होने की स्थिति में ये शव पहुँचने वाला है। इसके साथ ही अब पुलिस ने भी यहाँ पर निवेदन किया है ट्विशा के परिजनों से, लेकिन ट्विशा के परिजन किसी भी हाल में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यानी कि कड़ी धाराएं और उसके पति और सास पर नहीं लगाई जाएंगी, उसकी जमानत जो उसकी सास को शुक्रवार को मिल चुकी है वो रद्द नहीं की जाएगी। भोपाल एम्स से अब जो फर्स्ट रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, उसके बाद दूसरा जो पोस्टमार्टम है वो दिल्ली एम्स में करवाया जाए और दिल्ली में ये मामला शिफ्ट किया जाए। ये मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी, वो ट्विशा का शव भोपाल एम्स मॉर्चुरी से नहीं लेंगे, उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आज इस मामले में अपडेट ये है कि ट्विशा का परिवार और उसके ससुराल पक्ष एक बार फिर भोपाल कोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर ट्विशा के पति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई है। वहीं ट्विशा का परिवार आज अपील कर सकता है कि इस जो पोस्टमार्टम की मांग वो कर रहे हैं दिल्ली एम्स में, वो अपील आज कोर्ट में कर सकते हैं। पुलिस भी अपील कर सकती है कि ट्विशा का परिवार भोपाल एम्स में जो उसका शव रखा है वो लें और उसका अंतिम संस्कार करें। तो रोजाना मामला उलझता जा रहा है बजाय सुलझने की। 7 दिन हो चुके हैं और ट्विशा का परिवार कम से कम 20 सदस्य अभी भी भोपाल में मौजूद हैं।
1: The last rites are yet to be performed. Thank you, Harpreet, हमसे जुड़ने के लिए. Let's also tell you what happened in the final moments before Twisha passed away at 10:05 p.m. on the 12th of May. Twisha Sharma, the woman from Noida who was married to a family, an influential family in Bhopal, she has died under mysterious circumstances. It was just minutes before her death at 10:05 p.m. on the 12th of May that Twisha made a call to her mother. It was a distress call. She alleged harassment, abuse by her in-laws, and she shared details of the troubles, the trauma that she was facing inside her house. And during this emotional conversation, the call was suddenly disconnected after Twisha

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी नॉइज फिल्टर्ड नंबर्स डिकोडेड इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ वी कनेक्ट द डॉट्स योर डेली एज योर ग्लोबल एडवांटेज इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी वीक नाइट्स ऑन एनडीटीवी प्रॉफिट।
5: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
9: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: 30 days and one name everywhere, Trisha Krishnan. From viral social media moments to massive buzz around Karuppu, Trisha has dominated headlines and fan conversations alike. Even amid cancelled screenings and online frenzy, the hype only grew stronger. 2 decades into cinema, Trisha continues to prove why she remains one of South India's biggest stars.
1: 30 days and one name everywhere. From social media storms to standing ovations, the actor has turned every appearance into a headline moment. It began with Trisha's emotional post, "Love is always louder." 4 words that sent the internet into an overdrive. Fans rallied behind her, trolls went into a meltdown mode. And suddenly, Trisha was no longer just trending. She was owning the narrative. Then came the nostalgia wave. Old clips resurfaced, iconic songs returned to reels. And fans reminded everyone why Trisha remains one of South cinema's most enduring stars. 2 decades in the industry, yet the fandom only seems to grow louder. But beyond the glamour, this month spoke volumes of Trisha's resilience. Even before its release, Trisha's film, Karuppu, had already become one of the biggest talking points in Tamil cinema. From delayed screenings to massive online frenzy, the film found itself at the center of non-stop buzz. Despite Tamil Nadu government granting special permission for 9 a.m. shows, theatres across the state were forced to cancel screening amid reported financial hurdles. As confusion mounted, anxious fans flooded ticketing platforms and social media, desperately searching for updates. Even amid uncertainty, the hype refused to slow down. Advance booking reportedly crossed Rs. 7 crore, exhibitors openly backed the team, and fan anticipation only intensified. Just silent confidence and a fan base that refused to look away. From silver screen queen to social media phenomenon, with endless viral posts and unending buzz, social media for 1 month has had only one main character, Trisha Krishnan. Bureau Report, NDTV.
0: Fuel prices have sparked a fresh political showdown, with the opposition attacking the centre over the second price hike of CNG. CNG prices have gone up by 1 rupee per kilogram. This was the second CNG price hike in Delhi NCR since the 15th of May. Congress has blamed the government for failing to tackle the impact of the Gulf conflict, saying common people are suffering while the Prime Minister is abroad. The BJP has hit back, accusing Rahul Gandhi of irresponsible remarks and claiming India has seen only a minimal fuel price hike despite global disruptions caused by the war. Let's bring you some reactions.
2: Diesel aur petrol ke daam itne bada rahe hain. मोदी जी अगर यही इलेक्शन के पहले करते तो मालूम होता था. उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के इन्फ्लेशन अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा. इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल डीजल गैस सबके दाम बढ़ाए. तो इससे ये दर्शाता है कि फोर साइटेडनेस हमारे बीजेपी को सरकार को मोदी साहब को नहीं है.
3: तेलंगाना सरकार 36-37% वैट कलेक्ट करते हैं हर लोगों के ऊपर. क्यों आप लोग अगर जनता के ऊपर प्रेम है तो क्यों नहीं करते? हम किए ना मोदी सरकार बीजेपी सरकार हम वैट कम किया है अलग अलग स्टेट्स में. आप क्यों नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं. राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है. सारी दुनिया से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं. लगभग 40 देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं 40 देशों से.
4: देखिए पेट्रोल और डीजल और सीएनजी और गैस के जो दाम हैं पूरे दुनिया में बहुत बढ़े हुए हैं. कहीं 40%, कहीं 44%, कहीं 20%. सिर्फ भारत है जहां इसको सिर्फ 3% के आसपास ही बढ़ा है. पूरे दुनिया में सऊदी अरब में नहीं बढ़ा है. उसके बाद पहला देश भारत है जहां पेट्रोल डीजल गैस सीएनजी के दाम में सबसे कम रेशियो में बढ़ोतरी हुई है। ये नरेंद्र मोदी जी की दुरागमी जो नीति है उसका नतीजा है।
5: दाम तो बढ़ेगा ही, अब यूं चल रहे तो थोड़ा सा तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कन्वॉय था वो दो गाड़ी में आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री बोले हम सिर्फ दो गाड़ी लेकर निकलेंगे, तो हम लोग सबको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है हफ्ता में एटलीस्ट 2 डेज की 3 डेज। देश और पृथ्वी अभी एक संकट से जा रहे, इसमें हम लोग को एडजस्ट करना ही है। अभी और आगे का दिन अभी अच्छा हो जाएगा, कोई चिंता नहीं।
6: No, it all shows the failure of Modi government, and there is a war going on, everybody knows. Who should be held responsible for that war? It is US, Israel, and Prime Minister went to Israel and made a speech expressing complete support of India to Israel. After he left Israel, US, Israel aligned and they launched war in Iran. That has led to economic devastation all over the world, and it has led to energy crisis all over the world.
7: This government is going berserk on this fuel hike for the past few years, and especially after the elections. What is more important is, especially in CNG, CNG was brought in keeping in mind the pollution hazards. Now if CNG prices are hiked and brought almost on par with petrol and diesel, so why will people buy and use CNG?
0: Our continuing coverage on Twisha's death mystery. Twisha Sharma, a 33-year-old Noida woman, was found dead 5 months after her marriage. While Twisha's family claims harassment, the in-laws say that the death was by suicide. Twisha's father says her husband and mother-in-law, a retired judge, are the main culprits in the case. In the latest, Twisha's last Instagram chat has also surfaced, where she had written to her friend on how she feels trapped in this marriage. The final 15 minutes before Twisha's death have become the biggest focus of the investigation. According to the family, Twisha called her mother at about 10.05 p.m. and spoke about alleged harassment at her matrimonial home. At 10.20 p.m., the family was informed that Twisha was not breathing, raising serious questions about what happened during those crucial 5 minutes after that conversation that Twisha had with her mother. Yesterday, Twisha's father and cousins spoke to NDTV describing their ordeal.
8: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है। क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी,
9: यस मैडम, एब्सोल्युटली। द मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट आवर डॉटर हैज पास्ड, द मोमेंट वी गॉट द कॉल दैट शी इज नो मोर, द 3 वर्ड्स दैट वर स्पोकन टू अस, वी इमीडिएटली स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अजमेर, द फैमिली केम हियर, एंड आफ्टर कमिंग हियर all we are seeing, all we have witnessed is horror. When we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the Women Commission, the Mahila Thana, the Human Rights Commission, the Office of the Commissioner of the Police, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered. That too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested. The proceedings conducted under undue pressure in the chamber of the judiciary. The family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed? Not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening, the courts are getting changed. There must be some certain reason behind it.
8: Navnidhi ji, मैं आपके पास आना चाहूँगी. परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियाँ थी. त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
10: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीजें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं.
8: जी,
10: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ. मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीजन हो जाता है कई बार, इसको आप जो है हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना. और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए. हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए. ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है. और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ. इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो MP के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह. और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है. मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाए. अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया. फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी. जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा. अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया.
0: Let's just quickly take you through the final moments before Twisha's death. At about 10:05 PM on the 12th of May, Twisha made a distress call to her mother, alleging harassment by her in-laws and sharing details of the ordeal she was facing inside her marital home. During the emotional conversation, the call was suddenly disconnected after Twisha's husband reportedly entered the room. Alarmed by the abrupt silence, the family immediately began making repeated attempts to contact her, but there was no response, neither from Twisha nor from any member of the family inside the house. Nearly 10 minutes later, at around 10:15 PM, the in-laws finally answered the phone. Moments later, at approximately 10:20 PM, the family was informed that Twisha was, quote-unquote, not breathing. She was rushed to the hospital where doctors declared her dead on arrival. My colleague has also filed a ground report from the parents' house. We talk about Twisha's parents' house in Noida.
11: अब भोपाल में रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह की बहू त्विशा शर्मा के सुसाइड के मामले में नए नए जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं, और NDTV की टीम की मौजूदगी त्विशा शर्मा के जो ग्रेटर नोएडा वाला घर है उसके ठीक बाहर है, और मेरे ठीक पीछे जो ये सोसाइटी आप देख पाएंगे 16th Avenue गौर सिटी 2, इसी सोसाइटी में जो के ब्लॉक है वहाँ पर त्विशा शर्मा अपने माता पिता के साथ रहती थी. और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक त्विशा ने जो 11-12 मई की रात में भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 31 साल की त्विशा शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और जिसके बाद मायके पक्ष ने उसकी सास रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह और जो पति त्विशा के हैं समर सिंह पर दहेज के लिए

0: करने के आरोप लगाए हैं, और जो शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसमें हैंगिंग बताई गई है वजह है जिसके चलते टुशा की मौत हुई है, और कई जगहों पर शरीर में चोट भी जो है वो भी मिली है। और ससुराल पक्ष ने अंतिम संस्कार के लिए शव मांगा तो मायके पक्ष यानी टुशा के जो परिवार वाले हैं, माता पिता हैं, उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। और आपको बता दें कि टुशा मूल रूप से जो नोएडा है यहीं पर बीते 15 सालों से अपने माता पिता के साथ रह रही थी, और एक साल पहले जो शादी है उनकी भोपाल में हुई थी। रिटायर्ड जज के परिवार की वो बहू थी, लेकिन किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई ये लगातार सवालों के घेरे में है। इसी को लेकर टुशा शर्मा के जो पिता हैं वो ससुराल वालों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से लगातार टुशा को प्रताड़ित किया जा रहा था, और जिसके चलते टुशा ने जो सुसाइड जैसा कदम है वो उठाया।
1: Time to bring you some details from the post-mortem autopsy report as well. Let's just take you through some of them. The victim was alive during hanging is what this report states. There have been multiple injuries found on Twisha's body as well. Also, several minor injuries before death have emerged in that report. And medical termination of pregnancy is also a part of that report. And that report states that the medical termination of pregnancy performed a week before. So clearly there was a lot of duress, a lot of stress that Twisha was under is what we have figured for now. Anurag is joining me live from Bhopal on the story. Anurag, we do know that Twisha's husband is still missing. He's absconding. What details do we have on Samarth Singh for now?
2: His anticipatory bail plea will just come, I think, in an hour or so at the Bhopal court. And so far, the family of Twisha, yesterday they protested again, in front of the Chief Minister's house, and they met the OSD of the Chief Minister. They demanded a second post-mortem at AIIMS in New Delhi. We also have a few chats of Twisha in which she has expressed the anxiety of life, and she was talking to her friend and she said that I have been under anxiety because I'm sitting at home. I want to do something with my life. Shadi makes your family, but you cannot stop working on yourself for yourself regardless where you are. She also warned her friend against marriage, and she said Shadi के लिए शादी मत करना, सोच समझकर आगे बढ़ना, फिलहाल बस यही कहूँगी। So these were the claims made by the family of Twisha Sharma, but equally sensational claim, and we also have the copy of the WhatsApp chats, the anticipatory bail plea application of Giribala Singh, a retired judge, in which she has made some comments, and she has said that Twisha allegedly displayed withdrawal symptoms when deprived of narcotics. She has said this, Giribala Singh, in her anticipatory bail plea, and she was being treated. She has also produced the prescriptions of noted psychiatrist here, Dr. Satyakant Trivedi, and she said that she was also referred to counselor Kakoli Rai. She has named these doctors in her anticipatory bail plea. Her behavior reportedly changed significantly after pregnancy and later miscarriage. This is what Giribala Singh, retired judge, has to say. And she has also said that no dowry was ever demanded, and Twisha received regular financial support through online transfers ranging from 5,000 to 50,000. So now, the screenshots of the payments made by Samarth and Giribala Singh to Twisha has also surfaced, and these documents are submitted to the court as a part of the anticipatory bail plea of Giribala Singh.
1: All right, Anurag, we're going to talk more about this at the top of 1 p.m. as well. This is very important to note that the anticipatory bail plea of Twisha's husband should be heard in about an hour from now. Some very, very important points being made by Anurag there. We'll come back to him at the top of 1 p.m. But there are big questions that emerge from this entire incident. The first, what happened between 10:05 and 10:20 p.m. on the night that Twisha died? What explains the multiple anti-mortem injuries that her body suffered? Thirdly, was there a delay in taking Twisha to hospital? Number four, why did no one answer the family's repeated calls after Trisha had called her mother and she had explained to her that things weren't too well inside the house in Bhopal? And finally, did Trisha previously report harassment to anyone? Big questions also over the termination of pregnancy, which now her in-laws term as a miscarriage. Unfortunately, that's not the only disturbing story that we're getting you on alleged dowry harassment. A 14-month-old marriage has ended in tragedy in Greater Noida in Uttar Pradesh. A 25-year-old woman, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. Her family has accused her husband and in-laws of dowry harassment and murder, alleging demands for a Fortuner SUV and 50 lakh rupees in cash. According to the complaint, Deepika had called her family on the 17th of May, which is yesterday, claiming she was being beaten by her husband and in-laws. Hours later, relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have arrested the husband and father-in-law while further investigation is underway in this highly disturbing case.
3: ओ भाई हम वो तो कुछ भी न पतो कहा हुए है ओ भाई हम वो न पतो कुछ भी भैया मैं वो पते न कुछ भी कहा करो हुए मेरी की गए
4: अच्छी वाली गई हमारी भी तो यहां
3: से भैया मैंने तो अच्छी अरे मोटा तो कल भी अच्छी बतलाई ओ मेरी लाडो
5: कैसे पता लगी आपको
4: उन्होंने फोन करा
3: फोन आया उनको ही
6: घटना मेरी बेटी थी जी जलपुरा गांव में उसकी शादी की थी 1.5 साल पहले और उसे दरिंदों ने कल रात मार दिया दहेज के लोभ में उसे मार दिया उसे
7: कब से प्रताड़ित कर रहे थे
6: प्रताड़ित उसे तो 10 महीने से लड़की बराबर हमें बोल रही थी और हम आके उसे समझा भी जाते थे बता भी जाते थे बाकी उन पर कोई फर्क नहीं आया किसी तरह का
8: आखिरी बार कब बात हुई थी बेटी से और
6: बेटी से कल भी बात हुई थी कल मैं मिला भी था बेटी से और उसके बाद जो है उन्होंने जैसे ही हम घर चले गए मैं कल आया था वहाँ पे उसे समझाने के लिए बात करने के लिए बाकी वो उसके बाद भी उन्होंने जैसे ही ये लगभग 11:30-12 बजे के करीब उन्होंने मुझे फोन किया 12:30-12:30 बजे के करीब चोट के निशान भी है मेरी बेटी के और उसे मारने के बाद छत पे ले जाकर उसे नीचे फेंक दिया
9: किस तरह का दहेज की मांग थी क्या मांग
6: करते दहेज क्या थोड़ा था जी फॉर्चूनर गाड़ी 51 लाख रुपए हालांकि मैंने दिया भी बहुत था देने की कोई ऐसी नहीं थी जितनी मेरी औकात थी वो दिया भी था मैंने
10: आवश्यक विधि कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही
4: है हमारी बेटी को कुछ नहीं होता राजी खुशी गई थी यहाँ से उन्होंने फोन करा कि जी तुम्हारी बेटी छत से गिर गई उसके पापा मिल के आए थे 11 बजे रात अच्छा कुछ भी नहीं था राजी खुशी अपनी बेटी से मिल के आए थे हमें रात को फोन आता 11 बजे हम यहाँ से सब जाते 1 बजे फोन करा उन्होंने अब तुम्हारी बेटी गिर गई हमने वहां जाके देखी तो खूब तो उन्होंने मार रखी थी और छत से उठा के नीचे फेंक दी हमें जगह हॉस्पिटल में लेके गए हॉस्पिटल वालों ने कह दी जी ये तो खत्म हो गई अब ये बताओ हमें क्या चाहिए हमारी बेटी मार दी जीते जी ये बताओ क्या कुछ नहीं दिया था हमने बहुत तगड़ी शादी करी थी अपनी बेटी की और अच्छे से पाला था उसको और आज उन्होंने मार दी हमारी बेटी
1: The death of 25-year-old Deepika has now triggered serious

0: passed. Relatives claimed they had repeatedly tried to intervene and resolve the dispute between both families. But later that night, the family says they were informed that Deepika had allegedly fallen from the roof. Her relatives, however, are questioning that version of events, claiming there were visible injury marks on her body and blood coming from her nose and ears. Deepika's family is now directly accusing her husband and in-laws of murder, demanding strict action and a thorough investigation into what they call a brutal dowry death. Akhil is joining us live from Noida at this point. Akhil, what have you gathered during your reporting on this very disturbing incident? We've heard from the family members, but I want to understand what the defense has been so far when it comes to Deepika's husband's family, because this is a very serious charge that Deepika's family is alleging against the in-laws.
1: Well, Vedika, if you see right now, I'm just standing outside the mortuary center. And towards my right, if you see, there's a high-rise supernova tower, which is approximately 18-floor planned building. And just opposite to this building, if you see the other side of the road, this social stigma story that has come out, in which what we have seen that there are two different sides. One side is of the economic rise that we have been seeing, the digital India. And another side of this story, if you see, what we have been witnessing over here in the same Noida itself, that is an incident which has taken place, which has shaken the soul of this very city. Right now, I'm joined by the deceased father over here. अच्छा नागर साहब ये बताइए कि कितने लंबे समय से आपकी बेटी को परेशान किया जा रहा था
2: बेटी को शादी के चार दो तीन चार महीने बाद ही शुरू हो गए थे जी
1: शादी में जो है आप लोगों ने डाउरी दी थी डाउरी में स्कॉर्पियो कार दी कैश दिया 11 लाख रुपए जेवरात दिए उसके बाद भी मांगा जा रहा था
2: उन्हें फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए थी जी 51 लाख रुपये चाहिए थे
1: तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज कराई
2: नहीं पुलिस में क्या है तो ये सोच रहे थे एक ना जाने चल जावे हर आदमी सोचता कि भी आ गई वो बात बन जावे पुलिस में कंप्लेंट तो जब होती है पुलिस में कंप्लेंट तो लास्ट हो गया ना सारा ही कर दिया उन्होंने कल जब तो बहुत कोशिश करी उसे बचाने की कि भी बात बच जाए
1: कल आपको इन्फॉर्म किसने किया बेटी ने इन्फॉर्म किया या परिवार वालों ने इन्फॉर्म किया कब पहुंचे आप वहां पर अपनी बेटी को देखने के लिए
2: मैं बेटी का फोन आया था मेरे पास जो मैं उसके कहने पर मैं गया था और वहाँ से मिल गए उनसे बात बात करके उन्हें समझा के बोल के सब करके जब वहाँ से मैं निकला तो आधे घंटे बाद फिर मेरे आधे पौने घंटे बाद मेरे पास कॉल आती है कि भाई आपकी बेटी दीपिका जो वो गिर गई है तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ गिर गई जीने पे गिरी है बाथरूम में गिर गई कहाँ गिर गई तो उन्होंने कही वो छत से गिर गई है तो छत से गिर गई और हम उसे जो वहाँ ले कर जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल तो मैंने अपने छोटे भाई को अपने बेटे को और अपनी घरवाली को ले कर हम जो शारदा हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ पर हमारी बेटी जो वहाँ पर हमें मृत मिली
1: मुझे एक चीज़ और बताइए समझना चाह रहा हूँ एक चीज़ कि जब इंसान छत से गिरता है तो उसको जो चोट आती है सुसाइड का वो चोट दूसरे तरह की होती है उसके बदन पे कट के मार्क्स दिखे हैं
2: मारा है सर उसे मार के ही छत से नीचे डाला है उसने उन्होंने मारा है मिलके वहाँ पे जो
1: तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है
2: सुसाइड का क्या मतलब
1: मर्डर है
2: सुसाइड का क्या मतलब है ये तो हत्या करके उसे डाल मारा गया उसके पेट में चाकू लगा हुआ पेचकस या बुलेट लगी हुई है मारने का क्या मतलब है कि आत्महत्या का क्या मतलब है कौन कह रहा आत्महत्या
1: अभी पोस्टमार्टम होगा यहाँ पे मॉर्चरी के ठीक बाहर खड़े हैं उसमें चीजें क्लियर होंगी पुलिस अपना जी पुलिस क्या आश्वासन दे रही है आपको पुलिस की तरफ प्रशासन की तरफ से क्या मैसेज मिला
2: नहीं प्रशासन तो अब जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद देखते हैं क्या करता प्रशासन जो अभी तो जो भी है वो बोल ही रहे हैं बहका रहे हैं कि यहाँ करेंगे बाकी वो भूमाफिया है उसके आगे तक जयक है आगे तक उसकी
1: कौन है भूमाफिया
2: ये जो मनोज जो है हाँ ये
1: आपकी बेटी के फादर
2: कम से कम इसके जाके पता करो कि कम 40-50 मामले जो आज भी उसमें थाने में हुए
1: कोई स्पेसिफिक डिमांड यूपी प्रशासन से
2: नहीं यूपी प्रशासन से तो ये है कि जो लड़का है इसका तो एनकाउंटर पूरा होना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिससे थोड़ा हमारा भी ये हो जाए बेटी तो हमारी चली गई बाकी हमारे उसके लिए भी प्रशासन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा
1: Yes, Vedika, would you like to take it forward? Any questions?
0: Akhil, I just have one question for the father. Of course, this is a very difficult moment for him. But I want you to ask him, Sir, main aapse jaanna chahti hu, do you regret, sir, ki aapne dowry diya tha pehle shaadi ke dauran?
2: Pehli shaadi mein humne gaadi diya tha ji, Scorpio, first model and gaadi di thi.
0: Aapko pachtawa hai ki aapne dowry diya tha, sir?
2: नहीं पछतावा तो सारा ही है मैडम अब क्या करना हमारी तो बेटी चली गई अब गाड़ी दे

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: अक्रॉस द कंट्री ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV network.
4: Higher end, check the audio. Higher end, check the audio.
5: Let's do it. Let's start.
6: Big news that we're breaking first here on NDTV.
7: We know for sure that they have, you know, confirmed their support to him.
6: We've got a picture of the letter.
8: The breaking story, we're jumping straight into it.
9: They do not want to be part of an experiment.
10: Show around and then come to me.
11: At the Nehru Stadium in Chennai.
12: Unconditional support.
7: Time killer of TVK is here with us.
13: We've got Mr. Dinakaran with us here.
14: Veera, why aren't you also dancing?
7: Vijay is coming out, TVK chief.
6: Big breaking story here on NDTV. Nobody else has these details. Thank you for all the support. Thank you for the viewership. Thank you for the love.
15: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
16: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
15: अरे मेरे राजा।
17: सबका राजा आर प्योर मसाला।
2: एक्सलेंस मेजर्ड बाय दोज हु बिल्ट इट। प्रेजेंटिंग द जूरी ऑफ द एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स। सुनील भारती मित्तल, चेयरमैन ऑफ द जूरी, फाउंडर एंड चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस। नोएल नवल टाटा, चेयरमैन टाटा ट्रस्ट्स। यूके सिन्हा, फॉर्मर चेयरमैन सेबी। किरण मजुमदार शॉ, चेयरपर्सन बायोकॉन ग्रुप। सी एस सेट्टी, चेयरपर्सन SBI। जयंत सिन्हा, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड सिविल एविएशन। रमेश दमानी, वैल्यू इन्वेस्टर एंड मेंबर ऑफ BSE। सिरिल श्रॉफ, मैनेजिंग पार्टनर सिरिल अमरचांद मंगलदास। NDTV प्रॉफिट Business Leadership Awards, honoring excellence, coming soon.
18: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
19: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
20: यान वडशेरी दामोदर मेनोन

0: response on her phone, neither from Thrisha nor from any member of the family inside the house when Thrisha's parents tried to reach out to them over the phone. Nearly 10 minutes later, at around 10:15 p.m., the in-laws finally answered the phone. Moments later, at approximately 10:20 p.m., the family was informed that Thrisha was quote-unquote not breathing. She was rushed to the hospital where doctors declared her dead on arrival. So those were the last final moments that we have pieced together from all the information that we have received from the police in this case. Now, yesterday, Thrisha's father and cousin spoke to NDTV describing their ordeal.
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है. क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी,
2: यस मैडम, एब्सोल्युटली. द मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट आवर डॉटर हैज पास्ड, द मोमेंट वी गॉट द कॉल दैट शी इज नो मोर, द थ्री वर्ड्स दैट वर स्पोकन टू अस, वी इमीडिएटली स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अजमेर. द फैमिली केम हियर एंड आफ्टर कमिंग हियर ऑल वी आर सीइंग, ऑल वी हैव विटनेस्ड इज हॉरर व्हेन वी सॉ द डेड बॉडी ऑफ माय सिस्टर, द इंजरीज दैट शी वाज कैरिंग, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the Women Commission, the Mahila Thana, the Human Rights Commission, the Office of the Commissioner of the Police, we were made to run from pillar to post, and it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning.
3: तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही यहाँ पर, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफर हो और SSIT उसकी जांच उसका दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके दोबारा से पोस्टमार्टम हो. बस मेरी ये तीन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ में, और हमें यहाँ पे डर है, हमें डर है. यहाँ पे परसों भी उस दिन कोर्ट में हमारे ऊपर अटैक हुआ था, कुछ लोग आके हमको कुछ भी बोल रहे, गंदा बोल रहे हैं. मेरी बेटी मतलब कि लड़कियाँ बदतमीज होती है, ऐसी होती है, ऐसे ऐसे करके हमें कि हम एग्रेसिव हों, कुछ बोलें उनसे, ऐसे हमारे सामने कमेंट कसे जा रहे हैं ऐसे.
1: कल आप मुख्यमंत्री के OSD से भी मिली थी, आप लोगों ने वहां पर भी गुहार लगाई थी कि उसका सेकंड पोस्टमार्टम करवाया जाए और SIT यहां पर गठित की जाए. सरकार की तरफ से जो OSD है उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको
3: वहां पे? हमें कोई मतलब थोड़ा ऐसे बोला है, मगर ज़्यादा
4: उनका कोई नहीं था. उन्होंने हमें कोई, हमें जो उम्मीद थी उनसे वो हमें नहीं फुलफिल है, हम सेटिस्फाइड नहीं है. बस हमारा वहाँ से उन्होंने बोला कि उनके ज्यूरिडिक्शन का नहीं है, ये उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ये सिर्फ जुडिशरी का मैटर है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे हमारी हेल्प. तो हमें वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिली है, हमारी सारी उम्मीद थी जो CM से वो हमारी पूरी नहीं हुई है.
3: अभी तक यही लग रहा है सारे लोग उनके ही हैं, हम लोग इधर उधर धूप में भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ में.
1: 7 दिन हो गए उसके डेड बॉडी एम्स में ही पड़ी हुई है, आप लोग क्या तब तक नहीं लेंगे जब तक सेकंड पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं मिलेगी?
3: मेरी बेटी वहाँ पर ऐसे लग रहे हैं, बोला हमारे से क्या, मेरे को बहुत दुख लग रहा है.
4: मैं और नहीं चाहता अपनी बेटी का डिस्क्रिमिनेशन करना, बट हमारे जो हमें वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि एम्स में उनके अपने लोग हैं यहाँ के. जब हमारे यहाँ की पुलिस हेल्प नहीं करी तो हम कैसे समझ लें कि एम्स में डॉक्टर्स हमारी हेल्प करी होगी, उन्होंने सही रिपोर्ट दी होगी, इसीलिए हमारा सेटिस्फेक्शन. अगर उनको डर नहीं है तो हमारा सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए हमें अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, अब बताइए ना.
1: बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर परेशान हैं, गुहार लगा कर, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सबसे थक चुके हैं, लेकिन क्या आप लोग का यही फाइनल फैसला है कि जब तक ये अनुमति नहीं मिलेगी आप लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे?
3: हाँ जी, हमें अपना केस दिल्ली में ट्रांसफ़र करना है. यहाँ पर हमें बिल्कुल भी, हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ में न्याय होगा. हम आप लोगों से और जनता से भी अपील करते कि हमारे साथ में न्याय हो, मेरी बेटी के साथ में न्याय हो, आप सब लोग हमें सपोर्ट करें. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए.
5: तुषा की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे, इन 5 महीनों के 1 महीने बाद से शादी के जो चैट वगैरह हम लोगों ने देखा है, जो पढ़ा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। 3 दिन पहले भी उसने आपसे कहा था कि मम्मी मुझे आकर ले जाओ।
3: वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करता था, सही हो जाता था। हर एक माँ बाप चाहते हैं, हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपनी बेटी को कि भाई सब एडजस्ट करने का ही बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सब जगह दूसरी जगह प्रॉब्लम साथ ही है। तो अभी है ना 10-15 दिन से इससे ज्यादा वो कर दिया था।
5: अबॉर्शन भी करवाया गया था जबरदस्ती?
3: हाँ जी। और मेरी बेटी को, मेरे बेटे को भी गंदा गंदा बोलता था, नाक रगड़वा की माफी मांगवाओ, यार क्या क्या बोलता था। वो सारी चैट मैंने दे रखी है वहाँ पर।
5: उसके ससुराल वालों की तरफ से एक चैट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो भी लगातार ट्विशा को पैसे दिया करते थे, हालांकि वो अपने पिता से भी लेती थी पैसे।
3: कोई भी नहीं पैसे नहीं दिए, बस यही है कि जब वो थोड़े बहुत पैसे डालता हुआ सारे उसमें अपने उसमें ही करवाता हुआ, हमें तो इस बात का कुछ भी मालूम नहीं है।
4: मैडम एक बार बताइए, अगर पैसे देते थे तो कोई लड़की अपनी टिकट के लिए पैसे मांगेगी अपने पेरेंट्स से? उसकी 15 तारीख की टिकट थी आने की, उसे 3,000 रुपए उसके पास टिकट्स के नहीं थे। वो अपने पेरेंट्स से बोलती पापा मुझे पैसे दे दो, मुझे टिकट्स करानी है, पापा से बोलो मुझे पैसे भेज दें।
3: उसको 13 तारीख की टिकट हुई है हमारी, फिर 15 तारीख की उसने करी है, तो वो उसके मोबाइल में ही होगी, उसने पैसे मांगे, वो वाली चैट मेरे पास में है।
4: अगर ये इतना पैसा देते तो वो 3,000-3,000 रुपये नहीं मांगती हमसे।
5: क्या कुछ चैट वगैरह आपके पास है? हालांकि वो चैट जरूर NDTV के स्क्रीन पर लगातार कल से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या अभी आपके पास वो कोई चैट ऐसी है? फिलहाल अभी ये बिल्कुल देखिए, ये तनिषा की सिस्टर है।
0: Alright, that was Twisha's mother and Twisha's sister speaking to NDTV. Absolutely distraught at the moment and all reasons to be, but some very big claims being made there by Twisha's family. I have Anurag joining me live. Anurag, we just heard from a very distraught mother of Twisha, and she talks about how they want an SIT probe, how there seems to be influence in the case given the background of the family Twisha was married to. Hence, they want this case to be transferred to Delhi. They also want a second post-mortem to be done.
6: Yes, claims and counterclaims, but the unfortunate part, still the body is lying in the mortuary of AIIMS in Bhopal. And the family yesterday, they had a meeting with the OSD of the chief minister. And after that, they said they're not satisfied. They want a second post-mortem to be conducted at AIIMS in Delhi. These were the demands of the family. They want proper investigation. But we have different documents, including the post-mortem report of Twisha, which says that she died due to antemortem hanging by ligature, indicating she was alive when hanged. So, and the report also mentions multiple antemortem injuries over the parts of the body. But one more, sensational claim by the mother-in-law of Twisha Sharma. Unfortunately, she's not there to defend herself, but you have heard her parents there. They are saying clearly that the in-laws and the husband Samarthing never used to give any money to Twisha. But we have the screenshots of the payments made by Samarth Singh and the mother-in-law Giribala to Twisha Sharma. And Giribala Singh, in her application for the anticipatory bail, has claimed inside the court that Twisha displayed withdrawal symptoms when deprived of narcotics. She was being treated by psychiatrist Dr. Satyakant Trivedi, a noted psychiatrist of Bhopal. She was also referred to counselor Kakoli Rai. Her behavior reportedly changed significantly after pregnancy and later miscarriage. And they are saying, the in-laws are saying, that no dowry was ever demanded. Twisha received regular financial support through online transfers ranging from 5,000 to 50,000. And one screenshot also says to the tune of 95,000. Her in-laws were actively supporting her treatment and lifestyles. So these claims have sharply escalated tension, with Twisha's family claiming them an attempt to malign her character after death. But these are the claims made inside the court by a retired judge, Giribala Singh.
0: Dr. Anurag, to stay with me. I also have Tejshree, and I'm going to come back to you, Anurag. I have more questions for you. That anticipatory bail plea also coming up, as you had mentioned some time back. But Tejshree, we're now getting to know that Twisha had been messaging her parents, and there is evidence of that as well, where she had told her parents that she's very distressed and that the people that she's living with, her husband and her in-laws, are vile and suspicious. And also goes on to say on a message to her parents on the 7th of May, that they should come and

0: take her away because those people will not let her live, quote unquote. What details can you share with us about her, you know, outreach to her parents over and over again? You can sense the desperation, you can sense the anxiety in those messages.
1: Well, see, Vedika, what we are also understanding is, as you have rightly mentioned, that the day on which this incident took place, days before, yes, Trisha did texted her family, is what we are understanding as of now. And Trisha did mention about how, you know, these all incidents are unfolding and how it is getting difficult for her to stay at that place with her in-laws. Not just that, but she had also mentioned about the continuous torture that she has been facing and the threats that her in-laws are giving her. Apart from that, she also in fact mentioned to her parents that they should come and take her away, and she is very disturbed. They also mentioned about this because, you know, such kind of incident had really traumatized her, and this could easily be seen, this could easily also be sensed by the kind of texts that she has been, you know, that she has been sending. And also in fact she has been talking about how she is feeling stuck, and also in fact advising her friends and relatives to not to get stuck in this manner, because she feels like there is no escape from the kind of situation she's stuck in, is what she feels. And she multiple times reiterated the fact that she's completely disturbed. She's not able to handle herself, and she wanted some kind of help. And at that particular point of time, you know, she wanted that the family members should have come and should have rescued her. This is the kind of, you know, message or request she had put in to the parents also. Now needs to be seen, you know, that what happens next, because parents are definitely very much heartbroken. We have seen that how her mother, in fact, was also alleging that how multiple times she was tortured. And in fact, now they are demanding that since the people, the in-laws of Trisha are highly influential, perhaps that is why the entire interrogation, investigation, and the case, and for that matter, the postmortem should take place here in the national capital. Back to you, Vedika.
0: To stay with me, we also have a police representative's reaction coming in on this big story here on Breaking Ground.
2: Trisha Sawan वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरणांतर इन्वेस्टिगेशन है और जितने टीम द्वारा एसआईटी गठित है, तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो फरार हुई है उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है, साथ ही साथ उस पर नाम घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है।
3: सर, इसमें अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि अभी तक फैमिली ने बॉडी ली नहीं है, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए क्या आप अपील करेंगे कोर्ट में?
2: अभी अंतिम संस्कार के संबंध में प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था, तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया तो परिजन री पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा सीपी महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी नाराज हैं सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए गए।
3: प्राइमरी रिपोर्ट में क्या सामने आया है, क्या सुसाइड है या फिर कुछ और भी एंगल निकल कर आए हैं?
2: जो पीएम रिपोर्ट है, डिटेल पीएम रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें कॉज ऑफ डेथ एंटीमार्टम नहीं है।
3: सर, इसमें उनकी सास जो है गिरवाला सिंह, उनके द्वारा भी कुछ आरोप लगाए गए हैं जिसमें ड्रग एडिक्ट की भी बात आई है, तो फिर क्या ऐसा कुछ भी सामने आया है अभी पीएम?
2: अभी पीएम में तो ऐसी कोई भी चीज़ अभी नहीं आई है, और पीएम रिपोर्ट के संबंध में परिजनों को कुछ क्वेरी थी और हम लोगों को इसमें कुछ क्वेरी करनी थी डिटेल में, तो इस संबंध में क्वेरी के लिए हमसे जो प्रशासन है प्रबंधन उनको भी एक लेटर लिखा गया है, और जो लैगेज मटेरियल है उसके संबंध में भी दिया गया है, संभवतः आगे रिपोर्ट आ जाएगी तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी।
4: सर, वो परिवार वाले आरोप भी लगा रहे हैं कि वो पट्टा नहीं दिया गया था, बाद में दिया गया, उसको लेके क्या किया जा रहा है और जो विवेचक है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?
2: लैगेज मटेरियल के संबंध में तथ्य आए हैं सामने, तो उसमें चूंकि लैगेजर मटेरियल उस समय जब्त हो गया था, लेकिन जो तत्कालीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनके द्वारा पीएम के साथ वो नहीं दिया गया था, तो इस संबंध में उनकी भूमिका देखी जा रही है और जिस तरीके से आपके सामने निश्चित तौर पर बयान था।
0: Going back to our reporters, we have Anurag joining me as well as Tejshree. Anurag, coming to you, the big question right now is, where is Samarth Singh, the husband of Trisha? He is on the run. We're expecting his anticipatory bail plea hearing to come up. There are some details that have emerged that you have brought to us in terms of the defense that the Singhs are presenting in this case, at a time when you have Trisha's family stating that they want an SIT probe, they want this hearing to be moved to the Supreme Court here in the national capital, and they also want another post-mortem to be conducted in the case.
5: यस द बेल

0: the anticipatory bail plea hearing of Samar Singh will start soon here in Bhopal. But you also a very important information by the SIT chief Rajneesh. There you must have heard he has mentioned about that belt, that particular belt, and now they are saying that they will take action against the investigating officer because that belt was not provided to Bhopal AIIMS, so that they should have ascertained that the injury marks on her neck was because of that particular belt or not. So at that time, that was not provided to the Bhopal AIIMS, and the body is still lying there. So the family have few basic questions, and they're not satisfied with the procedure here. They are saying that they want second postmortem in Delhi, in AIIMS Delhi, and then only they will take the body. But the police here in Bhopal are now saying that they will again make a request to claim the body, and if not, they will go ahead with the legal provisions.
1: You know, Anurag, let's also talk about the claims being made by the family members at this point. I'm talking about Thwisha's family here. They've been talking about how the timings of the hearing has been changed, how they've been moved from one court to the other, how Thwisha's mother was heckled, how bail almost uncontested took place when it came to Thwisha's mother-in-law. A lot of concerns being flagged here by Thwisha's family.
0: See, the judge recused herself because she worked as a junior to Giribala Singh, and that's why she made a request, and that's why the hearing was transferred to another court. So that is the legal reason for that particular claim made by the family of Thwisha Sharma. But yes, the bail plea of Samar Singh is yet to come, but still it's been almost 5 days since the police have filed the FIR and he was not arrested. So there are a few concerns, there are a few questions. As pointed out by the Assistant Commissioner of Police also. So, the family has raised few valid questions.
1: Yes, many.
0: Yes,
1: many valid questions there. There is some breaking news coming in on this story. Let's just bring you the details. The probe is intensifying in Thwisha's mystery death. What we're getting to know here on Breaking Ground is that the post-mortem report has revealed anti-mortem hanging. Thwisha's family has demanded a second post-mortem, and the police will announce a reward if someone finds the absconding husband, Samarth Singh.
2: जब एफआईआर हो चुकी है
3: आपने
2: डिमांड है
3: जी एफआईआर होने के बाद हमारी तुरंत गिरफ्तारी की डिमांड जिसमें गिरफ्तारी के उसी दिन एंटीसिपेटरी बेल लगा दी गई गिरिबाला सिंह जी की तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कायदे से
4: एसआईटी भी गठित हो गई उसके बाद
3: एक एक करके लेना सवाल
2: जी इसमें बताइए
3: तो जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो गिरफ्तारी शुरू हो जाती है यहाँ पर हमें कानून बताया जा रहा है कि हम प्रोसेस में चल रहे हैं एक बैलेंस बना के चल रहे हैं तो ये बैलेंस शब्द क्यों यूज़ किया जा रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है दूसरी चीज़ ये है कि एंटीसिपेटरी बेल जो जिन ग्राउंड्स पर दी गई है वो एक हास्यास्पद एक ब्लैक काना कानून बन चुका है आने वाले समय के अंदर अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो सास तो हमेशा के लिए बरी होगी उसको तो एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी क्योंकि ये एग्जाम्पल सेट हो चुका है एंटीसिपेटरी बेल का सारे वकील उस एंटीसिपेटरी बेल की कॉपी लेके घूम रहे हैं सारे ऑल इंडिया कि ये आपके कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दी है इन ग्राउंड्स पे एज के ग्राउंड पे रेपुटेशन के ग्राउंड पे ये एज और रेपुटेशन के ग्राउंड पे अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर तो कानून का मतलब ही खत्म होता है अब इसके बाद में हम कानूनी प्रोसीजर से जाएं मतलब एक विक्टिम होने के बाद में मैं इनके काले सख्त कानूनों को फेस करूं मैं यहां पर अकेला बेटी मरी हुई बेटी का बाप यहां पर आया हूं तो मेरे को इतने ज़्यादा कानून और इतने ज़्यादा उससे मेरे को फाइट करना पड़े तो फिर इस कानून को बनाए क्यों मुझे अपना जस्टिस लेने के लिए इतनी फाइटिंग करनी पड़ रही है जिसके लिए आप नारी बंधन कह रहे इसको नारी बंधन आपने एस्टेब्लिश महिला थाना हमारी जीरो FIR लेने के लिए मना कर रहा जीरो FIR लेने के लिए मना कर रहा उसके लिए आपको पता है मीडिया कराई करा जब जाकर के उसने हमारी FIR 15 तारीख की रात को FIR लॉन्च है ना उसमें भी बहुत त्रुटियाँ हैं ये सारी चीज़ें आप पूरा अगर प्रोसीजर देखें पुलिस ने माँ बाप को इन्फॉर्म नहीं किया कि उनकी बेटी की डेथ उन्होंने कहा कि ये किसी ने कर दिया आपको इन्फॉर्म यही काफ़ी था क्या उनकी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं थी हमें बताना कि अभी पुलिस कहाँ आई पुलिस ने बताना चाहिए कि हमको AIIMS में बुलाया गया न बोर्ड थाना जब एक कदम की दूरी पर था एक मिनट

0: We'll bring you the details of what the post-mortem report states. But Akhil, our colleague there at Noida, bringing you all the latest, also spoke to Deepika's grieving father, Sanjay Nagar, who is demanding justice for his daughter. Listen in.
1: लड़की को बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था और मैं कई बार वहाँ पे गए भी और मैं कल भी वहाँ पे गया था. बाकी उन्हें समझा के बुझा के वहाँ से जैसे ही मैं आधे घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आता है और जो फ़ोन आता है वो मनोज का आता है. तो मनोज कहते हैं कि आपकी बेटी जो है वो.
2: मनोज कौन है?
1: मनोज है लड़की के ससुर. हाँ,
2: क्या कहते हैं?
1: वो कहते हैं कि आपकी जो बेटी है दीपिका वो गिर गई है. मैंने उन्हें फ़ोन पे तुरंत पूछा कि गिर कैसे गई है, मतलब सीढ़ी पे गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है. मैंने उन्हें पूछा तो वो कहते हैं कि नहीं, तीसरी मंजिल से गिर गई है. और हम उसे जो है वहाँ
2: पे रेलिंग लगी हुई थी.
1: हाँ, रेलिंग लगी हुई है, कोई ताकत नहीं कि किसी तरह से गिर जाए.
2: वो जो गिरी है तो उसमें उसके बदन पे शरीर पे बहुत ज़्यादा चोट है,
1: निशान है, मारपीट के पूरे निशान है और मारने के बाद ही उसे नीचे फेंका गया.
0: All right, we're going to be slipping to a short break. Once we come back, we'll turn our focus to Keralam, the state which has got a new chief minister. In moments from now, we'll bring you more details on V.D. Satheesan.

0: फोरसाइटेडनेस हमारे बीजेपी को सरकार को मोदी साहब को नहीं है।
1: तेलंगाना सरकार 36-37% वैट कलेक्ट करते हैं हर लोगों के ऊपर। क्यों आप लोग अगर जनता के ऊपर प्रेम है तो क्यों नहीं करते? हम किए ना, मोदी सरकार बीजेपी सरकार हम वैट कम किया है अलग अलग स्टेट्स में, आप क्यों नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं, राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ। ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है, सारी दुनिया से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं। लगभग 40 देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, 40 देशों से।
2: देखिए, पेट्रोल और डीजल और सीएनजी और गैस के जो दाम हैं पूरे दुनिया में बहुत बढ़े हुए हैं, कहीं 40%, कहीं 44%, कहीं 20%। सिर्फ भारत है जहां इसको सिर्फ 3% के आसपास ही बढ़ा है, पूरे दुनिया में सऊदी अरब में नहीं बढ़ा है। उसके बाद पहला देश भारत है जहां पेट्रोल डीजल गैस सीएनजी के दाम में सबसे कम रेशियो में बढ़ोतरी हुई है। ये नरेंद्र मोदी जी की दुरागमी जो नीति है उसका नतीजा है।
3: दाम तो बढ़ेगा ही, अब युद्ध चल रहे तो थोड़ा सा तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कन्वॉय था वो दो गाड़ी में आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री बोले हम सिर्फ दो गाड़ी लेकर निकलेंगे, तो हम लोग सबको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, हफ्ता में एटलीस्ट 2 डेज की 3 डेज। देश और पृथ्वी अभी एक संकट से जा रहे, इसमें हम लोग को एडजस्ट करना ही है। अभी और आगे का दिन अभी अच्छा हो जाएगा, तो कोई चिंता नहीं।
4: इट ऑल शोस द फेलियर ऑफ मोदी गवर्नमेंट एंड देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, एवरीबॉडी नोस हु शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट वॉर। इट इज US Israel, and Prime Minister went to Israel and made a speech expressing complete support of India to Israel. After he left Israel, US Israel aligned and they launched war in Iran. That has led to economic devastation all over the world, and it has led to energy crisis all over the world.
5: This government is going berserk on this fuel hike for the past few years, and especially after the elections. What is more important is especially in CNG. CNG was brought in keeping in mind the pollution hazards. Now, if CNG prices are hiked and brought almost on par with petrol and diesel, so why will people buy and use CNG?
6: We all have time for Breaking Ground. My colleagues down south will be back with the latest on Southern View after a very short break. Thank you for watching Breaking Ground.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर प्योर मसाला।
6: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक।

0: जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। इंडिया ईयू एफटीए से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सुला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप और मोबिलिटी एग्रीमेंट से हमारी स्ट्रेटेजिक और पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप को नई गहराई मिली है। इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने हमारी साझेदारी को सशक्त बनाया है।
1: The European Union, Sweden and India all recognize the immense potential that lies in deepening our partnership, not least when the world is as complicated and unpredictable as it obviously is today. Prime Minister Modi, your visit marks another milestone in this history of India-Sweden relations. Today we have launched a strategic partnership and a joint action plan for our shared objectives. We upgrade and we modernize existing areas of cooperation, and we expand this cooperation to new areas shaping the future: innovation, emerging technologies, AI, space, and geospatial technology.
2: Since you hosted me in New Delhi for our groundbreaking EU-India summit, we succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to one quarter of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat. And in doing so, creating jobs and prosperity for our people.
3: All right, let's go across to Arjun now for more. And Arjun, the mother of all deals in Sweden. What is expected in Norway now?
4: Absolutely nothing short of that. Another blockbuster expected out of Sweden, as the Prime Minister, he recently, just moments ago in fact, Gargi, touched down in capital Oslo, where he was in fact extended a red

0: carpet welcome by his counterpart, Prime Minister Storr. Also in the works of the Prime Minister is a royal attendance, mind you, with King Henry and Queen Sonia of the country. Now, tomorrow is that important meeting, the third edition of the India-Nordic Summit, where, in fact, very critically, the Arctic shipping routes will be discussed. Now, this might very well become India's shortcut to Europe. Apart from that, as the Prime Minister was also mentioning, we heard technology and defence, you know, they remain the cornerstones. We heard yesterday itself that from the Netherlands, India, you know, has been able to get substantial amount of investment when it comes to data centres and other technological advancements. In defence specifically here, India, what it's doing now, it's trying to co-develop technology, which is a major boost for its Atmanirbhar push. Back to you.
1: All right. Thanks so much, Arjun, for joining us with those details. All right. Now, two shocking deaths are dominating the news right now. One in Bhopal and another one that's taken place in Noida. In both cases, young women have died under mysterious circumstances just a few months after getting married. In both cases, there are now allegations emerging of abuse and a possible dowry demands as well. Well, let's now focus on the case involving a young woman, Twisha. And just 5 months after her marriage, the mysterious death of the 33-year-old Noida woman, Twisha Sharma, is raising some serious questions. While her family alleges harassment and foul play, the in-laws have claimed it was a case of suicide. Twisha's father has accused her husband and mother-in-law, who is a retired judge, of being the key accused and claims the family is receiving threats now through calls and messages. The probe has intensified after Twisha's last chat surfaced online, where she wrote, "I'm trapped." Her final messages to her mother were even more chilling, saying, "They won't let me live." Investigators are now examining the crucial 15 minutes between her last call home and news of her death. The family's also shared payment screenshots alleging repeated financial transactions after the marriage.
2: तुषार सामने वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरण अंदर इन्वेस्टिगेशन है तो और जितने टीम द्वारा एसआईटी गठित है तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं साथ ही साथ जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है अभी अंतिम संस्कार के संबंध में एम्स प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया तो वो परिजन री पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं इस संबंध में उनके द्वारा सीपी महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे अब जो भी निराकरण है तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे
1: All right, and we'll continue to track this story closely. We also spoke with Twisha's cousin. Let's listen into what she had to tell us.
3: इस वक्त मेरे साथ ट्विशा की वो सिस्टर मौजूद है मीनाक्षी जिनके साथ उन्होंने लास्ट चैट किया था और उसे भी कहा था कि मैं फंस गई हूँ तुम इस परेशानी या इस बर्बादी में मत फंसना ट्विशा की सिस्टर मीनाक्षी मीनाक्षी एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें किसी मीनाक्षी नाम की लड़की से बात हो रही वो मीनाक्षी आप हो और क्या कह रही है आपको ट्विशा
4: मैम मेरे को सैटरडे नाइट में मैं उसको बहुत दिन से फ़ोन ट्राई कर रही थी बट वो मुझे बार बार यही बोल रही थी मैं कॉल करूँगी कॉल करती हूँ अभी यहाँ पे सब लोग हैं मैं कॉल करती हूँ तो उस एक अचानक से मैंने और उसको अपना एक फ़ोटो भेजा एक इमोशनल फ़ोटो तो मेरे को लगा शायद से अब ये कॉल करेगी ये देख के तो उसने मुझे उस फ़ोटो पर ये रिप्लाई किया आई एम ट्रैप्ड तू मत फंसना बस और फिर मैंने उसको रिप्लाई किया मैंने कहा आई एम वरीड अबाउट यू प्लीज़ मुझसे बात कर उसका कोई कॉल नहीं आया सैटरडे नाइट मेरे पास ये मैसेज आया है उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास खबर आई है
3: बहनें सहेलियां होती हैं और जिस तरीके से वो आपसे बात कर रही क्या उसने शादी के बाद वो उन तमाम तकलीफ़ों को आपको बताया था वो जिन तकलीफ़ों से वो गुजर रही थी
4: मैम शादी से पहले मतलब मैं और वो हर रोज़ मिला करते थे हर रोज़ हम लोग घूमने जाया करते थे हमारी हर रोज़ बात होती थी कभी ऐसा मतलब इतना इतना इतना जॉली इतनी हैपनिंग लड़की थी और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा क्या हुआ कहती वही फैमिली में यार पता ही है शादी के बाद ये होता है मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए

0: है जिसने मिस पुणे रह चुकी है, उसको आप बोल रहे हो कि तेरे को इंग्लिश नहीं आती बोलनी? मैम ये मतलब ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए उसके पास उसके ऊपर कि ये प्रूफ ही ये हो ही नहीं सकता कि वो इस तरीके से उसका करेक्टर दिखाया गया है, मतलब हम लोग मान ही नहीं सकते। हम लोगों ने
1: उसके पेट के जो बच्चा था उसके लिए भी कहा गया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, समर्थ ने ये भी कहा,
0: उसका प्रूफ भी है, उसने लिखा हुआ है अपनी मदर को क्लियरली कि मम्मी ये मेरे से ऐसे बोल रहा है, ये किसका बच्चा है, मैं कैसे शांत हो जाऊँ, कैसे मैं चुप हो जाऊँ। उसको हम समझा रहे थे कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, कैसे हो जाऊँ, उसकी क्लियरली उसकी चैट है हमारे पास।
2: All right, so lots of disturbing information really emerging after Twisha's tragic death. And let's take a look at some of the interactions. These are the final messages that she exchanged with her brother, saying that I am trapped. This is on Insta. This was a chat on Instagram in which she said that I am trapped, bro. Bas tu mat fasna, don't get trapped. Can't talk much. Will call when the time is right. This is a message that she exchanged. Also, her last text to her mother saying that the husband, Samarth, was questioning whose child is it. There you can see those texts that she exchanged with her mother saying, I'm very disturbed, and also that the Samarth, the husband, who is a lawyer, was questioning her pregnancy saying, whose child is it, saying, and she messaged her mother, I am very disturbed. So let's just listen into what her mother had to say.
3: हाँ जी, अभी तक तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही यहाँ पर, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफ़र हो और SIT उसकी जांच उसका दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके दोबारा से पोस्टमार्टम हो। बस मेरी ये तीन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ में, और हमें यहाँ पर डर है, हमें डर है। यहाँ पे परसों भी उस दिन कोर्ट में हमारे ऊपर अटैक हुआ था, कुछ लोग आके हमको कुछ भी बोल रहे, गंदा बोल रहे हैं, मेरी बेटी मतलब कि लड़कियाँ बदतमीज होती है, ऐसी होती है, ऐसे ऐसे करके हमें कि हम एग्रेसिव हों, कुछ बोले उनसे, ऐसे हमारे सामने कमेंट कसे जा रहे हैं ऐसे।
1: कल आप मुख्यमंत्री के OSD से भी मिली थी, आप लोगों ने वहाँ पर भी गुहार लगाई थी कि उसका सेकंड पोस्टमार्टम करवाया जाए और SIT यहाँ पर गठित की जाए। सरकार की तरफ से जो OSD है उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको
3: वहाँ पे? हमें कोई मतलब थोड़ा ऐसे बोला है, मगर ज़्यादा
4: उनका कोई नहीं था। उन्होंने हमें कोई हमें जो उम्मीद थी उनसे वो हमें नहीं फुलफिल है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। बस हमारा वहाँ से उन्होंने बोला कि उनके ज्यूरिडिक्शन का नहीं है, ये उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ये सिर्फ जुडिशरी का मैटर है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे हमारी हेल्प। तो हमें वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिली है, हमारी सारी उम्मीद थी जो CM से वो हमारी पूरी नहीं हुई है।
3: अभी तक यही लग रहा है सारे लोग उनके ही हैं, हम लोग इधर उधर धूप में भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ में।
1: आज 7 दिन हो गए हैं उसके डेड बॉडी एम्स में ही पड़ी हुई है, आप लोग क्या तब तक नहीं लेंगे जब तक सेकंड पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं मिलेगी?
3: मेरी बेटी वहाँ पे ऐसे लग रहे हैं, बोला हमारे से क्या, मेरे को बहुत दुख लग रहा है।
4: मैं और नहीं चाहता अपनी बेटी का डिमिनेशन करना, बट हमारे जो हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि एम्स में उनके अपने लोग हैं, यहाँ के जब हमारी यहाँ की पुलिस हेल्प नहीं करी तो हम कैसे समझ लें कि एम्स में डॉक्टर्स हमारी हेल्प करी होगी, उन्होंने सही रिपोर्ट दी होगी, इसीलिए हमारा सेटिस्फेक्शन। अगर उनको डर नहीं है तो फिर हमारा सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए हमें अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, अब बताइए ना।
1: बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर परेशान हैं गुहार लगाकर, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सबसे थक चुके हैं, लेकिन क्या आप लोग का यही फाइनल फैसला है कि जब तक ये अनुमति नहीं मिलेगी आप लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे?
3: हाँ जी, नहीं, हमें अपना केस दिल्ली में ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ में न्याय होगा। हम आप लोगों से और जनता से भी अपील करते कि हमारे साथ में न्याय हो, मेरी बेटी के साथ में न्याय हो, आप सब लोग हमें सपोर्ट करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
2: All right, let's go across now to my colleague Anurag Dwari, who joins us from Bhopal. And Anurag, very distressing to, you know, hear Twisha's mother and her anguish and frustration, also saying that they're not able to get enough help there, that they want this case transferred to Delhi because they say that the boy's family is very well connected. Give us more details about what is currently happening in this matter.
5: Yes, Gargi, first of all, one very crucial piece of information coming just now, that Samarth Singh, husband of Twisha Sharma, continues to remain absconding, and as per the top sources from the Bhopal police will write to the concerned authorities seeking suspension of Samarth Singh's passport. They will write to the concerned authorities for seeking, for the suspension of his passport. So that's the most important piece of

0: and her in-laws were actively supporting her treatment and lifestyles. So these claims have sharply escalated tensions, as you heard what Trisha's father has said, that they are making allegations which are baseless and false. And in fact, any drug related case, if is to be made, it should be against their own son. He's mentioning Samar Singh, because the whole world knows that he is a major drug addict. So claims, counterclaims, allegations, counter-allegations by both the families.
1: All right, Anurag, thanks so much for joining us with the latest breaking news now coming in, and a new angle of drug use or narcotics use, allegations and counter-allegations there. So let's take you through this entire case. It's 5 months after her marriage. The mysterious death of the 33-year-old Noida woman, Trisha Sharma, has raised serious questions. Her family has alleged harassment and foul play. The in-laws claim it was suicide. Trisha's father has accused her husband and mother-in-law, who is a retired judge, of being the key accused in this entire matter, and claims the family receiving threatening calls and messages as well. Trisha's mother-in-law is a retired judge. The probe intensified after Trisha's last chat surfaced online, where she wrote that, "I am trapped." Her final messages to her mother were even more chilling, saying that they won't let me live. Investigators are now examining the crucial 15 minutes between her last phone conversation home and then news of her death. The family also shared payment screenshots alleging repeated financial transactions after the marriage.
2: हाँ जी, अभी तक तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही यहाँ पर. इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफर हो और SSIT उसकी जांच उसका दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके दोबारा से पोस्टमार्टम हो. बस मेरी ये तीन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ में, और हमें यहाँ पे डर है. हमें डर है यहाँ पे. परसों भी उस दिन कोर्ट में हमारे ऊपर अटैक हुआ था. कुछ लोग आके हमको कुछ भी बोल रहे, गंदा बोल रहे हैं. मेरी बेटी मतलब कि लड़कियाँ बदतमीज होती है, ऐसी होती है, ऐसे ऐसे करके हमें हम एग्रेसिव हों, कुछ बोल रहे हैं उनसे, ऐसे हमारे सामने कमेंट कसे जा रहे हैं ऐसे.
3: कल आप मुख्यमंत्री के OSD से भी मिली थी, आप लोगों ने वहाँ पर भी गुहार लगाई थी कि उसका सेकंड पोस्टमार्टम करवाया जाए और SIT यहाँ पर गठित की जाए. सरकार की तरफ से जो OSD है, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको
2: वहाँ पे? हमें कोई मतलब थोड़ा ऐसे बोला है, मगर ज़्यादा
4: उनका कोई नहीं था. उन्होंने हमें कोई, हमें जो उम्मीद थी उनसे, वो हमें नहीं फुलफिल है. हम सेटिस्फाइड नहीं है. बस हमारा वहाँ से उन्होंने बोला कि उनके ज्यूरिडिक्शन का नहीं है, ये उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ये सिर्फ जुडिशरी का मैटर है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे हमारी हेल्प. तो हमें वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिली है. हमारी सारी उम्मीद थी जो CM से, वो हमारी पूरी नहीं हुई है.
2: अभी तक यही लग रहा है, सारे लोग उनके ही हैं. हम लोग इधर उधर धूप में भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ में.
3: आज 7 दिन हो गए हैं, उसके डेड बॉडी एम्स में ही पड़ी हुई है. आप लोग क्या तब तक नहीं लेंगे जब तक सेकंड पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं मिलेगी?
2: मेरी बेटी वहाँ पर ऐसे लग रहे हैं, बोला हमारे से क्या, मेरे को बहुत दुख लग रहा है.
4: मैं और नहीं चाहता अपनी बेटी का टर्मिनेशन करना, बट हमारे जो हमें वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि एम्स में उनके अपने लोग हैं यहाँ के. जब हमारे यहाँ की पुलिस हेल्प नहीं करी, तो हम कैसे समझ ले कि एम्स में डॉक्टर्स हमारी हेल्प करी होगी, उन्होंने सही रिपोर्ट दी होगी. इसीलिए हमारा सेटिस्फेक्शन, अगर उनको डर नहीं है, तो फिर हमारा सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए हमें अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है? अब बताइए ना.
3: बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर परेशान हैं, गुहार लगा कर, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सबसे थक चुके हैं. लेकिन क्या आप लोग का यही फाइनल फैसला है कि जब तक ये अनुमति नहीं मिलेगी, आप लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे?
2: हाँ जी, नहीं. हमें अपना केस दिल्ली में ट्रांसफ़र करना है. यहाँ पर हमें बिल्कुल भी, हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ में न्याय होगा. हम आप लोगों से और जनता से भी अपील करते कि हमारे साथ में न्याय हो, मेरी बेटी के साथ में न्याय हो. आप सब लोग हमें सपोर्ट करें. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. वो
3: त्रिशा की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे. इन 5 महीनों के 1 महीने बाद से शादी के जो चैट वगैरह हम लोगों ने देखा है, जो पढ़ा है, कि वो बहुत ज्यादा परेशान थी. 3 दिन पहले भी उसने आपसे कहा था कि मम्मी मुझे आकर ले जाओ.
2: वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करता था, सही हो जाता था. हर एक माँ बाप चाहते हैं, हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपनी बेटी को कि भाई सब एडजस्ट करने का ही बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं. शुरू शुरू में सब जगह दूसरी जगह प्रॉब्लम साथ ही है. तो अभी है ना 10-15 दिन से इससे ज्यादा वो कर दिया था.
1: All right, an anguished mother there. We also spoke to Trisha's cousin, who described how Trisha's behavior had changed in the days and weeks leading up to her death.
3: इस वक्त मेरे साथ ट्रिशा की वो सिस्टर मौजूद है, मीनाक्षी, जिनके साथ उन्होंने लास्ट

0: चैट किया था और उसे भी कहा था कि मैं फंस गई हूँ, तुम इस परेशानी या इस बर्बादी में मत फंसना। ट्विशा की सिस्टर मीनाक्षी, मीनाक्षी एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें किसी मीनाक्षी नाम की लड़की से बात हो रही, वो मीनाक्षी आप हो और क्या कह रही है आपको ट्विशा?
1: मैम मेरे को सैटरडे नाइट में, मैं उसको बहुत दिन से फ़ोन ट्राई कर रही थी बट वो मुझे बार बार यही बोल रही थी मैं कॉल करूँगी, कॉल करती हूँ, अभी यहाँ पे सब लोग हैं मैं कॉल करती हूँ। तो उसके एक अचानक से मैंने और उसको अपना एक फ़ोटो भेजा, एक इमोशनल फ़ोटो, तो मेरे को लगा शायद से अब ये कॉल करेगी ये देख के। तो उसने मुझे उस फ़ोटो पर ये रिप्लाई किया, आई एम ट्रैप्ड, तू मत फंसना बस। और फिर मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा आई एम वरीड अबाउट यू, प्लीज़ मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। उसका कोई कॉल नहीं आया। सैटरडे नाइट मेरे पास ये मैसेज आया है, उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास खबर आई है।
0: बहनें सहेलियां होती हैं और जिस तरीके से वो आपसे बात कर रही, क्या उसने शादी के बाद वो उन तमाम तकलीफ़ों को आपको बताया था, वो जिन तकलीफ़ों से वो गुजर रही थी?
1: मैम शादी से पहले मतलब मैं और वो हर रोज़ मिला करते थे, हर रोज़ हम लोग घूमने जाया करते थे, हमारी हर रोज़ बात होती थी। कभी ऐसे मतलब इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी। और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहती वही फैमिली में यार पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है। ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए, क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए। 15 किलो उसका वेट लूज हुआ।
0: कैसे उसको तंग किया करते थे, क्या परेशान करते, क्या सेक्सुअल हैरेस भी उसका पति उसको किया करता था, मारा पीटा करता था, क्या सास भी मारती पीटती थी, उसने आपसे बताया था कभी ये?
1: मैम उसने मेंटली हैरेसमेंट का अपनी मदर को बताया है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था उसको, उसकी जॉब छूट गई थी ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि भोपाल में वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी बट ड्यू टू सम रीज़न उसकी जॉब छूट गई थी। तो उसको इस बात पर भी हैरेस किया जा रहा था कि तू अब तेरे को आप कैसे मिलेगी, तू पढ़ी लिखी नहीं है। इतनी एजुकेटेड लड़की को आप बोल रहे हो तू पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब जिसने एक्टिंग करी है, जिसने मॉडलिंग करी है, जिसने मिस पुणे रह चुकी है, उसको आप बोल रहे हो कि तेरे को इंग्लिश नहीं आती बोलनी? मैम ये मतलब ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए उसके बाद उसके ऊपर कि ये प्रूव ही, ये हो ही नहीं सकता कि वो इस तरीके से उसका करेक्टर दिखाया गया है, मतलब हम लोग मान ही नहीं सकते। हम लोगों ने
0: उसके पेट के जो बच्चा था उसके लिए भी कहा गया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, समर्थ ने ये भी कहा,
1: इसका प्रूफ भी है, उसने लिखा हुआ है अपनी मदर को क्लियरली कि मम्मी ये मेरे से ऐसे बोल रहा है, ये किसका बच्चा है, मैं कैसे शांत हो जाऊँ, कैसे मैं चुप हो जाऊँ। उसको हम समझा रहे थे कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, कैसे हो जाऊँ, उसकी क्लियरली उसकी चैट है हमारे पास।
2: Alright, so lots of serious allegations being made by the family members. Let's listen in to what the police have to say concerning the investigation so far.
3: तुषार सामने वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरण अंदर इन्वेस्टिगेशन है, तो और जितने टीम द्वारा SIT गठित है, तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है, साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है। अभी अंतिम संस्कार के संबंध में एम्स प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत करवाया गया था, तो इस पर से जब परिजनों को अवगत करवाया गया तो वो परिजन री पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा CP महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी निराकरण है तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
2: Let's go across to Anurag Dwari now for all the very latest. And Anurag, tell us currently where does the probe currently stand? The family has refused to accept a body. Are they wanting that the case be shifted to Delhi, and the husband is on the run?
4: SIT has been formed, for probing the various aspects of the case and for tracking Samar Singh, the husband. A special team from the Bhopal police, they're saying that they have tracked the moments, but the anticipatory bail hearing is also underway in Bhopal. And for performing the last rites, the additional commissioner of police has said that they have written to the concerned authorities because the family has clearly said that they want a second post-mortem at AIIMS in Delhi, and before that they are not going to claim the body. So the local police has also written a letter to the AIIMS, and from there a letter has reached to the commissioner of police in Bhopal, so far the court has granted anticipatory bail to the mother-in-law, retired judge Giribala Singh.
2: All right, Anurag, and the family continues to be there in Bhopal. As we said, there are, a lot of information now coming out, especially all these

0: messages. What do the police have to say about that? You know, claims by the family about the kind of messages that she was sending, which clearly show that she was under some sort of distress.
1: Yes, the Bhopal police has said that as far as addicts, they have said that they have found nothing in the postmortem. So, I mean, they have no comments to made on that part, because remember, that is also something, you know, which has happened inside the court premises, because Giribala Singh has submitted in her bail plea in anticipatory bail application all sorts of allegations which the family is you know, clearly is denying, that
0: right,
1: she was under she was not under any drug influence, or she never consumed any drugs.
0: Right, this is a fresh angle that has now emerged, and we'll wait to find out more from what the police are saying regarding this allegation of drugs now, you know, allegations and counter allegations there. But moving on to another case now that has emerged from Greater Noida. A 14-month-old marriage ended in tragedy in Greater Noida. 25-year-old woman Deepika died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. However, her family has accused her husband and the in-laws of dowry harassment and murder, alleging there were demands made for a Fortuner SUV and 50 lakh in cash. According to the complaint, Deepika had called her family on the 17th of May, claiming she was being beaten by her husband and her in-laws. And hours later, relatives were then informed that she had fallen from the roof of the house and suffered critical injuries. Police have now arrested the husband and father-in-law, while further investigation is underway.
2: कितने लंबे समय से आपकी बेटी को परेशान किया जा रहा था?
3: शादी तीन-चार महीने बाद ही शुरू हो गए थे जी।
2: शादी में आप लोगों ने डाउरी दी थी, डाउरी में स्कॉर्पियो कार दी, कैश दिया 11 लाख रुपए, जेवरात दिए, उसके बाद भी मांगा जा रहा था।
3: उन्हें फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए थी जी, 51 लाख रुपए चाहिए थे।
2: तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज कराई?
3: नहीं, पुलिस में क्या, तो ये सोच रहे थे एक ना जाने चल जावे, हर आदमी सोचता कि भी आ गई बात बन जावे, पुलिस में कंप्लेंट तो जब होती है पुलिस में कंप्लेंट तो लास्ट हो गया ना, सारा ही कर दिया उन्होंने। कल जब तो बहुत कोशिश करी उसे बचाने की कि भी बात बच जाए।
2: कल आपको इन्फॉर्म किसने किया, बेटी ने इन्फॉर्म किया या परिवार वालों ने इन्फॉर्म किया? कब पहुंचे आप वहाँ पर अपनी बेटी को देखने के लिए?
3: मैं, बेटी का फोन आया था मेरे पास, जो मैं उसके कहने पर मैं गया था और वहाँ से मिल गए, उनसे बात करके उन्हें समझा के बोल के सब करके जब वहाँ से मैं निकला तो आधे घंटे बाद, फिर मेरे आधे पौने घंटे बाद मेरे पास कॉल आती है कि भाई आपकी बेटी दीपिका जो वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ गिर गई, जीने पे गिरी है, बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिर गई? तो उन्होंने कही वो छत से गिर गई है, तो छत से गिर गई और हम उसे जो वहाँ ले कर जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल। तो मैंने अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को और अपनी घरवाली को ले कर हम जो शारदा हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर हमारी बेटी जो वहाँ पर हमें मृत मिली।
4: क्या हुआ आपकी बेटी के साथ?
5: वो भाई हम वो तो कुछ भी न पता कहा हुए है। वो भाई हम वो न पता कुछ भी, भैया मैं वो पते न कुछ भी कहा करो हुए मेरी की गए।
6: अच्छी वाली गई हमारी बेटी तो यहाँ से
5: भैया, मैंने तो अच्छी, अरे मोचा तो कल भी अच्छी बतलाई। वो मेरी लाडो,
4: कैसे पता लगी आपको?
5: फोन आया उनका ही। ओ
6: तुम्हारी बेटी जीने पर से गिरी।
7: भैया गिरफ्तारी हो रही है, देखो एडिशनल कमिश्नर क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी लड़की छत से कूद के सुसाइड कर लिया। अभी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उस डॉक्टर भी नहीं आया, थाने से कोई आदमी नहीं आया। अभी हमारे बादलपुर थाने के एसओ भी आई हैं, एसओ जी के जो दरोगा जी हैं वो भी आई हैं, इकोटेक थाने का हमारे पास एक सिपाही नहीं है।
4: और वो दिखा रहे हैं ये
7: एडिशनल, इस
2: एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है।
7: एफआईआर दर्ज कर ली गई है, हमें क्या पता। ये देखो क्या कह रहे हैं आप, मैं दिखा रहा हूँ क्लिप दिखा रहा हूँ आपको, कम से कम क्लिप, हमें क्या उम्मीद होगी।
8: ये रात हमारे पास कॉल आई उसके ससुराल से, दीपिका नागर के, कि आपकी बिटिया गिर गई है और आप हॉस्पिटल में आ जाइए। तो जब परिवार के लोग शारदा हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां देखा कि बेटी के ऊपर मारपीट के निशान थे बहुत ज़्यादा और वो बेसुध थी। तो डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि ये अब नहीं रही। तो उसके बाद जो ससुराल वाले थे वो वहाँ से भाग गए और बुरी तरह से मारपीट करके उसकी
2: जो शरीर पे जो वुंड्स हैं किस तरह के जख्म जो है किस तरह
8: पूरे पूरे शरीर पर कट के निशान भी हैं, मारपीट के निशान हैं, नील पड़े हुए हैं पूरे शरीर पर, काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान हैं। काफ़ी
2: देख कट के जो लेजेंस के मार्क, कट के मार्क्स अलग होते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान सुसाइड करता है, कूदता है, ठीक है, उसके चोट अलग,
8: इसके तो कट के निशान भी हैं, पेट में एक छेद भी हो रखा है जो कि संभवतः या तो गोली मारी गई है या कोई सरिया या पेचकस नुमा कोई चीज़ उसके पेट में दी गई है।
6: हमारी बेटी को कुछ नहीं होता, राजी खुशी गई थी यहाँ से। उन्होंने फोन करा कि जी तुम्हारी बेटी छत से गिर गई, उसके पापा मिलके आए थे 11 बजे रात। अच्छा कुछ भी नहीं था, राजी खुशी अपनी बेटी से मिलके आए थे। हमें रात को फोन आता 11 बजे, हम यहाँ से सब जाते, 1 बजे फोन करा उन्होंने, अब तुम्हारी बेटी गिर गई। हमने वहां जाके देखी तो खूब तो उन्होंने मार रखी थी और छत से उठा के नीचे फेंक दी। हमें जगह हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने कह दी जी ये तो खत्म हो गई। अब ये बताओ हमें क्या चाहिए, हमारी बेटी मार दी जीते जी, ये बताओ क्या? कुछ नहीं दिया था, हमने बहुत तगड़ी शादी करी थी अपनी बेटी की और अच्छे से पाला था उसको, और आज उन्होंने मार दी हमारी बेटी।
0: Alright, let's go across to Akil now for the very latest. And Akil, a lot of, you know, disturbing allegations being made by her family there, but tell us more about where the investigation currently stands. What is the police saying?
2: That's right, Gagi. If you see at this stage, what we are getting to learn that a 14-month-old marriage basically took an ugly turn, and in which what we have seen that initially there was a demand of dowry, but that demand did not end because it kept on growing. There was an incremental demand for dowry because initially what we have seen that an Scorpio car was given. Second, if you see, 11 lakh rupees of jewelry were also given. Apart from that, the cash was also given. And this kept on growing. And right now what has happened that for the last 2 to 3 months, the family has been constantly demanding for a Toyota Fortuner car. Apart from Toyota Fortuner car, they were also demanding for their businesses approximately 50 lakh rupees of cash. So there was an incremental process of dowry demand which has been going on. And what we have been seeing that Deepika Nagar kept on requesting requesting her family to meet those demands. And later on, what we have got to learn that last evening, when the things turned from verbal altercation to the physical assault, what we have seen that Deepika Nagar was also beaten. And later on, late at night, at around 12 p.m., what we have got to learn that she fell from the terrace. When the family members, the victim's family member, the deceased family members, they are the ones who called the police. At that stage, what we have got to learn that in the FIR that was filed by the Gautam Buddh Nagar police team, there were 7 named accused, and out of those 7 named accused, 2 have been held right now and 5 are still absconding. So if you see, the Gautam Buddh Nagar police team is trying to make their best effort to nab other 5 accused. And apart from that, what we have also seen on ground zero, that just few moments back, just 5 minutes back, the body of the deceased have been taken out from the mortuary center. It took approximately 3.5 hours to 4 hours to complete the entire post-mortem. So once the post-mortem report will come out, then things will become much more clearer that what was the exact cause of the death. Because at this stage, the family of the victim has been constantly claiming that this is not a suicide case, this is the case of murder, because it was planned. Because if you see the bruises on the entire body of the deceased is basically giving a different kind of picture. So the family has been constantly alleging that that it's a murder. First, she was attacked with a knife and other sharpest devices, and then after that, she was thrown from the terrace. This is what the allegations made by the victim's family member.
0: All right, Akil, thanks so much for joining us with the very latest there. Very, very disturbing news of these 2 deaths that have taken place. First, Twisha in Bhopal, and now Deepika in Noida, 2 young women dying in this manner just a few months into their marriages, and allegations now emerging. With that, we'll slip into a short break. On the other side, more news coming up. Do stay with us.

0: Welcome back. Prime Minister Modi is now in Oslo, Norway. This is the latest stop in his five-nation diplomatic tour, where he was personally received by the Norwegian Prime Minister amid a warm ceremonial welcome. Moments after landing, the Prime Minister was greeted by enthusiastic members of the Indian diaspora, something that's become part and parcel of the Prime Minister's foreign tours. There were chants, tirangas, and a rousing reception, which marked his arrival in Norway. The Norway visit comes after a high-profile two-day trip to Sweden, where the Prime Minister held key talks focused on trade, artificial intelligence, defence cooperation and green transition initiatives. During his visit, the Prime Minister was also conferred Sweden's highest civilian honour, the Royal Order of the Polar Star, a degree commander Grand Cross for strengthening bilateral ties and global leadership. Let's take a look at what the Prime Minister said there.
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। इंडिया ईयू एफटीए से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सुला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप और मोबिलिटी एग्रीमेंट से हमारी स्ट्रेटेजिक और पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप को नई गहराई मिली है। इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने हमारी साझेदारी को सशक्त बनाया है।
2: The European Union, Sweden and India all recognize the immense potential that lies in deepening our partnership, not least when the world is as complicated and unpredictable as it obviously is today. Prime Minister Modi, your visit marks another milestone in this history of India-Sweden relations. Today we have

0: retired judge, and they say that she's very powerful, the family is very powerful. However, Samarth's lawyer in court has said that there's no evidence of any sort of dowry demands, there's no evidence of any kind of, you know, cruelty by the family, and also saying that Twisha was going to for some sort of therapy in Bhopal. So let's now go back to Tejshri, who joins us from Jantar Mantar, where she was speaking earlier to friends of Twisha. And Tejshri, tell us, what are the demands now? A second post-mortem has also been demanded by the family, and they want the case shifted to Delhi because Samarth's family is so powerful. Samarth, on his part, remains on the run. He's still missing.
1: Well, yes, absolutely. Let me first of all show you the pictures of the protest that is taking place over here at Jantar Mantar. Let us first focus on the posters that have been displayed over here. You see, justice for Twisha Sharma, hum Twisha ke liye nyay mangte hain. Justice delayed is justice denied, such kind of slogans. And they are also planning a candle march. A daughter was lost, a sister was silenced, but her voice will be living with us throughout, is what the poster says. Also, let us speak to all those who have come over here. You have come to you want justice for Twisha. First of all, please tell us, what are your demands?
2: So basically, we want that a transparent judiciary should work. We should work for the benefit of the family. We should work for the benefit of the society, because this is not the only first case. This is the very normal recurring.
1: आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इतने सारे जो loopholes हैं वो system में हैं, FIR नहीं file की गई, ये सारी चीजें आपको क्यों लग रही हैं इतनी अनियमित?
2: इतना clarity नहीं है. No one is knowing कि transparently हो क्या रहा है. आप देखिए, जिस दिन ये incident हुआ है, उस दिन के 3 से 4 दिन बाद जाके FIR हुआ है. And even अंदर system के अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो transparently सामने सबको नहीं निकल के आ रहा है.
1: आपको लग रहा है कि एक पूरी ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए?
2: जांच की हमारी रिक्वायरमेंट है. वी विश टू की ट्रांसपेरेंट जांच हो. काफी ब्यूरोक्रेट्स का बीच में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. वी वांट क्लैरिटी शुड बी देयर.
1: So you see, these posters are installed over here. We'll also, in fact, speak to a few more individuals who are holding placards in their hands, and in fact, what message actually they want to convey and how long they have been knowing her. In fact, as we spoke to Samira as well, she mentioned about how Samira has been knowing her since past more than 13 years, and how, you know, she went incommunicado for past 5 months. There are a number of demands that the family has been raising. Let us speak to a few more individuals. आपके हाथ में ये दो posters हैं, हम देख सकते हैं, justice for Twisha Sharma और परिवार का दर्द. हालांकि आप लोगों के सबसे पहले डिमांड्स क्या है ये बताइए, क्योंकि परिवार वहां पर ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक दूसरी बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई जाए.
3: हम लोगों की डिमांड यही है कि उसे जस्टिस मिले, उसकी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो. उधर चीज़ें वो नहीं हुई हैं, क्योंकि एम्स में वो जहाँ उसकी पोस्टमार्टम हुई है, तो उस पोस्टमार्टम में जो उन्होंने जो पोस्टमार्टम करना चाहिए था, उस समय जो चीज़ें थी वो
1: इतना ज़्यादा लूपहोल्स हो सकते हैं पूरे प्रक्रिया
3: अभी अंदर थी. जो ट्विशा है, उसकी भाभी भी वाई पेशे से डॉक्टर हैं, वो पोस्टमार्टम के टाइम अंदर थी. उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान हैं, मारपीट के निशान हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं. तो हम लोग ये चाहते हैं कि उसका फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो. इसके लिए हम चाहते हैं कि वो दिल्ली ट्रांसफ़र हो. और अभी आप खुद देखिए, कोई
1: मीरा के ससुराल ट्विशा के ससुराल वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग एडिक्ट भी थी, इस तरह की बातें कह रहे हैं.
3: मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, 12 तारीख को जो लेडीज़ 6 बजे ब्यूटी पार्लर जा रही है, क्या वो 10 बजे सुसाइड कर सकती हैं? आप जिसकी 15 तारीख की टिकट है घर जाने की, और 6 बजे
1: वालों ने टिकट बुक कर रखी थी,
3: यस 15 तारीख को वो आने वाली थी
1: ट्रेन से फ्लाइट,
3: ये मेरे को आइडिया नहीं है, ट्रेन से आने वाली हुई या फ्लाइट से. और 13 तारीख को उसके घर वाले भी जाने वाले थे, कुछ इशू चल रहा था कि उसे हम ले आएँ, लेकिन उसके इन लॉज कहते हैं कि अगर आप ऐसे आएंगे, अगर आप ऐसे उसे लेने आएंगे, तो उसके बाद उसका इस घर से दरवाजे बंद हो जाएंगे. तो उसके पेरेंट ने सोचा कि इतनी बात नहीं बढ़ाते हैं, 15
1: घर वालों ने ये बोला कि आते हैं तो हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे.
3: यस, अगर आप ऐसे लेने आएंगे तो कभी फिर वापस नहीं आ पाएंगे. एज ए पेरेंट्स वो यही सोचेंगे ना, शांति से हो जाए. तो 15 तारीख की टिकट थी, 6 बजे वो ब्यूटी पार्लर गई और सब कुछ अपनी तैयारी कर रही थी 15 तारीख की आने की. अचानक से शाम को 10 बजे उसका फोन आता है घर वालों पे, वो कहती मैं बहुत परेशान हूँ, ये हो रहा है. वो
1: तो अपने मदर से बात कर रही थी 10 बजे, दिन ये घटना हुई.
3: यस, जिस टाइम हुई घटना, और बात करते करते उसके कमरे में उसका हस्बैंड आया है समर्थ, और उसका फोन कट गया कि एकदम वो आ गए. कटने के बाद 15-20 मिनट उसके घर वाले फ़ोन करते रहे, उनकी इन लॉस को, उनके हस्बैंड को, ट्विशा को, किसी ने रेस्पॉन्स नहीं करा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और 20 मिनट
1: आप ट्विशा को कितने वक्त से जानते हैं?
3: मैं वैसे 7-8 साल से जानता हूँ, मेरी फ्रेंड मेरे सोसाइटी में रहती है, उसकी सिस्टर है, तो उसके माध्यम से मैं 7-8 साल से
1: मुलाकात हुई आपकी?
3: मेरी हुई है, मैं उसे मंदिर भी लेके गया हूँ, इस्कॉन मंदिर भी लेके गया हूँ, मैं जानता हूँ, वो भी मुझे जानती थी।
1: बिहेवियर वाइज कैसी थी, कैसा नेचर था?
3: आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा थम गई थी, बहुत ज़्यादा उसकी चेहरे से हंसी चली गई थी, क्योंकि ये लोग शुरू से ही उसे
1: शादी हुई। तो आपके क्या भाई को या बहन को उन्होंने बताया कि किस तरह की समस्या से वो गुजर रही है या फिर क्या परेशानी है उनके मैरिड लाइफ?
3: मैं बताना चाहूँगा, शादी से पहले नोएडा में जॉब करती थी, लेकिन आफ्टर मैरिज वो भोपाल चली गई, तो उसके बाद उसने जॉब उस समय चेंज करनी थी या कंटिन्यू नहीं करी, तो उसके घर वाले उसे लताड़ते थे कि तू जॉब नहीं करती, तू कुछ नहीं कर सकती, तू बेकार है, तो शुरू से ही हैरेस करना चालू कर दिया था। बाद में
1: हैरेसमेंट लगातार होते रहा। सो सी देयर इज दिस वन पॉइंट इन कन्फैक्ट कमिंग टू लाइट दैट यू नो शी वेंट इनकम्युनिकेडो इज व्हाट द फैमिली मेंबर्स एंड द फ्रेंड्स आर हाईलाइटिंग ऑल्सो। इनफैक्ट लेट अस स्पीक टू सम मोर फैमिली मेंबर्स एंड द फ्रेंड्स हु हैव कम ओवर हियर टू डिमांड जस्टिस फॉर ट्विशा एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड इनफैक्ट व्हाट दे हैव टू स्पीक टू हर व्हाट दे हैव टू यू नो व्हाट दे have to convey the message because one thing is very
0: right. Tejshree there reporting from Jantar Mantar where that protest is taking place, a demonstration demanding justice for Twisha who died under mysterious circumstances, with her family saying that she died by suicide, her in-laws saying that, however her friends and family claiming that it is a mysterious death, and they've said that she was being harassed in the days leading up to her death. Well, let's now tell you about another case, and even as the shockwaves over the Twisha case are taking place and you know all aspects of that case are being looked at, another case has now emerged in Delhi, in Noida, just outside of Delhi in Greater Noida, where a 14-month-old marriage ending in tragedy. A 25-year-old woman in this case, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. Now, her family has accused the husband and in-laws of dowry harassment as well as murder, alleging they had demanded a Fortuner SUV and 50 lakh in cash. According to the complaint, Deepika had called her family on May 17, that's just yesterday, claiming that she was being beaten by her husband and her in-laws. Hours later, the relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have arrested the husband and father-in-law while further investigation is underway. Let's listen in to what has been said so far.
4: कितने लंबे समय से आपकी बेटी को परेशान किया जा रहा था?
5: बेटी को शादी के दो तीन चार महीने बाद ही शुरू हो गए थे जी।
4: शादी में जो है आप लोगों ने डाउरी दी थी, डाउरी में स्कॉर्पियो कार दी, कैश दिया 11 लाख रुपए, जेवरात दिए, उसके बाद भी मांगा जा रहा था।
5: उन्हें फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए थी जी, 51 लाख रुपये चाहिए थे।
4: तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज कराई?
5: नहीं, पुलिस में क्या, वो तो ये सोच रहे थे एक ना जाने चल जावे, हर आदमी सोचता कि भाई आ गई वो बात बन जावे, पुलिस में कंप्लेंट तो जब होती है, पुलिस में कंप्लेंट तो लास्ट हो गया ना, सारा ही कर दिया उन्होंने। कल से तो बहुत कोशिश करी उसे बचाने की कि भाई बात बच जाए।
4: कल आपको इन्फॉर्म किसने किया, बेटी ने इन्फॉर्म किया या परिवार वालों ने इन्फॉर्म किया? कब पहुँचे आप वहाँ पर अपनी बेटी को देखने के लिए?
5: मैं बेटी का फ़ोन आया था मेरे पास, जो मैं उसके कहने पर मैं गया था, और वहाँ से मिल गए, उनसे बात बात करके, उन्हें समझा के बोल के सब करके, जब वहाँ से मैं निकला तो आधे पौने घंटे बाद मेरे पास कॉल आती है कि भाई आपकी बेटी दीपिका जो वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ गिर गई, जीने पे गिरी है, बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिर गई? तो उन्होंने कही वो छत से गिर गई है, तो छत से गिर गई और हम उसे जो वहाँ ले कर जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल। तो मैंने अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को और अपनी घरवाली को ले कर हम जो शारदा हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर हमारी बेटी जो वहाँ पर हमें मृत मिली।
6: क्या हुआ आपकी बेटी के साथ?
7: वो वही हम वो तो कुछ भी न पता कहा हुए है। वो वही हम वो न पता कुछ भी भैया मैं वो पते न कुछ भी कहा करो हुए मेरी की गए
8: अच्छी वाली गई हमारी बेटी तो यहाँ
7: भैया मैंने तो अच्छी अरे मोटा तो कल भी अच्छी बतलाई वो मेरी लाडो
6: कैसे पता लगी आपको?
7: फोन आया उनको ही
9: भैया गिरफ्तारी हो रही है। देखो एडिशनल कमिश्नर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी लड़की छत से कूद के सुसाइड कर लिया। अभी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उस डॉक्टर भी नहीं आया, थाने से कोई आदमी नहीं आया। अभी हमारे बादलपुर थाने के एसओ भी आई हैं, एसओ जी के जो दरोगा जी हैं वो भी आई हैं, इकोटेक थाने का हमारे पास एक सिपाही नहीं है।
10: और वो दिखा रहे हैं ये
9: एडिशनल
4: एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है,
9: एफआईआर दर्ज कर ली गई है, हमें क्या पता। ये देखो क्या कह रहे हैं आप, मैं दिखा रहा हूँ क्लिप दिखा रहा हूँ आपको, कम से कम क्लिप, हमें क्या उम्मीद हो?

0: होगी।
1: ये रात हमारे पास कॉल आई उसके ससुराल से दीपिका नागर के कि आपकी बिटिया गिर गई है और आप हॉस्पिटल में आ जाइए। तो जब परिवार के लोग शारदा हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां देखा कि बेटी के ऊपर मारपीट के निशान थे बहुत ज़्यादा और वो बेसुध थी। तो डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि ये अब नहीं रही। तो उसके बाद जो ससुराल वाले थे वो वहाँ से भाग गए और बुरी तरह से मारपीट करके उसकी
2: जो शरीर पे जो वुंड्स हैं किस तरह के जख्म जो है किस तरह
1: पूरे पूरे शरीर पर कट के निशान भी हैं, मारपीट के निशान हैं, नील पड़े हुए हैं पूरे शरीर पर, काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान हैं। काफ़ी
2: देखिए कट के जो लेजेंस के मार्क, कट के मार्क्स अलग होते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान सुसाइड करता है, कूदता है, ठीक है, उसके चोट अलग,
1: इसके तो कट के निशान भी हैं, पेट में एक छेद भी हो रखा है जो कि संभवतः या तो गोली मारी गई है या कोई सरिया या पेचकस नुमा कोई चीज़ उसके पेट में दी गई है।
3: हमारी बेटी को कुछ नहीं होता, राजी खुशी गई थी यहाँ से। उन्होंने फोन करा कि जी तुम्हारी बेटी छत से गिर गई, उसके पापा मिलके आए थे 11 बजे रात। अच्छा कुछ भी नहीं था, राजी खुशी अपनी बेटी से मिलके आए थे। हमें रात को फोन आता 11 बजे, हम यहाँ से सब जाते, 1 बजे फोन करा उन्होंने, अब तुम्हारी बेटी गिर गई। हमने वहां जाके देखी तो खूब तो उन्होंने मार रखी थी और छत से उठा के नीचे फेंक दी। हमें जगह हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने ये कह दीजिए ये तो खत्म हो गई। अब ये बताओ हमें क्या चाहिए, हमारी बेटी मार दी जीते जी, ये बताओ क्या? कुछ नहीं दिया था, हमने बहुत तगड़ी शादी करी थी अपनी बेटी की और अच्छे से पाला था उसको, और आज उन्होंने मार दी हमारी बेटी।
2: राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द मॉर्चुरी सेंटर, बिहाइंड मी यू कैन सी द विजुअल्स ओवर हियर। द डिसीज्ड postmortem has already been done. It took approximately 3.5 hours to complete the postmortem. Right now, you can see the ambulance is being just taken out from this mortuary center of sector 94, and it's going towards the residence of the victim. Here, you can see the body of the deceased can be seen through the pan right now. And earlier, what we have seen that in the FIR, if just go by the FIR details, what we have seen that there were 7 accused that have been named in the FIR. But so far, the Gautam Buddha Nagar police team has apprehended 2 individuals. One, the father-in-law of the deceased, and second one, her husband. So right now, the visuals just outside the mortuary center, you can see the victim's family members over here, and they have been constantly demanding for justice. And since morning, they have been waiting over here to get the body. So the entire process was videographed over here. And right now, what we are seeing that the body has been taken in that very one towards the residence of the victim. Video journalist Ashok Mahale, Akhil for NDTV 24/7.
4: Right, so 2 very disturbing cases involving young women, one in Bhopal, one in Noida. We'll continue to track all the developments there. For the moment, slipping into a short break. On the other side, the latest on the Prime Minister's 5-nation diplomatic tour.

0: Sharma with latest and last chats accessed, where she is pleading her mother to save her from her husband and in-laws. She says, "They won't let me live." That's Twisha's last message. We'll take you through more details coming up on this story. Also on the show, Netherlands returns 11th century Chola plates to India during Prime Minister Modi's visit to Netherlands. We'll take you through the key highlights of that as well. But first, a quick check on the headlines. Court hears arguments in Twisha death mystery case. Absconding husband Samarth Singh's lawyer argues there was no dowry demand and labels Twisha extravagant, while the family says this is a fight against an entire system trying to shield the powerful. After death of Twisha Sharma sparked serious allegations, now another case. 25-year-old Deepika was reportedly found dead in her in-laws' house in Greater Noida after allegedly falling from the third floor of the home. Congress-led United Democratic rule begins in Kerala. V.D. Satheesan, along with 20 ministers, take oath.
1: Presented by Canara Bank. Together we can.
0: All right, we're cutting across live to Prime Minister Modi, who is in Norway and is giving out a speech there during his Five Nation tour. Take a listen.
2: A constitution day ke mahatvapurna avsar par main vishwa ke sabse bade loktantra ki or se Norway jaise sudrudh और जीवंत लोकतंत्र की यहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। फ्रेंड, आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। फ्रेंड, रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने

0: sustainability, ocean energy, geology और health जैसे क्षेत्रों में research cooperation बढ़ाने पर सहमति बनाई। engineering, AI, cyber और digital जैसे sector में हम अपनी university और startup ecosystem को जोड़कर अपने partnership को फ्यूचर रेडी बनाएंगे। स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट मोबिलिटी में भी हमारा सहयोग और व्यापक होने जा रहा है। फ्रेंड्स, नॉर्वे आर्कटिक रीजन का एक महत्वपूर्ण देश है। आर्कटिक और पोलर रिसर्च में हमारे लंबे समय से सहयोग रहा है। भारत के आर्कटिक रिसर्च स्टेशन हिमाद्री के ऑपरेशन के लिए हम नॉर्वे के आभारी हैं। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच आज हो रहा एमओयू हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। इन सभी क्षेत्रों में गहरे सहयोग से हमारे साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज को समझने, फ्रेजाइल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने और ह्यूमन फ्यूचर को सिक्योर करने में योगदान देंगे। फ्रेंड्स, भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे। आज हमने ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। अब हम मिलकर ग्लोबल साउथ के देशों में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ह्यूमन डेवलपमेंट में योगदान देंगे। फ्रेंड्स, भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास के समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है और टेररिज्म के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। एक्सलेंसी, आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है। आइए हम अपने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से एक ट्रस्टेड, फ्यूचरिस्टिक और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का नया अध्याय लिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू। एंड दिस कंक्लूड्स
3: who is in Norway for his fourth leg of his five-nation tour. This is his first bilateral visit by Prime Minister Modi to Norway in 43 years. But core priorities, key agenda when it comes to India and Norway, from trade and investment to energy security and green transition as well, blue economy and maritime cooperation, technology and innovation. These are some of the aspects which are the core agenda and priorities during Prime Minister Modi's visit to Norway. There was, of course, a rousing welcome for Prime Minister Modi in Oslo. India India is now in exclusive Nordic Engagement Club, and there is perhaps focus on trade, clean energy and Arctic cooperation as well. India and EFTA deal also to boost investment and jobs. Remember, Prime Minister Modi is in Norway on the fourth leg of his five-nation tour.

0: बोले कि अगर हमें पीएम की रिपोर्ट अच्छी नहीं लगी तो हम जाएंगे पीएम टू के लिए, और हम इस मांग पर अड़े गए। पीएम टू अगर नहीं होता है तो ये न्याय की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
1: यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि जो उसके नवनिधि शर्मा हैं, ये ट्रिशा के पिता हैं, और देखिए माँ का जो हाल है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा है, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हैं, रो रो कर वही जो परिजन है उनका यहाँ पर बुरा हाल है। फिलहाल उनका अभी भी यही कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अनुमति जब तक नहीं मिलेगी पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करवाने की, तब तक वो ट्रिशा का शव भोपाल एम्स की मोर्चरी से नहीं लेंगे। फिलहाल इस मामले में ट्रिशा की मौत को 7 दिन का समय हो चुका है और अभी भी जो बॉडी है वो भोपाल एम्स में ही रखी गई है। फिलहाल आज दोनों पक्षों के वकीलों ने यहाँ पर तमाम दलीलें यहाँ पर दी हैं, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर एक दूसरे पर लगाए हैं। जज ने अभी फैसला नहीं दिया है, तय माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जज इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत को लेकर जो याचिका लगी उस पर अपना फैसला सुनाएगी। कैमरामैन राजू बाथम के साथ।
2: That was Tushar's father speaking exclusively to NDTV, seeking justice, of course, at this point of time and demanding that the case should be shifted to Delhi and there should be a second post-mortem, which also should be conducted. Of course, Tushar's family, cousins, friends, they all are protesting there, seeking justice after her death. But Tushar's death is no longer just a case file. It has now become a mirror reflecting the fear, the silence, pressure and unanswered questions that many young women carry behind closed doors. But beyond every submission and every allegation lies the reality that a young life ended under deeply troubling conditions. A daughter who had dreams, ambitions, and an identity of her own is now being discussed through post-mortems, chats, courtrooms, claims as well. On the facts of the case, Tushar's father has now accused her husband, who was absconding, Samarth, and mother-in-law, a retired judge, of being the key accused, and claims the family is receiving threats through calls and messages. The family has also shared payment screenshots because there was a constant dowry pressure on Tushar, alleging repeated financial transactions after the marriage. The most painful part is that every such case leaves society asking the same question again. Could something have been done before it reached this point? The investigation must remain fair, transparent and fearless, because for the family, this is not just about the headlines or public spectacle. It is about understanding how a life they loved came to such a tragic end 5 months after marriage. Let's now take you through some of the key details, key highlights of the Tushar case right now. We'll take you through the payments made by Tushar's father. But before that, the last messages that Tushar sent to her mother. First up, she says, "They won't let me live." Tushar has accused her in-laws, her husband. These are the last messages to her mother before she was found dead. "They will not let me live." Then, Samarth, her husband, asked Tushar, who was pregnant. Samarth asked whose baby I was carrying. There were allegations that Tushar had an illegitimate child while she was pregnant. Another text message that she sent in distress to her mother: "Please come, take me away." Her last message: "I am very disturbed." She also told her friends that she was feeling anxious, she wanted to work, she did not like anything. Her in-laws did not let her be happy or sad. But let's now take you through Tushar's chat with her brother as well. First up, "This is my problem, I will handle it." That's the message she sent to her brother. Then, "Otherwise, it will be that I keep complaining." So she's in a complete doldrums, in a situation of distress, that she's sending all these messages to her brother and her mother as well. Another message that Tushar sent to her brother: "All of them think I do drugs and that's why I'm in a bad mood." Then, "They cannot see that their son has abandoned me." Another message, she says that "My mood could be ruined because of this." There were also allegations on Tushar that she's a drug addict and she's carrying an illegitimate child. She also told her brother that she's feeling suffocated, she's feeling stifled. "These people will not let me cry nor let me be happy." Another very important message that she sent to her brother before her demise: "I am trapped, I feel suffocated." And then, "They all are very cruel, they have no empathy for the other person, and that I feel suffocated here. Nothing her last message, nothing can go right now. Well, NDTV also spoke with Twisha's grieving mother who demanded justice for her daughter. Take a listen.
3: अभी तक तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही यहाँ पर, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफ़र हो और SIT उसकी जांच उसका दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में, और उसका दोबारा से पोस्टमार्टम हो। बस मेरी ये तीन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ में, और हमें यहाँ पर डर है, हमें डर है यहाँ पे। परसों भी उस दिन कोर्ट में हमारे ऊपर अटैक हुआ था, कुछ लोग आके हमको कुछ भी बोले, गंदा बोले, मेरी बेटी मतलब कि लड़कियाँ बदतमीज होती है ऐसे ऐसे करके हमें कि हम एग्रेसिव हों, कुछ बोले उनसे ऐसे, हमारे सामने कमेंट कसे जा रहे हैं ऐसे।
1: कल आप मुख्यमंत्री के OSD से भी मिली थी, आप लोगों ने वहाँ पर भी गुहार लगाई थी कि उसका सेकंड पोस्टमार्टम करवाया जाए और SIT यहाँ पर गठित की जाए। सरकार की तरफ से जो OSD है उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको?
3: वहाँ पे हमें कोई मतलब थोड़ा ऐसे बोला है, मगर ज़्यादा
4: उनका कोई नहीं था। उन्होंने हमें जो उम्मीद थी उनसे वो हमें नहीं फुलफिल है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। बस हमारा वहाँ से उन्होंने बोला कि उनके ज्यूरिडिक्शन का नहीं है, ये उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ये सिर्फ जुडिशरी का मैटर है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे हमारी हेल्प। तो हमें वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिली है, हमारी सारी उम्मीद थी जो CM से वो हमारी पूरी नहीं हुई है।
3: अभी तक यही लग रहा है सारे लोग उनके ही हैं, हम लोग इधर उधर धूप में भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ में।
1: आज 7 दिन हो गए उसके डेड बॉडी एम्स में ही पड़ी हुई है, आप लोग क्या तब तक नहीं लेंगे जब तक सेकंड पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं मिलेगी?
3: मेरी बेटी वहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जैसे बोला हमारे से क्या, मेरे को बहुत दुख लग रहा है।
4: मैं बहुत नहीं चाहता अपनी बेटी का डिमिनेशन करना, बट हमारे जो हमें हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि एम्स में उनके अपने लोग हैं यहाँ के, जब हमारी यहाँ की पुलिस हेल्प नहीं करी तो हम कैसे समझ लें कि एम्स में डॉक्टर्स हमारी हेल्प करी होगी, उन्होंने सही रिपोर्ट दी होगी, इसीलिए हमारा सेटिस्फेक्शन। अगर उनको डर नहीं है तो फिर हमारा सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए हमें अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, अब बताइए ना।
1: बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर परेशान हैं गुहार लगा कर, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सबसे थक चुके हैं, लेकिन क्या आप लोग का यही फाइनल फैसला है कि जब तक ये अनुमति नहीं मिलेगी आप लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे?
3: हाँ जी, नहीं, हमें अपना केस दिल्ली में ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ में न्याय होगा। हम आप लोगों से और जनता से भी अपील करते कि हमारे साथ में न्याय हो, मेरी बेटी के साथ में न्याय हो, आप सब लोग हमें सपोर्ट करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो
1: त्रिशा की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे, इन 5 महीनों के 1 महीने बाद से शादी के जो चैट वगैरह हम लोगों ने देखा है, जो पढ़ा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। 3 दिन पहले भी उसने आपसे कहा था कि मम्मी मुझे आकर ले जाओ,
3: वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करता था, सही हो जाता था। हर एक माँ बाप चाहते हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपनी बेटी को कि भाई सब एडजस्ट करने का ही बोलते है कि भाई कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सब जगह दूसरी जगह प्रॉब्लम साथ ही है, तो अभी है ना 10-15 दिन से इससे ज्यादा वो कर दिया था।
2: Well, NDTV also spoke with Twisha's cousin Meenakshi. Take a listen to what she had to say and how she was unable to talk with Twisha after her marriage.
1: इस वक्त मेरे साथ ट्विशा की वो सिस्टर मौजूद है मीनाक्षी, जिनके साथ उन्होंने लास्ट चैट किया था और उसे भी कहा था कि मैं फंस गई हूँ, तुम इस परेशानी या इस बर्बादी में मत फंसना। ट्विशा की सिस्टर मीनाक्षी, मीनाक्षी एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें किसी मीनाक्षी नाम की लड़की से बात हो रही है, वो मीनाक्षी आप हो, और क्या कह रही है आपको ट्विशा?
5: मैम मेरे को सैटरडे नाइट में, मैं उसको बहुत दिन से फ़ोन ट्राई कर रही थी बट वो मुझे बार बार यही बोल रही थी मैं कॉल करूँगी, कॉल करती हूँ, अभी यहाँ पे सब लोग हैं, मैं कॉल करती हूँ। तो उसके एक अचानक से मैंने और उसको अपना एक फ़ोटो भेजा, एक इमोशनल फ़ोटो, तो मेरे को लगा शायद से अब ये कॉल करेगी ये देख के, तो उसने मुझे उस फ़ोटो पर ये रिप्लाई किया, आई एम ट्रैप्ड, तू मत फंसना बस। और फिर मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा आई एम वरीड अबाउट यू, प्लीज़ मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, उसका कोई कॉल नहीं आया। सैटरडे नाइट मेरे पास ये मैसेज आया है, उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास खबर आई है।
1: बहनें सहेलियां होती हैं और जिस तरीके से वो आपसे बात कर रही, क्या उसने शादी के बाद वो उन तमाम तकलीफ़ों को आपको बताया था, वो जिन तकलीफ़ों से वो गुजर रही थी?
5: मैम शादी से पहले मतलब मैं और वो हर रोज़ मिला करते थे, हर रोज़ हम लोग घूमने जाया करते थे, हमारी हर रोज़ बात होती थी, कभी ऐसे मतलब इतना इतना इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी। और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कहती वही फैमिली में यार पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है, ऐसे ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए
6: क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए. 15 किलो उसका वेट लूज हुआ.
1: कैसे उसको तंग किया करते थे, क्या परेशान करते, क्या सेक्सुअल हैरेस भी उसका पति उसको किया करता था, मारा पीटा करता था, क्या सास भी मारती पीटती थी, उसने आपसे बताया था कभी ये?
6: मैम उसने मेंटली हैरेसमेंट का अपनी मदर

0: को बताया है मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था उसको, ये उसकी जॉब छूट गई थी ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि भोपाल में वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, बट ड्यू टू सम रीज़न उसकी जॉब छूट गई थी। तो उसको इस बात पे भी हैरेस किया जा रहा था कि तू अब तेरे को जॉब कैसे मिलेगी, तू पढ़ी लिखी नहीं है। इतनी एजुकेटेड लड़की को आप बोल रहे हो तू पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब जिसने एक्टिंग करी है, जिसने मॉडलिंग करी है, जिसने मिस पुणे रह चुकी है, उसको आप बोल रहे हो कि तेरे को इंग्लिश नहीं आती बोलनी। मैम ये मतलब ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए उसके बाद उसके ऊपर कि ये प्रूव ही, ये हो ही नहीं सकता कि वो इस तरीके से उसका करेक्टर दिखाया गया है।
1: All right, I'm now being joined by Tejshree. She's on me live from Jantar Mantar, where a protest is taking place for Twisha. Tejshree, we see placards there, justice for Twisha. Take us through what is happening on ground there, because there are two demands of the parents. One, case to be transferred to Delhi, and second, a second post-mortem to take place. Tejshree.
2: Well, absolutely. I would first of all like you to show these very heartbreaking and unfortunate pictures that are unfolding over here at Jantar Mantar, where you can see that she is the sister of Trisha. We'll just try to speak to her. Priyanka ji, 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। हम समझते हैं बहुत कठिन समय आपके लिए, लेकिन आप क्या डिमांड करते हैं?
3: मैम, उसको यहाँ पे लेकर आओ, उसका पोस्टमार्टम यहाँ करवाइए, उसका केस यहाँ ट्रांसफर करवाइए और उसके गुनहगारों को सजा दिलवाइए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए।
2: प्रियंका जी, आपकी आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी ट्विशा से?
3: मैम बस मेरी उस आखिरी बार मार्च में बात हुई थी, और उसके बाद हमारी बात नहीं हुई क्योंकि हम नहीं चाहते थे वो नई नई शादी हुई है वो डिस्टर्ब हो। बस हमें और कुछ नहीं पता।
2: उसने आपको कब बताया था? आपने कहा था, एक्सक्यूज मी प्लीज, आपने कहा था कि मार्च में मिलेंगे आप उससे, तो मार्च में मुलाकात
3: थी? मैम मैं मिली थी उसके साथ। हाँ मैम, मैं जा रही हूँ।
2: क्या कहा उसने?
3: मैम उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके भाई की उस टाइम शादी थी, तो बस वो हमारे साथ जैसे बहनें रहती है बैठते हैं, बस ऐसे ही उसने हमारे साथ।
2: आपने कुछ मनी ट्रांजेक्शन को लेकर बात की थी, क्या था ये मनी ट्रांजेक्शन आप बता पाएंगे?
3: मैम उसको अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ज़रूरतों के लिए वो मेरे फूफा जी को बोलती थी, तो मेरे फूफा जी बुआ जी ये लोग उसको पैसे देते थे, उसके जो भी उसको नीड होती थी वो लोग यहाँ से उसके लिए पैसे ट्रांसफर,
2: अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे कई बार।
3: जी मैम, जी मैम, जी मैम।
2: शेयर्स भी
3: मेरे फूफा जी ने, मैम उसके अकाउंट में 20 लाख उनको शेयर्स के लिए उसको इसके पास थे, उनको जैसे ही सब चीज़ें पता चली उन्होंने उसको बस प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया कि अब ये हमें दे देना, हमें दे देना। और उसको थोड़ा डाउट हुआ कि ये लोग इतना क्यों मेरे को फोर्स कर रहे हैं।
2: तब को उसके ससुराल वाले पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोलते थे, जो उसके फादर ने
3: उसका पति बोलता था मैम उसको कि ये एक जॉइंट अकाउंट खोल लेते और ये मेरे नाम, ये जो पैसा है ये मेरे को दे दे, तेरे को तेरे पापा ने दिया है। तो वो बोली कि नहीं पापा ने दिया है, पर मैं पापा को वापस कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए पापा के पैसे।
2: लगातार दबाव बनाया जा रहा था ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपके।
3: मैम मेरे को ये चीज़ एक ही बार पता चली, ज़्यादा नहीं पता है इस बारे में, पर इतना जरूर पता चला है कि उससे ट्रांसफर करवाने के लिए वो लोग फोर्स कर रहे थे।
2: ट्विशा ने ट्रांसफर किया था ये बात आपको पता चली?
3: नहीं मैम, अभी उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं, अभी मैम घर वाले इस हालत में ही नहीं है कि बात कर पाए।
2: आपकी जब उससे बातचीत हुई थी तब कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था 5 महीने हो चुके, क्या वो परेशान है क्योंकि शादी के केवल 5 महीने बाद इस तरह की सिचुएशन आना?
3: मैम मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का, मुझे तो बस ये पता है कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और हम लोग बस इंसाफ चाहिए उसके लिए।
2: आप लोगों की डिमांड्स क्या क्या हैं? आप उससे, आप उसकी चूँकि सिस्टर हैं और आप ही के सिस्टर से उसकी लगातार बात हो रही थी, आप ही के सिस्टर को उसने बोला था?
3: मेरी छोटी बहन है, हाँ मेरी छोटी बहन को उसने मैसेज किया था। ट्यूसडे उसकी डेथ हुई है, सैटरडे शाम को उसने उसको मैसेज किया था, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, वो उसको ब्रो करके ऐसे बात करती थी उन दोनों का।
2: अभी बातचीत आपको बताई गई थी कि ऐसा
3: वो सब चैट न्यूज़ वालों को दी गई है, उसमें शो हो रही है, और उसको बोला कि तू मत फंसना, उसने ये भी लिखा है उस चैट में उस मेरी सिस्टर को। फिर उसने, मेरी बहन ने उसको बोला कि हम तेरे साथ हैं, बस उसके बाद उसकी भी बात नहीं हुई, सैटरडे के बाद उसकी भी बात नहीं हुई मैम, किसी को नहीं कुछ बोला, बस लास्ट उसके बाद बुआ जी के साथ हुई, उसके बाद किसी से बात नहीं हुई।
2: लास्ट उनकी मम्मी से बातचीत हुई थी केवल शाम को 5 बजे। उनकी कभी कोई,
4: तब से था जब से उनकी
2: उनकी
4: मैं उनकी सिस्टर हूँ,
2: अभी उनकी सिस्टर हैं, क्या बातचीत हुई थी बताइए?
0: बातचीत का तो यही था कि जब से उनका जॉब छूटा था तब से उन पे ज्यादा प्रेशर होने लगा था, तो उन्होंने यही बोला था कि
2: प्रेशर करती थी कि जॉब करिए।
3: मेरे फूफा जी को बोलती थी वो कि अब इसको कौन खिलाएगा, कौन इसकी तो जॉब नहीं है, इसको कैसे करेगी
2: बाला सिंह,
0: कि यही ये तो नकारा है, ये कुछ नहीं कर सकती, इसको इंग्लिश नहीं आती, जो बंदी मिस पुणे रह चुकी है, तेलुगु की एक्ट्रेस रह चुकी है, आप उसको ऐसा बोलते हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि आप वेल एजुकेटेड हैं, आप फॉर्मर जज हैं हाई कोर्ट में, तो आप जो न्याय देता है और वही ये सारी बातें बोले अपने घर की बहू के लिए, तो ये कैसा लगेगा और कैसा आगे चल के ये कैसा जा रहा है कि आगे
2: क्यों इस तरह का दबाव बनाया जा रहा था कि आपको लग रहा है कि ये पूरी एक जो बनी बनाई साजिश थी ऐसा आप लोग कहना चाहते हैं?
1: Right, Tejshree. So that was my colleague Tejshree talking to Twisha's sister, where they've alleged about mental and physical harassment and, of course, demands for dowry. But let's now take you through the courtroom arguments and where things stand. What are Samarth's team saying? So first up, Samarth's legal team has clearly said, before we take you through the graphics, of course, Samarth is absconding right now. There's rupees 10,000 bounty on the absconding husband. Let's now take you through the key arguments. First up, Samarth's legal team says there is no evidence of dowry demand. On the other hand, Twisha's family counsel says that WhatsApp chats contain all the details of the demands and the transactions as well. Second up, Samarth's legal team says Twisha's behavior appeared normal. But Twisha's family's counsel says questions must be asked about the last 4 to 5 months and how Twisha was mentally harassed by Samarth and his family. Then, Samarth's team says this could be a case of blackmail. On the other hand, Twisha's family counsel alleges that the house was under the control of the in-laws and that it was the in-laws who continuously harassed Twisha, be it for work or be it for her mood swings or even to the fact, to the point of dowry as well. Another aspect, Samarth's legal team, again adamant that there's been no case of dowry, says no dowry, no cruelty, no dowry death. On the other hand, Twisha's family's counsel says the case involves suspicious circumstances because remember, 15 minutes after Twisha was announced dead, she was on a call with her mother and her family members as well. Another statement is Samarth's legal team says examine Twisha's mental health medication history as well. Remember, Samarth's family accused Twisha of being a drug addict and saying that her mood swings depends on the kind of drugs that she takes. Twisha's family counsel says that anxiety medication is not unusual and that Twisha was suffering from anxiety as well. Another statement coming from Samarth's legal team says opposing anticipatory bail is not justified because we do know that Twisha's family has opposed the anticipatory bail and they've called highly violent case add more serious charges. But this is not a one-off case that we're seeing today. Another case has emerged from Noida, that of a dowry allegation as well. A 25-year-old girl killed. Alright, we are starting off with some breaking news at this point of time, and this is regarding the Noida dowry death. Of course, there's been a loud chorus, justice for Deepika right now. Deepika's husband has been sent to 14 days of judicial custody. Husband and father-in-law sent to judicial custody after the Noida dowry case in which a 25-year-old Deepika, she was killed over dowry allegations. But the latest coming in is that the husband and the father-in-law sent to judicial custody. I have my colleague Akhil now joining me live on this. Akhil, of course, this is a clear-cut case of dowry harassment. Gave rupees 5 lakh. They wanted a new car. And now the man claims that the daughter thrown off roof by the in-laws. The latest coming in is that the husband and the father-in-law sent to judicial custody. Akhil, tell us more. Or we'll go across to Akhil in moments from now. He's Akhil, over to you. Yes, Akhil, please go on. Right, we'll go back in moments from now. But the big news coming is that the husband and the father-in-law in the Deepika dowry case have now been sent to judicial custody after the family claimed that she was thrown off roof. I mean, the latest coming in is that she was thrown off roof by the in-laws. There was dowry demand by the father-in-law and the husband of give rupees 5 lakhs. They wanted a new car, Fortuner car. But the latest coming in is that a big step forward in justice right now for Deepika. We'll go across to Akhil in moments from now. But let's tell you more about what exactly happened in this case. A 14-month-old marriage ended in tragedy in Greater Noida, Uttar Pradesh, when a 25-year-old woman, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-laws' home. Her family has accused her husband and in-laws of dowry harassment and murder, alleging demands for a Fortuner SUV, rupees 50 lakhs in cash as well after marriage. According to the complaint, Deepika had called her family on May 17, that's yesterday, claiming that she was being beaten by her husband and in-laws. Hours later, relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have now arrested the husband and father-in-law. They've been sent to judicial custody while further investigation is underway as we speak. This is, of course, after Bhopal, after we told you what happened with Twisha. This is another shocker coming in from Uttar Pradesh. Take a listen to all the family reactions coming in at this point of time.
4: इतने लंबे समय से आपकी बेटी को परेशान किया जा रहा था।
5: बेटी को शादी के दो तीन चार महीने बाद ही शुरू हो गए थे जी।
4: शादी में जो है आप लोगों ने डाउरी दी थी, डाउरी में स्कॉर्पियो कार दी, कैश दिया 11 लाख रुपए, जेवरात दिए, उसके बाद भी वो मांगा जा रहा था।
5: उन्हें फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए थी जी, 51 लाख रुपये चाहिए थे।
4: तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज कराई?
5: नहीं, पुलिस में क्या, वो तो ये सोच रहे थे एक ना जाने चल जावे, हर आदमी सोचता कि भी आ गई बात बन जावे, पुलिस में कंप्लेंट तो जब होती है पुलिस में कंप्लेंट तो लास्ट हो गया ना, सारा ही कर दिया उन्होंने। कल जब तो बहुत कोशिश करी उसे बचाने की कि भी बात बच जाए।
4: कल आपको इन्फॉर्म किसने किया, बेटी ने इन्फॉर्म किया या परिवार वालों ने इन्फॉर्म किया? कब पहुंचे आप वहां पर अपनी बेटी को देखने के लिए?
5: मैं बेटी का फ़ोन आया था मेरे पास, जो मैं उसके कहने पर मैं गया था और वहाँ से मिल गए, उनसे बात बात करके उन्हें समझा के बोल के सब करके जब वहाँ से मैं निकला तो आधे घंटे बाद, फिर मेरे आधे पौने घंटे बाद मेरे पास कॉल आती है कि भाई आपकी बेटी दीपिका जो वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ गिर गई, जीने पे गिरी है, बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिर गई? तो उन्होंने कही वो छत से गिर गई है। तो छत से गिर गई और हम उसे जो वहाँ ले कर जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल। तो मैंने अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को और अपनी घरवाली को ले कर हम जो शारदा हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ पर हमारी बेटी जो वहाँ पर हमें मृत मिली।
4: Right now we are standing just outside the mortuary center. Behind me you can see the visuals over here. The deceased postmortem has already been done. It took approximately 3.5 hours to complete the postmortem. Right now you can see the ambulance is being just taken out from this mortuary center of sector 94 and it's going towards the residence of the victim. Here you can see the body of the deceased can be seen through the pan right now. And earlier what we have seen that in the FIR, if just go by the FIR details, what we have seen that there were 7 accused that have been named in the FIR. But so far the Gautam Buddha Nagar police team has apprehended 2 individuals. One, the father-in-law of the deceased, and second one, her husband. So right now the visuals just outside the mortuary center, you can see the victim's family members over here, and they have been constantly demanding for justice, and since morning they have been waiting over here to get the body. So the entire process was videographed over here, and right now what we are seeing that the body has been taken in that very one towards the residence of the victim. Video journalist Ashok Mahale, Akhil for NDTV 24/7.
1: Well, 2 cases, justice for Deepika and Twisha, which has shocked the nation. We're slipping into a very short break, but come right back. News and updates continues here on Prime Time.

0: Well, breaking news coming in now as we get back into the show. NDTV has accessed new CCTV footage in the Trisha case. CCTV footage shows that Trisha's last video before her death had surfaced. She is seen going towards the terrace. The video has now been made public. Video has been accessed by NDTV, Trisha's last video. This is the ones that you're seeing on your screens. Her body was found on the same floor in this case that shaken the nation in many ways. Joining me now is Harpreet Kaur, who's been following this very closely. Harpreet, give us the details.
1: बिल्कुल, देखिए त्रिशा का लास्ट वीडियो सामने आया है और ये वही वीडियो है जब वो छत पर दौड़ते हुए जा रही है. उसने हाथ में एक बेल्ट ले रखा है. हालांकि जब वो फांसी पे लटकी मिली थी, ये वही जिम बेल्ट है जो उसके गले में था. वो एक बेल्ट लेकर हुई जाती ऊपर नजर आ रही है और उसके कुछ देर बाद ही अचानक घर में हड़कंप की स्थिति मचती है. दूसरे वीडियो में जैसा कि नजर आ रहा है, उसकी सास गिरीबाला एक कमरे से निकलती है. घर के जो नौकर हैं वो ऊपर की तरफ दौड़ते हैं और फिर त्रिशा का जो शरीर है वो उठाकर नीचे लाते हुए नजर आते हैं. तो ये एक जो लास्ट वीडियो है त्रिशा का, ये सामने आया है. हालांकि इसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि त्रिशा के हाथ में एक बेल्ट है और उस बेल्ट को लेकर वो ऊपर जा रही है. यानी कि जैसा कि त्रिशा के ससुराल वालों का कहना है कि त्रिशा ने खुद फांसी लगाई है, मौत को उसने गले लगाया है और जैसे ही उन्हें पता चला वो शव को नीचे लेकर आए, फौरन CPR दिया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. लेकिन वहीं परिजनों का कहना है कि इसे आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है और अब जो ससुराल वाले हैं वो हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप दे रहे हैं. लेकिन इस वीडियो से बहुत कुछ साफ होता नजर आ रहा है कि त्रिशा ऊपर की तरफ दौड़ रही है, उसके हाथ में ये बेल्ट है और कुछ देर बाद ही उसका जो शरीर है वो घर के नौकर और गिरीबाला से नीचे वीडियो लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं. ये त्रिशा का लास्ट वीडियो है.
0: Okay, Tejshree, NDTV's Tejshree is also live with us at the moment. Tejshree, take us through what you are making of this last video of Trisha, as Harshita was pointing out.
2: Well, absolutely. You see, these two videos have surfaced. These CCTV footages from 10th of May, which clearly shows about how Trisha's body was being brought down from the stairs. However, you know, Trisha's mother-in-law just held a press conference, and in this particular press conference, she has put forward her statements and, in fact, stated that what's a big deal to, you know, bring a, is it a crime to, you know, just bring a body down, a person who just committed suicide. And in fact, she also further stated that they very much expected that these kind of events will be unfolding. And not just that, but she also in fact alleged that Trisha was psychologically challenged, number one. Number two, she also stated that she was taking some kind of drugs. Number three, she stated that Trisha and her son-in-law used to stay in different rooms because it was Trisha who demanded that she wanted space, and perhaps that is why she used to stay in a different room. This is the version of Trisha's mother-in-law, Samath's mother. Apart from that, what Trisha's parents, Trisha's family and friends have to say, they are questioning as to what actually happened and transpired in those 20 minutes is a big question mark, from 10 p.m. to 20 when Trisha was speaking to her mother. What actually happened? And in fact, one more thing has come to light, Veera, that there was a financial transaction that was made of ₹20 lakhs from her father to Trisha, and Trisha's father did purchase some shares for her, which Samant was allegedly forcing to transfer to his account, and also was asking to open a joint account. And also the family members for Trisha are continuously making such allegations that she was subjected to mental torture, a physical abuse as well, and that they also had booked a ticket for her on 15th of May. But Trisha's mother did not come, is what the family of Samarth has been alleging. Now we need to see that when Samarth will be caught is the big question as of now. Back to you.
0: Right, you're making that point. Let's just listen into what the mother-in-law has said, as you were pointing out to all the details of the accusations that were made. The mother-in-law's, let's just play the mother-in-law's reaction in this case.
3: Unka parivesh hamara bahut farak tha. लेकिन सबर्ट से मैंने जब बात की, सर देखो उसको अच्छा स्टिमुलस शायद मिलेगा तो शी इज़ अ ब्राइट गर्ल, अच्छा करेगी। यकीनन मुझे भी ऐसा अंदेशा था क्योंकि शुरू में आई थी खाना खाने से पहले, तो पहली बार यहाँ मिलने आई थी, इनफैक्ट वो हमारे घर पहले आई थी, तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु एंड कुछ, सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है, जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है एंड वी वर हैप्पी। अगर समर्थ की खुशी उसमें थी, उसकी त्विशा की खुशी उसमें थी हमारे लिए, तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू, ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल वो थोड़ा सा आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक PIL अपने नाम से, मेरी एक PIL है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए लोगों के लिए है, वो अभी भी चल रही है, हाईकोर्ट में कुछ डायरेक्शन हुए हैं। मैंने 40 घंटे की ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म कैदियों के लिए कॉग्नाइटिव बिहेवियर थेरेपी की कराई, और मुझे उम्मीद थी कि इस बेटी में भी मैं एक परिवर्तन देख सकूं, शायद दैट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन, जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे, और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी यू नो असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये कई बार इट्स यू नो पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट, उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि व्हाटएवर इट इज़ हमारे घर का एक हिस्सा थी, जो दर्द हमें होता है बिकॉज टुडे द पेरेंट्स दे थिंक वी आर यू नो क्रिमिनल्स, द प्रेस द मीडिया एवरीथिंग हैज गॉन अगेंस्ट अस। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती जाके झूल जाती है इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट, लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंस इज ऑल्सो। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज योर नीडेड नाउ। 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे, एंड उस बार आई टोल्ड हर लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं, इट्स पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मैनी थिंग्स आई कैन नॉट से, और मैं किसी के कैरेक्टर को मैलाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है, बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, यू वांट टू बुक योर टिकट, आप आ जाइए रहिए बेटी के साथ, नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर, शी डिडंट कम। और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंचतत्व

आत्म में विलीन नहीं होने दे रहे। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना। उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर यू नो हर

0: Joining us now, live and exclusive on NDTV, the architect of this historic victory.
1: Janta ko badhai de raha hoon.
0: To all our viewers who've joined us in this long day, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
2: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with
3: Good evening and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, on every story that matters to you that you've been talking about, the buck stops here. And today on the show, we're going to talk about the Bhochala verdict and how the aftershocks are being felt even now. People are left wondering, have the floodgates been opened from Babri to Bhochala? That's coming up in just a minute. And at 8:30, we're going to talk about a piece that really has set the cat among the pigeons. Dr. Vikram Sampath, who now argues that it's time to start asking hard questions about the legacy of the Mughals. Were we being told history, taught history in a romanticized fashion? And is it time to start re-examining what historical facts have been fed to us? All of that and much more coming up in the next 1 hour. But first, right at the top, we're going to talk about the Bhochala verdict. And it's been less than a week since the High Court in Madhya Pradesh ruled that Bhochala is a temple and not the Kamal Maula Mosque as was being claimed so far. The days since the judgment have seen a steady stream of visitors flock to Bhochala and offer prayers. It's happening even today. But it is these very images of the people streaming in, of the saffron flag being hoisted, of the puja being done, that have sparked a fear. What next? Will other places of worship, will other mosques also see similar demands now? Arshad Madni of the Jamaat-e-Ulema warned against a growing atmosphere in the country where not just Muslims but Islam itself is now being put on target. He asked why repeated actions are being taken against mosques and madrasas and Islamic symbols are under attack. Former Madhya Pradesh Chief Minister Digvijay Singh too questioned the Bhochala verdict, called it vague and wondered what its real intent was.
4: Places of Worship Act ka ko उसका एक अलग ही तशरीह कर दी गई है और वो सारा क्योंकि उस ज़माने में जब बिल्कुल जजमेंट आने वाला था तो ये तासुर दिया गया था बिल्कुल सीनियर मोस्ट लोगों की तरफ से पूरे मुल्क में उसमें लीगल फ्रेटर्निटी भी शामिल थी कि भाई ये एक्ट मौजूद है बस ये एक मामला है इसको हो जाने दो ख़त्म हो जाने दो जो भरोसा दिया गया था अब वो कहेंगे कहाँ भरोसा दिया था तो वो तो इस एक्ट की शक्ल में भरोसा मौजूद था अब इसको आप खत्म करिए ना ताकत तो है ही है ना तो खत्म करिए तो ज्यादा अच्छा होगा ठीक तरीके से कर लीजिए ये घुमा फिरा के करने की क्या जरूरत है
5: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं आज देख लो आज क्या हो रहा है जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है
6: इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है ये एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा इसके अंदर चर्च इसमें पूजा का कोई प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है ये भोजशाला है या मस्जिद है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे किया था उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि यहां पर मंदिर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य रूप से केवल हिंदू मुसलमान के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है
7: कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है

0: I feel suffocated. They will not let me live. Mummy, I will go mad here. I can't handle this anymore. These were 33-year-old Twisha's last messages to her mother. Twisha had married Bhopal-based advocate Samarth Singh in December 2025 after meeting him on a dating app a year earlier. But within months, the marriage had allegedly turned toxic.
1: तीन दिन पहले भी उसने आपसे कहा था कि मम्मी मुझे आकर ले जाओ
2: वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करता था सही हो जाता था हर एक माँ बाप चाहते हैं हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपनी बेटी को कि भाई सब एडजस्ट करने का ही बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं शुरू शुरू में सब जगह दूसरी जगह प्रॉब्लम साथ ही है तो अभी है ना 10-12, 10-15 दिन से इससे ज्यादा वो कर दिया था
0: अकॉर्डिंग टू चैट शेयर्ड बाय द फैमिली Twisha repeatedly asked her mother to come and take her home. Twisha also alleged mental harassment and claimed her husband accused her of carrying another man's child. According to the family, Twisha made a final phone call to her mother around 10:05 p.m. on the night of the incident. But the call abruptly disconnected after her husband entered the room. Her brother, Major Harshit Sharma, says repeated calls to Twisha, her husband, and her mother-in-law went unanswered. At around 10:20 p.m., the family was informed that Twisha was not breathing. She was rushed to hospital and declared dead.
3: हम चाहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जरूर जाएंगे हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की निष्पक्ष जांच हो उसके लिए जांच के लिए उसकी बॉडी हमारा अधिकार है कि उसको एम्स दिल्ली में भी शिफ्ट किया जाए
0: Twisha was supposed to return to her parents' home in Noida on May 15. She died 3 days before. According to the post-mortem report, Twisha died due to antemortem hanging by ligature. But the report also mentions multiple injuries on her body sustained before death. This detail has intensified the family's suspicion. Twisha's relatives have accused her husband, Samarth Singh, and mother-in-law, Giribala Singh, of murder. The family is now demanding a second post-mortem examination at AIIMS Delhi. Police have registered a case of dowry harassment and abetment to suicide. Meanwhile, Twisha's husband, Samarth Singh, is still absconding. NDTV Bureau Report.
4: And Twisha, by the way, was like any of us, like anyone we know who's gotten married and entered a new home. She used to communicate with her parents and her brother, a serving army officer, by the way, on WhatsApp. And here are Twisha's last texts to her mother, which have become now part of the investigation. Look at what she said on WhatsApp to her mother. They won't let me live. Samarth asked whose baby I was carrying. Please come take me away. These are not suggestions. These are real words of Twisha. I am very disturbed, she said to her mother. They want Papa to rub his nose to the floor and apologize. Mummy, I will go mad here, said Twisha. I cannot handle this anymore. And this is just only a sampling. There are hundreds of texts. This is only a sampling of what Twisha was saying on WhatsApp to her mother. Now take a look at her chat with her brother, who is a serving major in the Indian Army. She says, this is my problem. I will handle it. Otherwise, it will be that I keep complaining. All of them think I do drugs and that's why I'm in a bad mood. They can't see there that their son has abandoned me, that my mood could be ruined because of this. I am feeling stifled. These people won't let me cry nor let me be happy. I am trapped. They are all very cruel. They have no empathy for the other person. I feel suffocated here. Nothing can go right now. Again, just a sampling of what Twisha was saying to her brother. I spoke to Navnidhi Sharma, Twisha's father, with whom she also was sharing texts. And this is what he said to me. And I've asked him a question about what about Twisha's own parents? What about him? What about the mother? Why did they allow Twisha to remain in that house when they knew she was being tortured, when they knew that her honeymoon began by being assaulted by her husband? And joining me live now is young Twisha Sharma's father, Navnidhi Sharma, who has been protesting outside the Chief Minister's residence for the last few days, demanding justice and a fresh post-mortem. Her husband, Samarth, a well-known lawyer in Bhopal, has been absconding. His bail has been denied as well. And Navnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, आपका स्वागत है. मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है त्विशा के डेथ को लेकर. तो पहले मैं ये बोलूँगा कि वी एक्सप्रेस आर डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू यू सर. वी आर वेरी सॉरी टू हियर अबाउट दिस न्यूज़. मेरा पहला सवाल नवनिधि जी, मैं शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी? एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
3: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई. हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था.
4: क्या ये कुछ
3: आ रही है सर अब?
4: जी जी आ रही है. क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी? दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
3: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है. एक साल भर, डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में. हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
4: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनिधि जी, क्या दहेज की कुछ बात थी? दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
3: देखिए आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए. आदमी बोलता है, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे.
4: तो ऐसे क्या
3: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
4: जी. तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
3: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया. हमने हमारे लोगों ने जाकर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए. उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
4: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी? तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
3: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे. तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने. ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट. हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी. एक्चुअली बेटियाँ हैं ना, बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए. इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट. पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे. हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई.
4: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी कि जिसमें
3: बेड़िया
4: जी जी जी
3: आती थी आना चाहती थी सर. ये एक
5: एक भेड़िए ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे के पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
6: लेकिन नवनीत जी, आपको आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
5: नहीं नहीं, पता नहीं था, पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इससे घर में रहने में कोई

0: परेशानी होगी, आई वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली, मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
1: आप मान रहे हैं कि आपकी गलती है नवनीधि जी की, हनीमून में जो हुआ था त्विशा को धक्का मारा समर्थ ने और आपने कुछ नहीं किया,
0: मानते हैं कि सर देखिए
1: जी
0: इंडिकेशन पर ऐसा है कि कोई भी आदमी जब इतनी शादी करता है तो ये सोच के नहीं करता है कि अगर कोई आदमी एक गलती कर देगा तो तुरंत आपकी शादी कैंसिल कर देगा। आदमी यही कोशिश करता है, बिटिया लोग यही कोशिश करती है कि उनका सुहाग बचा रहे, यही हमारी हिंदू परंपरा है सर। बेटियां सुराग को बचाने के लिए बहुत सारा दुख दर्द सहन कर लेती हैं, बाद में बताती हैं अपने माँ बाप को, एकदम इमीडिएटली शेयर भी नहीं करती हैं बहुत सारी चीज़। अगर आज उसने चैट में जो शेयर किया है और जो उसने हमको वर्बली बोला है तो उसका 20% ही पार्ट समझिए आप उसका। तो शिवाज इन पेन, वो पर स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उसने मेरे को बोला था पापा आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, मैं यहाँ से छोड़ के आऊँगी और हम लोग अपना बिजनेस करेंगे या जो भी है काम करेंगे एंड आई विल लीड माय लाइफ।
1: और जब जब त्विशा ने ये बोला था और त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी ये आप जानते थे नवनीधि जी, तो आपने उसे वहाँ से तुरंत निकाला क्यों नहीं फिर? ये एक बात नहीं थी, हनीमून के बाद भी काफ़ी सारे टेक्स्ट आए थे, कुछ इंसिडेंट्स हुए थे।
0: ऐसा नहीं, काफ़ी बात निकाला पर यह था, मैंने आपको बोला ना कि लड़की का मोटिव हमेशा पॉजिटिव साइड में होता है, लड़की का मोटिव कभी भी ऐसा नहीं होता कि छोटे मोटे या किसी ऐसी दुर्घटना को वो अपने सीने पर लगा करके संबंध तोड़ दे। संबंध तोड़ना लड़की के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है सर उसकी लाइफ का। हाँ, वो अब धीरे इतना सहन करने के बाद वो इस स्टेज में पहुँच गई थी कि वो हमने निर्णय उसके ऊपर छोड़ा हुआ था लड़की के ऊपर। मैंने कहा यू आर ट्राइंग, यू मस्ट नॉट ट्राई, हमने बोला था। बोले पापा आई एम ट्राइंग जस्ट लास्ट टाइम और अब अगर मुझे नहीं मिला तो आई विल लीव, डेफिनेटली आई विल मेक ए फाइनल डिसीजन।
1: तो फिर अगर अगर
0: प्रोसेस है सर,
1: नवनीधि जी अगर त्विशा उनके मैरिटल होम को छोड़कर वापस आना चाहती थी आपके पास, तो फिर ये एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया उसने, आपके अंडरस्टैंडिंग में क्यों लिया उसने?
0: उसने जी मेरे, आप देखिए ना कि उसने एक्सट्रीम स्टेप लिया कि उसको मार दिया गया या बहुत डूबी है, संदिग्ध है। आज हम PM2 की डिमांड करी है हमने बहुत सीरियसली। अगर आज भी अगर आप देखो जो कोर्ट में जमानत मिली है उसमें पुलिस ने जो दलील दी है कोर्ट को, उसमें साफ साफ बोला है कि ये रसूखदार लोग हैं, ये केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनके जो क्लोज रिलेटिव हैं वो यहाँ के लोकायुक्त हैं सत्येंद्र सिंह जी, इनके हाई कोर्ट में जजेस हैं, इनके लोग हर जुडिशरी में जगह जगह बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, इन्हीं के लोग मेडिकल में बैठे हैं। पूरी फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है जो पहली PM रिपोर्ट आई है जो कि फाइंडिंग से मिसमैच कर रही है, इसलिए हमने PM2 की डिमांड की थी जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अप्रूव करने के बाद में कि आपका जो है तुरंत बॉडी भेजी जाए PM2 के लिए, वो रिजेक्ट कर दी गई और अंडर इसी जुडिशरी के लिए डाल दी गई अप्रूवल के लिए। इट मीन्स जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर वो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, साक्ष्य खत्म हो जाते हैं तो इस न्याय प्रक्रिया का कोई भी फायदा नहीं है।
1: नवनीधि जी, त्विशा का बॉडी अभी भी मॉर्चुरी में है,
0: स्ट्रॉन्ग है।
1: आपका डिमांड है कि PM2
0: अभी भी मॉर्चुरी में, अभी भी मॉर्चुरी में
1: पोस्टमार्टम हो जाए, समर्थ अभी
0: अब्सकॉर्ड है। मैं तो मेरा रिक्वेस्ट है
1: नवनीधि जी, समर्थ कहाँ है, उसका बेल डिनाई हो चुका है अभी।
0: ये तो पुलिस से पूछना चाहिए सर, समर्थ इन रसूखदार लोगों के घर पर ही मिलेगा, कहाँ मिलेगा सर, इनको देखना चाहिए। आज पुलिस उसको कस्टडी में नहीं ले पाती है तो ये पुलिस का फेलियर है ना सर।
1: 12th मई की रात 10 बजे आखिरी बात हुई त्विशा से,
0: सर ये बहुत
1: जी, उस वक्त क्या कहा उसने, कोई परेशानी बताई थी उस
0: मेरी
1: रात?
0: रिक्वेस्ट है सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, इस केस को अगर मेरे को आपको न्याय दिलाना है तो मेरे लिए प्लीज़ आवाज़ उठाइए, इस बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से बचाइए, डिकम्पोज होने से बचाइए, इसको तुरंत PM2 के लिए दिल्ली भिजवाइए, प्लस सर इसकी स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी,
1: वो तो NDTV करेगी और कर रही है सर।
0: आप सोचते हैं सर कि ऐसे इसमें मुझे कोई न्याय मिल रहा है? जी जी सर,
1: नहीं, हम तो लगातार करेंगे
0: ऐसी न्याय प्रक्रिया में। आप मैं विक्टिम का बाप होकर के सर

0: विक्टिम का भाग हुआ, मैं खुद विक्टिमाइज हो रहा हूँ आपके जुडिशियल सिस्टम में, सर मैं कैसे सर्वाइव करूंगा एक दूसरी जगह।
1: नवनीत जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, मैं आपको वादा देता हूँ, अभी नेशनल टेलीविजन पर मैं आपको वादा दे रहा हूँ कि NDTV आपके साथ खड़ा है और जस्टिस लाने तक हम इस स्टोरी को रिपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं आपको नेशनल टीवी 9 PM NDTV न्यूज पर आपको लाइव ले रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या पहले कभी त्विशा ने अपने इन लॉज की मारपीट या जुल्म की बात की थी आपसे? कोई पुरानी शिकायत कुछ भी था हनीमून के बाद, ऐसा कुछ भी सामने आया था?
0: बहुत पुरानी शिकायत है सर, हमने उसके व्हाट्सएप चैट्स हैं जो हमने आज कोर्ट में सरेंडर किए साक्ष्य के रूप में, जो मौखिक बात होती है सर वो होती है, पर वो एक इस तरीके का पूरा जो एक सीक्वेंस चला है कि उस लड़की ने सोचा कि ये कैसे भी चेंज हो जाए, ये ऐसी बात ना करें, उसने एक प्रोसेस को झेला है सर, वो बाद में एंड तक उसको प्रोसेस को झेलती रही है सर, वो व्हाट्सएप चैट हमने सबमिट करी है कोर्ट में सर।
1: आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं नवनीति जी, ऐसे आपने बताया है मीडिया को, आपको आपका कहना है कि सबूत मिटाए गए, ये आरोप आप किस चीज के आधार पे लगा रहे हैं? आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं आप?
0: ये बिल्कुल बिल्कुल इस जी मेरे हमको कोर्ट परिसर में हमको अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बुलवानी पड़ गई, क्योंकि कोर्ट परिसर में हमारे ऊपर अटैक हुआ, 2 बार हमको अटैक किया गया, ये बहुत सारे हमको परेशानी हुई है, और यहाँ पर हम अकेले हैं सर, हमारा कोई नहीं है, आज कोई यहाँ पर लॉयर खड़ा नहीं हो सकता इनके सामने, यही तो लोग हैं, इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा सर, यहाँ पर ये सिस्टम के खिलाफ कौन खड़ा होगा सर? आप देख रहे हैं ना कि अप्रूवल देने के बाद में जुडिशरी में डाल दिया गया PMTU का अप्रूवल सर, इट मीन्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सर, और आज जो बेल मिली है सर, किस बिना पर बेल मिली है, इसमें पुलिस ने दलील दी कि ये लोग बहुत रसूख वाले लोग हैं, पुलिस ने बोला सर, और ये साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये पुलिस का कहना है, मेरा भी कहना नहीं है सर।
1: नवनीति जी,
0: पहले वाले अक्यूज को छोड़ दिया गया,
1: गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं, क्या आपको लगता है इसलिए पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन में डिले किया है?
0: जी जी सर, रिटायर्ड जज भी हैं, आज भी वो प्रेजेंट में भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, हटाई नहीं गई हैं सर, आज भी वो रन कर रही हैं ऑफिस, अगर कोई आदमी ऑफिस रन कर रहा है उसके खिलाफ आदमी कैसे खड़ा हो सकता है? यहाँ वकील लॉबी नहीं खड़ी हुई, हमें यहाँ वकील नहीं मिले सर, वी आर इन अ वेरी डेंजरस एंड प्रिकेरियस सिचुएशन सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
1: नो, NDTV इज विद यू, दैट्स व्हाई यू आर लाइव।
0: मैं को ये नहीं प्रूव करना
1: सर। नवनीति जी, वी अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज वाचिंग यू राइट नाउ,
0: वी आर अंडर वेरी मच प्रेशर।
1: यस यस
0: सर, सर
1: आई वांट टू आस्क यू टू मोर क्वेश्चंस।
0: दिया जाता प्रेशर ऐसे दिया जाता है, FIR लॉज नहीं हो रही थी 3 दिन तक सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: यहाँ पर 5 दिन के बाद FIR लॉज हो रही है,
1: नवनीति जी
0: की प्रताड़ना हो रही है, ये सब क्या दिखा रहा है सर? CM हाउस में प्रोटेस्ट किया, CM ने हमें 1 मिनट का समय नहीं दिया मिलने का सर,
1: और आपका
0: CM ने हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया सर किसी भी काम का।
1: आपका बेटा एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर भी है, मेरी बात हुई है उनसे भी, और मुझे पता चल गया कि कितना काम करना पड़ा एक FIR लॉज करने के लिए, लेकिन एम्स में अभी भी नवनीति जी त्विशा का बॉडी पड़ी रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, और दूसरा पोस्टमार्टम क्यों मांग रहे हैं आप स्पेसिफिकली?
0: जी स्पेसिफिकली सर मैं बताऊं, उसमें जो फैक्ट्स लिखे गए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं सर बिल्कुल भी, उसमें बहुत सारी चीजें जो मैच नहीं कर रही हैं, जो हमारी फेंडिंग्स आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मैच ही नहीं कर रही हैं सर, उसमें पूरा ये कैकस निकल के आएगा सर, मैं तो कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है आपको वॉम ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जवाब देना पड़ जाएगा इसमें, इसलिए ये PM2 की रिपोर्ट जुडिशरी में डाली गई है कि अप्रूवल ड्यूरी, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको डिले करके, इसको डिकेइंग प्रोसेस में डाल करके, डिकम्पोज करके इसको सत्य को छुपाया जा रहा है।
1: आखिरी सवाल नवनीति जी, आप मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, अब आपकी सरकार से एक ही मांग क्या है? आपने बोला है कि उन्होंने आपको कोई भी अश्योरेंस नहीं दिया है, तो क्या मांग रहे हैं आप उनसे?
0: हम मिलने का समय नहीं दिया सर, मिलने का समय नहीं दिया, 1 मिनट के लिए नहीं मिले वो हमसे, कोई अश्योरेंस नहीं आया सर हमारे पास में, और ये मुझे लगता है कि असमर्थता व्यक्त करी, या उनके लिए ये केस कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, दूसरी चीज़ें प्रायोरिटीज में हैं उनके, एक गरीब आदमी की बेटी मर जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
1: ओके, नवनीति शर्मा, हम आप

0: into the death of Twisha under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to abscond with a Rs 10,000 bounty announced for him and also passport cancellation proceedings initiated against him. Two new CCTV tapes have now emerged, which throws light on the last 53 minutes of Twisha's life at her matrimonial home in Bhopal. In the first CCTV tape, Twisha can be seen going up the stairs. In the other CCTV, it can be seen Twisha is being given CPR and then being taken out. There are claims, there are counterclaims doing the rounds from both the families. Let's now take a look at what exactly happened. Let's now take you through the contrasting claims that are coming in from Twisha's in-laws and what Twisha's family's claims. So, the mother-in-law today gave an interview in which she said she's accused Twisha. She goes on to say puja part was just a show-off. Now, Twisha's family is perhaps seeking justice after their daughter's death. Twisha sent multiple distressed messages to her family, to her mother and her brother as well. The next claim, mother-in-law, who's a retired judge, claims Twisha took an abortion pill. But in a text message that Twisha sent to her family, she said that Samarth, her husband asked whose baby I was carrying. There were allegations on Twisha that she was perhaps carrying an illegitimate child. Next up, mother-in-law says Twisha visited a psychiatrist and attended counselling. Her in-laws continuously blamed that she perhaps was having some kind of a mental illness. To which these are some screenshots of the messages that Twisha sent. She said that I'm very disturbed. Come take me away. They don't wish anything nice for me. Then, mother-in-law says Twisha had shivering hands withdrawal symptoms. Pardon me, claiming that she was taking drugs. She was taking marijuana, and post that she was having drug withdrawal symptoms. But Twisha sent this message to her brother in which she said that all of them think I do drugs and that's why I'm in a bad mood. The last statement coming out of the mother-in-law, which she says young women take extreme steps easily and that is why she killed herself. That's the claim that Twisha's in-laws are making, that she died by suicide. But this is again a message which Twisha sent to her family in which she said they have no empathy for the other person and that they don't want me to ever be happy. Hence, these are some of the claims, the counterclaims coming out from both the sides of the family. Earlier today, our managing editor, Shivarur, spoke with Twisha's father. Take a look.
1: समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
2: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
1: क्या ये कुछ
2: आ रही है सर अब?
1: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
2: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। एक साल भर, डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
1: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनिधि जी, क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
2: देखिए, आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे,
1: तो ऐसे क्या
2: समझा जाता है कि ये दहेज ही है।
1: जी, तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
2: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमारे लोगों ने जाकर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने एफआईआर में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
1: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
2: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियाँ है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
1: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी,
2: जिसमें बेड़िया
1: जी
2: आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
0: Well, nearly 72 hours since her death came to the limelight, Twisha's mother-in-law, Giribala Singh, a retired judge, has spoken out, blaming her now-dead daughter-in-law over her habits and medication.
3: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas hum log saath ko gaye the, jab wo chah rahe thi wo first day ki pregnancy ko reverse kare, to wo baar baar wo pooch rahe thi why do you want this aur aapne ye kadam kyun uthaya, tab usne मेरे सामने कहा आई हैव कंज्यूम्ड लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है। शी वॉज ऑन शिजोफ्रेनिक ड्रग्स, अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिजोफ्रेनिक के अंदर दो लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता है। उसका था आई नीड माई स्पेस, मुझे दूरी भी चाहिए, मेरे मायके वाले मुझे डिसओन किए हैं, और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री, कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी।
0: So you've heard claims and counterclaims from both the sides of the family, but let's tell you more about Twisha Sharma herself, a 33-year-old young life lost too soon. A life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has ended in tragedy. Twisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. Our next report telling you more. A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Twisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a rupees 10,000 bounty announced on her husband Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry death. While a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Twisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved

0: Thank you for the love.
1: Across the country.
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
3: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
4: आज के की खावें झालमुड़ी ना माचेर झोल।
0: How will you celebrate?
3: झालमुड़ी माचेर झोल with रसगुल्ला।
5: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
6: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
7: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
0: One clip that went most viral. Was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
8: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
9: I think that was not the only incident.
10: Tabe puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात
12: वाओ मामा क्या स्वाद है
11: अरे मेरे राजा
13: सबका राजा आग और मसाला
2: The front lines of Kargil The fury of Operation Sindhu
14: So many attacks.
2: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
14: It's incredible.
2: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
14: Welcome to Left, Right, and Center.
2: Hard facts.
14: War struck country.
2: Hard questions.
14: In the Ukraine.
2: 30 years of trust.
15: In the Kargil area.
14: North Ukraine.
15: In France. In Italy.
14: At Srinagar.
15: Zionist France.
14: Vishnu Shom for NDTV.
2: Vishnu Shom. Only on NDTV.
16: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines.
17: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7 with me, Tanisha Avasthi. Lots lined up for you on this edition, but first, as always, the headlines. 33-year-old Twisha's death shocks the nation. Dowry angle under probe. Absconding husband's bail plea has now been rejected. Retired judge mother-in-law now blames the victim. NDTV meanwhile accesses the heartbreaking chat of Twisha with family and friends. Prime Minister Modi conferred Norway's highest honour. The Grand Cross is the highest grade of the Royal Norwegian Order of Merit awarded in recognition of exceptional service towards strengthening ties with Norway. Big decision by Chief Minister Suvendu Adhikari. State government scraps religion-based welfare schemes. West Bengal also planning a review of the OBC list. Tamil Nadu woman crushed to death after elephant falls on her in Karnataka's Dubre camp. State Environment Minister swings into action, orders tourists can only see elephants from 100 feet away. And Pakistan deploys troops and jets to Saudi under defense pact amid Iran war. Deployment includes 8,000 troops, JF-17 jets, drones, HQ-9 air defense systems. In a major development in the Twisha death probe, the bail plea of her husband Samarth Singh has been rejected by the court as the probe into the death of Twisha under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to abscond with a 10,000 rupees reward announced for him and passport cancellation proceedings initiated against him. Two new CCTVs, meanwhile, have emerged which throws light on the last 53 minutes of Twisha's life. In the first CCTV tape, Twisha can be seen going up the stairs. In the other CCTV, it can be seen how Twisha is being given CPR and then being taken out. There's a claim and counterclaim from both the families. Let's take a look at them.
18: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas hum log saath ko gaye the jab wo chah rahi thi wo first day ki pregnancy ko reverse kare to wo baar baar wo pooch rahi thi why do you want this aur aapne ye kadam kyon uthaya tab usne mere samne kaha I have consumed a large quantities marijuana unke samne usne kabool kiya maine large quantities mein marijuana consume kiya hai. She was on schizophrenic drugs. अगर उसने कुछ कहा भी है क्योंकि एक schizophrenic के अंदर दो लोग बात करते हैं इकट्ठा बात करते हैं क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता है उसका था आई नीड माई स्पेस मुझे दूरी भी चाहिए मेरे मायके वाले मुझे डिसओन किए हैं और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी.
17: You heard what the mother-in-law had to say. Now listen into what Twisha's father had to tell NDTV's Shiv Arur. Let's take a listen into what he had to say just a short while back.
19: समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
20: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई. हमें शादी से कुछ छः महीने पहले साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया अप्रूवल दे दिया था.
19: क्या ये कुछ
20: आ रही है सर अब?
19: जी जी आ रही है. क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
20: नहीं नहीं जल्दी शादी नहीं हुई है. एक साल भर डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
19: शादी में क्या दहेज दिया था आपने नवनिधि जी? क्या दहेज की कुछ बात थी? दहेज दिया था आपने ऐसा कुछ था?
20: देखिए आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए. आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे.
19: तो ऐसे क्या
20: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
19: जी. तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
20: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है फलाना नहीं है इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया फलाना ये हो गया. हमने हमारे लोगों ने जा कर के उनको गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए. उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे कैसे पिलाएंगे अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
19: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई कुछ डिमांड्स आए?
20: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट। हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी एक्चुअली। बेटियाँ ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए। इट वॉज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे। हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
19: त्विशा वापस आना चाहती थी,
20: जिसमें बेड़िया
19: जी जी जी
20: आती थी, आती आना चाहती थी। सर ये एक एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड। बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
17: Well, a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has now ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her in-laws' house in Bhopal. Here is her story.
1: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a Rs 10,000 bounty announced on her husband Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry death. While a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Trisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved difficult. Trisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. And beyond her professional achievements, Trisha was also known for her interest in wellness and spirituality. In 2024, during her corporate career phase, Trisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to Trisha's family, within months of the marriage, allegations of dowry harassment and mental distress started surfacing. Her cousin Meenakshi spoke with NDTV and said that she was a jolly and happening girl.
21: इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी, और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कहती वही फैमिली में यार पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है, ऐसे ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए। क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए, 15 किलो उसका वेट लूज हुआ।
1: Now, as investigators piece together the events leading up to her death, questions continue to grow around the circumstances of Trisha Sharma's final months. With a husband still absconding and a family seeking accountability, the case has sparked fresh conversations around dowry harassment, mental distress, and the hidden struggles behind seemingly perfect lives. We report NDTV.
17: Now, if you thought that Trisha's case was the only case, think again, because there is another case that's come to light from Noida. A 14-month-old marriage has ended in tragedy in Greater Noida in Uttar Pradesh, where a 25-year-old woman, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-laws' home. Her family has accused her husband

0: and in-laws of dowry harassment and murder, alleging demands for a Fortuner, SUV and rupees 50 lakh in cash. According to the complainant, Deepika had called her family on May 17, that's just yesterday, claiming that she was being beaten by her husband and in-laws. Hours later, relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have now arrested the husband and father-in-law, while further investigation in the case is currently underway.
1: Right now, we are standing just outside the mortuary center. Behind me, you can see the visuals over here. The deceased postmortem has already been done. It took approximately 3.5 hours to complete the postmortem. Right now, you can see the ambulance is being just taken out from this mortuary center of Sector 94, and it's going towards the residence of the victim. Here you can see the body of the deceased can be seen through the pan right now. And earlier what we have seen that in the FIR, if just go by the FIR details, what we have seen that there were seven accused that have been named in the FIR. But so far, the Gautam Buddha Nagar police team has apprehended two individuals. One, the father-in-law of the deceased, and second one, her husband. So right now, the visuals just outside the mortuary center, you can see the victim's family members over here, and they have been constantly demanding for justice. And since morning, they have been waiting over here to get the body. So the entire process was videographed over here. And right now, what we are seeing that the body has been taken in that very one towards the residence of the victim. We do the journalist Ashok Mahale, Akhil for NDTV 24/7.
0: Moving on to some other stories that we're tracking. Fuel prices have sparked a fresh political showdown, with the opposition attacking the centre over the second price hike of CNG. CNG prices have gone up by 1 rupee per kilogram. This was the second CNG price hike in Delhi NCR since May 15th. Congress has blamed the government for failing to tackle the impact of the Gulf conflict, saying common people are suffering while the Prime Minister is abroad. The BJP has meanwhile hit back, accusing Rahul Gandhi of irresponsible remarks and claiming that India has only seen a minimal fuel price hike despite global disruptions caused by the war. There are reactions that are coming in on that political story. Let's listen in.
2: Diesel aur petrol ke daam itne bada rahe hain. Modi ji agar yehi election ke pehle karte तो मालूम होता था. उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के इन्फ्लेशन, अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में, चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा. इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ाए. तो इससे ये दर्शाता है कि फोर साइटेडनेस हमारे बीजेपी को, सरकार को, मोदी साहब को नहीं है.
3: तेलंगाना सरकार 36-37% वैट कलेक्ट करते हैं हर लोगों के ऊपर. क्यों आप लोग, अगर जनता के ऊपर प्रेम है तो क्यों नहीं करते? हम किए ना. मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, हम वैट कम किया है अलग अलग स्टेट्स में, आप क्यों नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं. राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ, ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है. सारी दुनिया से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं. लगभग 40 देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, 40 देशों से.
4: दाम तो बढ़ेगा ही, अब युद्ध चल रहे तो थोड़ा सा तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा. माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कन्वॉय था वो दो गाड़ी में आ गया है. माननीय प्रधानमंत्री बोले हमसे दो गाड़ी लेकर निकलेंगे, तो हम लोग सबको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है. हफ्ता में एटलीस्ट 2 डेज की 3 डेज. देश और पृथ्वी अभी एक संकट से जा रहे, इसमें हम लोग को एडजस्ट करना ही है. अभी और आगे का दिन अभी अच्छा हो जाएगा, तो कोई चिंता नहीं.
5: देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ, और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है. ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है, और डीएसी या ओटीपी

0: In a major development in the Twisha death probe, the bail plea of her husband Samarth Singh has been rejected by the court as the probe into the death of Twisha under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to abscond with a 10,000 rupees reward announced for him and passport cancellation proceedings initiated against him. Two new CCTVs, meanwhile, have emerged which throws light on the last 53 minutes of Twisha's life. In the first CCTV tape, Twisha can be seen going up the stairs. In the other CCTV, it can be seen how Twisha is being given CPR and then being taken out. There's a claim and counterclaim from both the families. Let's take a look at them.
1: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas hum log saath ko gaye the jab wo cha rahe the wo first day ki pregnancy ko reverse kare to wo baar baar wo pooch rahe the why do you want this aur aapne ye kadam kyon uthaya tab usne mere samne kaha I have consumed a large quantities marijuana unke samne usne kabool kiya maine large quantities mein marijuana consume kiya hai. She was on schizophrenic drugs. अगर उसने कुछ कहा भी है क्योंकि एक schizophrenic के अंदर दो लोग बात करते हैं इकट्ठा बात करते हैं क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता है उसका था आई नीड माई स्पेस मुझे दूरी भी चाहिए मेरे मायके वाले मुझे डिसओन किए हैं और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी.
0: You heard what the mother-in-law had to say. Now listen into what Twisha's father had to tell NDTV's Shivarur. Let's take a listen into what he had to say just a short while back.
2: समर्थ से मुलाकात कब हुई थी एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला
3: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई हमें शादी से कुछ छः महीने पहले साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया अप्रूवल दे दिया था.
2: क्या ये कुछ
3: आ रही है सर अब
2: जी जी आ रही है क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था.
3: नहीं नहीं जल्दी शादी नहीं हुई है एक साल भर डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादियों मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
2: शादी में क्या दहेज दिया था आपने नवनिधि जी क्या दहेज की कुछ बात थी दहेज दिया था आपने ऐसा कुछ था.
3: देखिए आजकल के टाइम में दहेज है ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे
2: तो ऐसे क्या
3: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
2: जी. तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से
3: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने एक उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है फलाना नहीं है इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया फलाना ये हो गया हमने हमारे लोगों ने जा कर के उनको गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने एफआईआर में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे कैसे पिलाएंगे अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
2: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई कुछ डिमांड्स आए
3: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट। हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियाँ है ना, बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए। इट वॉज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे। हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
2: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी,
3: जिसमें बेड़िया
2: जी
3: आती थी, आती आना चाहती थी। सर ये एक एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है। सर दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड। बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
0: Well, a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has now ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her in-laws' house in Bhopal. Here is her story.
4: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a Rs 10,000 bounty announced on her husband Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry theft. While a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Trisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved difficult. Trisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. And beyond her professional achievements, Trisha was also known for her interest in wellness and spirituality. In 2024, during her corporate career phase, Trisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to Trisha's family, within months of the marriage, allegations of dowry harassment and mental distress started surfacing. Her cousin Meenakshi spoke with NDTV and said, she was a jolly and happening girl.
5: इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी, और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहती वही फैमिली में यार, पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है। ऐसे ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए, क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए। 15 किलो उसका वेट लूज हुआ।
4: Investigators piece together the events leading up to her death. Questions continue to grow around the circumstances of Trisha Sharma's final months. With her husband still absconding,

0: बंगाल दोनों में है तो रसगुल्ला किसका है? उड़ीसा का या बंगाल का?
1: उड़ीसा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
2: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
3: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
4: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
5: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.
6: Thank you for staying with NDTV. Prime Minister Narendra Modi was conferred with Norway's highest civilian honour, the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit, for his contribution in advancing the India-Norway relationship and his leadership. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi expressed his deep gratitude to the King and to the people of Norway for this honour. Prime Minister Narendra Modi also called on King Harald V of Norway and highlighted India's rapid transformation and the emerging opportunities it offers for Norwegian businesses. This is Prime Minister Modi's maiden visit to Norway and marks the first visit by an Indian Prime Minister to the country in 43 years.
7: October 2025 mein humne European Free Trade Association ke saath trade and economic पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टेपा लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आज आपको विश्वास से कहता हूं यह हमारी गारंटी है। यह केवल संभावनाओं की नहीं, यह एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कई सीईओस भारत के वाइब्रेंट गुजरात और अन्य इन्वेस्टर समिट में भी बड़े उत्साह के साथ हमेशा भाग लेते रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर इसे न्यू फ्रंटियर की ओर ले जाना चाहिए और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे।
6: Prime Minister Narendra Modi's ongoing engagement with the Nordic leaders marks a significant shift from India's foreign policy. Beyond cultural exchanges, traditional dance performances and high-level bilateral meetings, the visit underscores New Delhi's intent

0: घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
1: नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। 1 साल भर 1.5 साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है बाद में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
0: शादी में क्या
1: शादी
0: दहेज
1: में
0: दिया था
1: जल्दीबाजी
0: आपने
1: नहीं की गई थी,
0: नवनिधि जी?
1: बट
0: क्या
1: दे
0: कुछ
1: आर
0: दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ
1: देखिए
0: था?
1: देखिए आज आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज़ बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे,
0: तो ऐसे
1: और समझा जाता है कि ये दहेज ही है।
0: जी, तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से,
1: ऐसा
0: क्या
1: एक इवेंट
0: डिमांड्स
1: हुआ
0: आए
1: था
0: थे?
1: जिसमें उन्होंने एक उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमारे लोगों ने जाकर के उनको गिरिबाला सिंह को समझाया, और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
0: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्वषा उनके
1: हाँ जी,
0: उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए
1: देखिए
0: सामने?
1: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
0: त्विशा
1: तो ये
0: नोएडा
1: बहुत
0: वापस
1: एक
0: आना
1: ऐसी
0: चाहती
1: स्टोरी
0: थी
1: है कि
0: नवनिधि
1: जिसमें
0: जी?
1: भेड़िया
0: जी जी जी
1: जी
0: बोलिए।
1: आती थी आती आना चाहती थी सर। ये एक एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
0: लेकिन नवनीधि जी, आपको आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर ऐसे?
1: नहीं नहीं पता नहीं था, पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली, मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
0: आप मान रहे हैं कि आपकी गलती है नवनिधि जी, की हनीमून में जो हुआ था, त्विशा को धक्का मारा समर्थ ने और आपने कुछ नहीं किया,
1: मानते हैं कि सर देखिए
0: जी
1: इंडिकेशन पर ऐसा है कि कोई भी आदमी जब इतनी शादी करता है तो ये सोच के नहीं करता है कि अगर कोई आदमी एक गलती कर देगा तो तुरंत आपकी शादी कैंसिल कर देगा। आदमी यही कोशिश करता है, बिटिया लोग यही कोशिश करती है कि उनका सुहाग बचा रहे, यही हमारी हिंदू परंपरा है सर। बेटियाँ सुराग को बचाने के लिए बहुत सारा दुख दर्द सहन कर लेती हैं, बाद में बताती हैं अपने माँ बाप को, एकदम इमिजिएटली शेयर भी नहीं करती हैं बहुत सारी चीज़। अगर आज उसने चैट में जो शेयर किया है और जो उसने हमको वर्बली बोला है तो उसका 20% ही पार्ट समझिए आप उसका। तो शिवा देन पेन वो पर स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उसने मेरे को बोला था पापा आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, मैं यहाँ से छोड़ के आऊँगी और हम लोग अपना बिजनेस करेंगे या जो भी है काम करेंगे एंड आई विल लीड माई लाइफ।
0: और जब जब त्विशा ने ये बोला था और त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी ये आप जानते थे नवनीत जी से, तो आपने उसे वहाँ से तुरंत निकाला क्यों नहीं फिर? ये एक बात नहीं थी, हनीमून के बाद भी काफ़ी सारे टैक्स तो आए थे, कुछ इंसिडेंट्स हुए
1: ऐसा,
0: थे
1: ऐसा नहीं, काफ़ी बात निकाला पर यह ऐसा मैंने आपको बोला ना कि लड़की का मोटिव हमेशा पॉजिटिव साइड में होता है, लड़की का मोटिव कभी भी ऐसा नहीं होता कि छोटे मोटे या किसी ऐसी दुर्घटना को वो अपने सीने पर लगा करके संबंध तोड़ दे। संबंध तोड़ना लड़की के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है सर उसकी लाइफ का। हाँ वो अब धीरे इतना सहन करने के बाद वो इस स्टेज में पहुंच गई थी कि वो हमने निर्णय उसके ऊपर छोड़ा हुआ था लड़की के ऊपर, मैंने कहा यू आर ट्राइंग यू मस्ट नॉट ट्राई हमने बोला था, बोले पापा आई एम ट्राइंग जस्ट लास्ट टाइम और अब अगर मुझे नहीं मिला तो आई विल लीव डेफिनेटली आई विल मेक ए फाइनल डिसीजन।
0: तो फिर अगर तो अगर
1: प्रोसेस है सर
0: नवनीत जी, अगर त्विशा उनके मैरिटल होम को छोड़कर वापस आना चाहती थी आपके पास, तो फिर ये एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया उसने, आपके अंडरस्टैंडिंग में क्यों लिया उसने?
1: उसने जी मेरे आप देखिए ना कि उसने एक्सट्रीम स्टेप लिया कि उसको मार दिया गया या बहुत डूबी है संदिग्ध है। आज हम PM2 की डिमांड करी है हमने बहुत सीरियसली, अगर आज भी अगर आप देखो जो कोर्ट में जमानत मिली है उसमें पुलिस ने जो दलील दी है कोर्ट को उसमें साफ साफ बोला है कि ये रसूखदार लोग हैं, ये केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनके जो क्लोज रिलेटिव हैं वो यहाँ के लोकायुक्त हैं सत्येंद्र सिंह जी, इनके हाई कोर्ट में जजेस हैं, इनके लोग हर जुडिशरी में जगह जगह बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, इन्हीं के लोग मेडिकल में बैठे हैं, पूरी फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है जो पहली PM रिपोर्ट आई है जो कि फाइंडिंग्स से मिसमैच कर रही है, इसलिए हमने PM2 की डिमांड की थी जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अप्रूव करने के बाद में कि आपका जो है तुरंत बॉडी भेजी जाए PM2 के लिए, वो रिजेक्ट कर दी गई और अंडर इसी जुडिशरी के लिए डाल दी गई अप्रूवल के लिए। इट मीन्स जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, अगर वो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है साक्ष्य खत्म हो जाते हैं तो इस न्याय प्रक्रिया का कोई भी फायदा नहीं है।
0: नवनीत जी त्विशा का बॉडी अभी भी मॉर्चुरी में है,
1: स्ट्रॉन्ग है,
0: आपका डिमांड है कि PM2
1: अभी भी मॉर्चुरी में, अभी भी मॉर्चुरी में
0: पोस्टमार्टम हो जाए, समर्थ अभी
1: अब्सकॉन्ड सर मैं तो मेरा रिक्वेस्ट है
0: नवनीत जी समर्थ कहां है, उसका बेल डिनाई हो चुका है अभी,
1: ये तो पुलिस से पूछना चाहिए सर, समर्थ इन रसूखदार लोगों के घर पर ही मिलेगा, कहाँ मिलेगा सर, इनको देखना चाहिए, आज पुलिस उसको कस्टडी में नहीं ले पाती है तो ये पुलिस का फेलियर है ना सर।
0: 12th मई की रात 10 बजे आखिरी बात हुई त्विशा से
1: सर, ये बहुत
0: जी उस वक्त क्या कहा उसने, कोई परेशानी बताई थी उस
1: मेरी रिक्वेस्ट है सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, इस केस को अगर मेरे को आपको न्याय दिलाना है तो मेरे लिए प्लीज़ आवाज़ उठाइए, इस बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से बचाइए, डिकम्पोज होने से बचाइए, इसको तुरंत PM2 के लिए दिल्ली भिजवाइए, प्लस सर इसकी स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी
0: वो तो NDTV करेगी और कर रही है सर।
1: आप सोचते हैं सर कि ऐसे इसमें मुझे कोई न्याय मिल रहा है? जी सर
0: नहीं, हम तो लगातार करेंगे
1: ऐसी न्याय प्रक्रिया में, आप में विक्टिम का बाप होकर मैं खुद विक्टिमाइज हो रहा हूँ आपके जुडिशियल सिस्टम में सर, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा एक दूसरी जगह।
0: नवनीति जी मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, मैं आपको वादा देता हूँ, अभी नेशनल टेलीविजन पर मैं आपको वादा दे रहा हूँ कि NDTV आपके साथ खड़ा है और जस्टिस लाने तक हम इस स्टोरी को रिपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं आपको नेशनल टीवी 9 PM NDTV न्यूज पर आपको लाइव ले रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या पहले कभी त्विशा ने अपने इन-लॉज की मारपीट या जुल्म की बात की थी आपसे, कोई पुरानी शिकायत कुछ भी था हनीमून के बाद, ऐसा कुछ भी सामने आया था?
1: बहुत पुरानी शिकायत है सर, हमने उसके व्हाट्सएप चैट्स हैं जो हमने आज कोर्ट में सरेंडर किए हैं साक्ष्य के रूप में, जो मौखिक बात होती है सर वो होती है, पर वो एक इस तरीके का पूरा जो एक सीक्वेंस चला है कि उस लड़की ने सोचा कि ये कैसे भी चेंज हो जाए, ये ऐसी बात ना करें, उसने एक प्रोसेस को झेला है सर, वो बाद में एंड तक उसको प्रोसेस को झेलती रही है सर। वो व्हाट्सएप चैट हमने सबमिट करी है कोर्ट में सर।
0: आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं नवनीति जी, ऐसे आपने बताया है मीडिया को, आपको आपका कहना है कि सबूत मिटाए गए ये आरोप, आप किस चीज के आधार पे लगा रहे हैं? आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं आप
1: ये बिल्कुल बिल्कुल इस जी मेरे हमको कोर्ट परिसर में हमको अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बुलवानी पड़ गई, क्योंकि कोर्ट परिसर में हमारे ऊपर अटैक हुआ, दो बार हमको अटैक किया गया, ये बहुत सारे हमको परेशानी हुई है। और यहाँ पर हम अकेले सर, हमारा कोई नहीं है, आज कोई यहाँ पर लॉयर खड़ा नहीं हो सकता इनके सामने, यही तो लोग हैं, इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा सर यहाँ पर, ये सिस्टम के खिलाफ कौन खड़ा होगा सर? आप देख रहे हैं ना कि अप्रूवल देने के बाद में जुडिशरी में डाल दिया गया PMTU का अप्रूवल सर, इट मींस जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सर। और आज जो बेल मिली है सर, किस बिना पर बेल मिली है, इसमें पुलिस ने दलील दी कि ये लोग बहुत रसूख वाले लोग हैं, पुलिस ने बोला सर, और ये साथियों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये पुलिस का कहना है, मेरा भी कहना नहीं है सर।
0: नवनीति जी,
1: पहले वाले अक्यूज को छोड़ दिया गया,
0: गिरीबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं, क्या आपको लगता है इसलिए पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन में डिले किया है?
1: जी जी सर, रिटायर्ड जज भी हैं, आज भी वो प्रेजेंट में भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, हटाई नहीं गई हैं सर, आज भी वो रन कर रही हैं ऑफिस। अगर कोई आदमी ऑफिस रन कर रहा है, उसके खिलाफ आदमी कैसे खड़ा हो सकता है? यहाँ वकील लॉबी नहीं खड़ी हुई, हमें यहाँ वकील नहीं मिले सर, वी आर इन अ वेरी डेंजरस एंड प्रिकेरियस सिचुएशन सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
0: नो, NDTV इज विद यू, दैट्स व्हाई यू आर लाइव।
1: यहाँ पे मुझे मैं को ये नहीं प्रूव करना
0: सर। नवनीति जी, वी अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज वाचिंग यू राइट नाउ,
1: वी आर अंडर वेरी मच प्रेशर।
0: यस यस
1: सर, सर
0: आई वांट टू आस्क यू टू मोर क्वेश्चंस।
1: दिया जाता प्रेशर ऐसे दिया जाता है, FIR लॉज नहीं हो रही थी 3 दिन तक सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यहाँ पर 5 दिन के बाद FIR लॉज हो रही है,
0: नवनीति जी
1: की प्रताड़ना हो रही है, ये सब क्या दिखा रहा है सर? CM हाउस में प्रोटेस्ट किया, CM ने हमें 1 मिनट का समय नहीं दिया मिलने का सर,
0: और आपका
1: CM ने हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया सर किसी भी काम का।
0: आपका बेटा एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर भी है, मेरी बात हुई है उनसे भी, और मुझे पता चल गया कि कितना काम करना पड़ा एक FIR लॉज करने के लिए, लेकिन एम्स में अभी भी नवनीति जी त्विशा का बॉडी पड़ी रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, और दूसरा पोस्टमार्टम क्यों मांग रहे हैं आप स्पेसिफिकली?
1: जी स्पेसिफिकली सर मैं बताऊं, उसमें जो फैक्ट्स लिखे गए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं सर बिल्कुल भी, उसमें बहुत सारी चीजें जो मैच नहीं कर रही हैं, जो हमारी फेंडिंग्स आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीजें मैच ही नहीं कर रही हैं सर, उसमें पूरा ये कैकस निकल के आएगा सर। मैं तो कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है आपको वॉम ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जवाब देना पड़ जाएगा इसमें, इसलिए ये PM2 की रिपोर्ट जुडिशरी में डाली गई है कि अप्रूवल ड्यूरी, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको डिले करके, इसको डिकेइंग प्रोसेस में डाल करके, डिकम्पोज करके इसको सत्य को छुपाया जा रहा है।
0: आखिरी सवाल नवनीति जी, आप मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, अब आपकी सरकार से एक ही मांग क्या है? आपने बोला है कि उन्होंने आपको कोई भी अश्योरेंस नहीं दिया है, तो क्या मांग रहे हैं आप?
1: भाई हम मिलने का समय नहीं दिया सर, मिलने का समय नहीं दिया, 1 मिनट के लिए नहीं मिले वो हमसे, कोई अश्योरेंस नहीं आया सर हमारे पास में, और ये मुझे लगता है कि असमर्थता व्यक्त करी, या उनके लिए ये केस कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, दूसरी चीज़ें प्रायोरिटीज में हैं उनके, एक गरीब आदमी की बेटी मर जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
0: ओके नवनीति शर्मा, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू
1: जी।
0: नाउ आई वांट टू शो यू व्हाट द मदर इन लॉ of Twisha Sharma, a retired judge, by the way, named Giribala Singh, has said about Twisha. She held a press conference, and I'll show you some clips of what she said. But this is what she's basically said. She said, Pooja Pat was just a show. She basically is saying that her daughter-in-law was an imposter and a liar, that Twisha took an abortion pill, that Twisha consumed large amounts of marijuana, that Twisha called Samarth and told him she had taken a pill, that Twisha visited a psychiatrist and attended counseling as well,
2: that there was psychological pressure from the glamour world because she was a model, a beauty queen, as well as someone who tried to get into the film industry. Trisha had shivering hands and withdrawal symptoms suggesting that she was a drug addict. This is what the mother-in-law is alleging. And that Trisha was taking Olsar-Pram medicine and that her behavior kept changing after her Delhi visit. Young women take extreme steps easily, says the mother-in-law. No FIR has been lodged yet. The husband, the son of the woman you're about to hear, is still absconding. Here's what she's saying.
3: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas hum log saath ko gaye the jab wo chah rahi thi wo first day ki pregnancy ko reverse kare to wo baar baar wo pooch rahi thi why do you want this aur aapne ye kadam kyun uthaya tab usne mere samne kaha I have consumed a large quantities marijuana unke samne usne kabool kiya maine large quantities mein marijuana consume kiya hai. She was on schizophrenic drugs. अगर उसने कुछ कहा भी है क्योंकि एक schizophrenic के अंदर दो लोग बात करते हैं इकट्ठा बात करते हैं क्या सही है क्या गलत है सिर्फ WhatsApp चैट से कुछ भी नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता है उसका था आई नीड माई स्पेस मुझे दूरी भी चाहिए मेरे मायके वाले मुझे डिसओन किए हैं और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इन टू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी.
2: And joining me live now is Madhuri Patel. She's a friend of Trisha Sharma's. She was also training for Miss India in 2013. That's where she got to know Trisha. She's a Mrs. Universe from 2023. And from the beauty world, she became friends with Trisha. Madhuri, thank you for agreeing to speak to us tonight here on NDTV. Your first thoughts, your first reaction when you heard about Trisha Sharma's death. Madhuri, welcome.
4: Thank you for inviting me. My first thought when I saw this news was I was shocked to the core because the Trisha I knew was a very strong, independent girl. The Trisha I knew was somebody who will never take such kind of step. So it was very, very shocking to me and because we met at such a young age and for similar motive in 2013, what is going on in the news didn't make any sense. So maybe we want unbiased investigation in this particular situation because there has been, like I just saw her mother-in-law's
2: yes.
4: statement and that's so insensitive. Somebody has just died. We have a proof. See, she is saying she went to psychologist or psychiatrist. But are you not the reason she went for that?
2: Mm.
4: I mean, that still proves that they are the one who are doing something. That's why she has to go there. Now, there is no, see, schizophrenia is such a disease. If somebody has it, they have different personalities. We have known each other for a long period of time. I never seen her having any kind of schizophrenia.
2: Were you in touch with Trisha, Madhuri? Were you in touch with her?
4: Sir, I was in touch with her until 2018-19. After that, life goes on. I shifted to different cities and the countries. So I lost touch. But I met her when we were very young. We were in our early 20s. We were connected on socials, not that much, but we were. I knew what kind of girl she is. She was, sorry. And what right now is happening in our country, what her parents are asking is a simple thing, sir. They are only asking to have a fair investigation done. You know the nature of smaller cities, how they are. If you are a bigger person in a smaller city, you are in a way considered a god, you know.
2: Yeah.
4: And to the in the position their in-laws are and they are well connected, you exactly know how corrupt our country is, how the ground zero investigation can impact the justice for Trisha. So what they're asking is the fair investigation. They want her body to come to Delhi.
2: Yeah.
4: I'm learning everything through the news. From last 2 days, I'm not able to sleep peacefully. Her image, her face is coming in my mind all the time.
2: And you know Madhuri, today,
4: and, yes.
2: Since NDTV first reported this story 2 days ago, the fact is the entire media has woken up to it now. Trisha's body is still in the morgue right now. For, you know, the last 1 week, her body has been in the morgue. Her parents have been protesting outside the chief minister's office. They want a second post-mortem and a fair investigation. They don't believe, like you rightly said, they don't believe that a fair investigation will happen in Bhopal. And most important of all, Madhuri, is that her husband is absconding. What do you think of that? Her husband is absconding. The police is looking for him right now, while the entire media is reporting this story.
4: Exactly the question. Why is he absconding? Why is he not there? If he is really, he has done nothing, why is he not there to actually answer the questions? That also raises the suspicion. Also, the dowry case, the demand. See, we think that somebody is very educated. We think somebody has a very good background. But it's clear from the chats that they were also saying to her the very simple thing, ki hum tujhe kaise palenge agar tu job nahi karegi. Right? That's a, such a small thing to, say, or maybe yeah. For them it was a small thing, but it's a very big thing for a girl who gets married to the family. आप ये कहना चाह रहे हो कि आप उस छोटे मतलब लड़की का पेट भी नहीं भरना चाह रहे हो. On top of that, they have this audacity. She has the audacity, her mother-in-law, to go on the press conference and instead of sympathizing, instead of actually being supportive, and if they have done nothing, why are they actually blaming something and doing the witch hunt? Why are they blaming her that she is, मतलब ये हमारे देश में बहुत नॉर्मल हो गया है कि अगर किसी लड़की के को हमें शेम करना है, नेम करना है, तो बोल दो that she is on drugs, she is schizophrenic, she is mentally ill. This is not done.
2: Yeah. Madhuri Patel, I feel your emotions and I can only tell all those who knew Twisha, now or in the past, that NDTV, when we reported this story for the first time and forced the entire media to wake up to it, we did it with a purpose, and that is justice for Twisha, and we will remain on this story till the very end. Madhuri, thank you for agreeing to speak to us. It means a lot to us. Thank you.
4: Thank you so much for inviting me.
2: And joining me live now, because I wanted to tell you that in 2021, a young woman named Vismay, remember, had also died in a dowry case. This was in Kollam district of Kerala. She had become a national headline at that time. It was Vismay in 2021. It is Twisha in 2026. And I want to bring her brother, Vijit V. Nair, Vismaya's brother, into our coverage today to prove to you the fact that dowry is legal in India. Dowry is normal in India. And dowry death is totally okay in India. Vijit, welcome. I don't know what is on your mind tonight, Vijit. It was Vismaya in 2021. Yes, sir, yes, sir. It is Twisha now in 2026. Many of the details sound very, very similar. What do you think? You know, to me, it sounds like dowry is legal in India and dowry death is a normal thing in India, Vijit.
5: It's very sad to hear, sir. It's very sad to hear. It's what happened just now I've seen in medias and all. Like in June 2021, all the nation is talking about my sister, who is very well educated, and she's actually pursuing his doctor's degree, and she's been found dead in her in-law's house. It's a national talk that time. All are talking about the dowry, and all the world is talking about dowry. Still, I'm for the justice. Even the honorable courts, district courts, high courts, even everyone already say that the guy who is her in-law been involved in this death. And at last, now they are the same cases on the Supreme Court, Honorable Supreme Court. Still, we are fighting for the justice. That's already 5 years, sir. See, this is now the normal in our country. Like, kabhi-kabhi, udhar-udhar, anywhere we see, this is normal nowadays. That time, like, as a parent or as a brother, I feel very, very sad to give dowry to my sister, That time, everyone is saying, this is a culture or it's,
2: Yeah.
5: What we are giving to our sister is our hard-earned money. Like my father, he worked around 15-20 years in the Middle East for piling out my sister. And at the end of the day, what happened, sir? Now we are just, see, last 5 years, every day it's going it's like a slow race. And still I am fighting for my sister's justice. But why it is happening in our India? Like if you see in any other nations, this is not there, right? like we for marrying my sister, I am giving so and so sovereign of gold and so and so sovereign of money and car, anything. Now see, this has happened in one of the educated family.
2: Yes.
5: She's I think coming for Miss India or I don't know, something like that. You know, yeah. It's very sad to hear. No, my sister, she's doing his bachelor of degree in Ayurveda. You know, she's a doctor. And well, this guy who married Vijit, my sister, he's a police officer. You know, it's a vehicle inspector.
2: Vijit, no, justice has not been served. That is the main point you're saying. Justice has not been served yet. The courts and the judiciary have not delivered justice in Vismaya's case.
5: Yes, sir, last 5 years I am fighting for my sister's justice. And you know, Honorable District Court, Honorable High Court of Kerala, everyone agreed this guy is being found guilty. And now the case is on the Honorable Supreme Court. Still 5 years, sir. 5 years I am fought for the justice. So it will only happen in India, sir. None other anywhere in the world, it will not happen like that. Still, for a victim, I am just fighting for the justice. This is what happening in India, sir. It's very sad to say. You know, it's already 5 years passed. And, you know, it's happened, you know, see, I'm not saying, just think about the normal people, sir. At least I'm just spending that much money for my sister. But the guys who are not having money, where is the justice will be going?
2: Yeah.
5: It's happening to our courts, inside our courts. It's very sad to say, sir. It's very sad to say.
2: It is extremely sad to see, and I don't know when this is going to end. That's why I wanted to provoke our viewers, Vijit, this morning, at the beginning of my show today, by saying that dowry is legal in this country. People say that dowry was abolished in our country in 1961. I laugh at that. It's a joke. Because dowry, parents like yours, families like Krishna's, they work hard to pay off these families. They don't call it dowry, but it is dowry. Society in our country is bigger than the law. Shadi culture, wedding culture, Kalyanam culture is bigger than the law in this country. And that is why young, bright, promising women, citizens of our country, like Vismaya in 2021 and Twisha this year, are no longer with us. The fight for justice will have to continue. Vijit Nair, thank you very much for your time today and speaking to me here on NDTV.
5: Thanks a lot, sir. Thanks a lot.
2: I wanted to remind all our viewers and all of India about Vismaya. We will not forget her either. Thank you. And moving on to our second lead story of the night, MK Stalin had us thinking that he was playing statesman, sober and measured, a very calibrated note on Vijay's government when it was formed, almost statesman-like. But that was 1 week ago when Vijay was being sworn in. Now Stalin, well, he's saying the Vijay government could collapse at any time. This from a man who is widely believed to still hold sway over the allies who are keeping the Vijay government afloat and Vijay as chief minister. Now, the Vijay government aced its floor test last week, as you saw. But MK Stalin knows and Vijay knows that numbers on paper and numbers you can actually hold are very different things in Tamil Nadu. Then there is a Thirumavalavan bombshell, the VCK chief. Remember the VCK, one of the small parties earlier with the DMK, now supporting Vijay. The VCK chief has confirmed what was only whispered. Speaking to local Tamil media, he said that the DMK and the AIA DMK were in talks, a grand alliance with Thiruvavalavan as chief minister, all engineered to deny Vijay the chair even after the VCK had declared support. So what is MK Stalin playing at? Is this psychological warfare keeping Chief Minister Vijay sleeping with one eye open? Or does Stalin genuinely have the levers to pull this government down? Tamil Nadu chessboard is lit up again. The Vijay government had better keep watching its back.
6: இப்படி தொடர்ந்து நடைபெற்றக்கூடிய தேர்தல்களில் பல வெற்றிகளை கண்டதுண்டு, பல தோல்விகளையும் நாம் சந்தித்திருக்கிறோம். ஆனால் தோல்வியடைய நேரத்தில் தான் திமுக எப்பொழுதுமே ஒரு ஃபினிக்ஸ் பறவையை போல கிளர்ந்து எழக்கூடிய நிலையில் அது தரும். இங்க கூட பேசியவர்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு சோகத்தில் இருப்பது போல நான் பார்க்கிறேன். நாங்கள் மட்டும் இல்லை, இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும் இல்லை, எதிரில் இருக்கக்கூடிய காட்சி பார்க்கலாம்.
7: மக்கள் பல பெண்கள்.
2: And talking about raising the heat, earlier today a DMK MLA speaking on Stalin's Kolhapur loss actually abused the people of the constituency, calling them worthless. Listen in.
8: எதெல்லாம் பேச வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். இன்னும் நான்கு மாதம் தான் இந்த ஆட்சி இருக்கும் என்பதை நான் சொல்லிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஒருத்தர் இருக்கான் ஆதவர்த்தனாங்கிறவன் என்ன நினைச்சோன்னா, நீ தைரியம் திராணி இருந்தா உன்னுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணு, நானும் ராஜினாமா பண்றேன். பாரியா திருச்சி வந்திருக்க போட்டு பார்ப்போம், போட்டு பார்ப்போமா.
2: So is MK Stalin really signaling some kind of project to destabilize the Vijay government, or are these just rhetorical mind games that one usually plays in the wake of a big election of this kind? Joining me live now, Satya Kumar is national spokesperson of the TVK. Harish Mohammed Ibrahim is a political analyst. He supports the DMK. Satya Kumar, I'd like to come to you first. What did you make of MK Stalin today saying, you know, the Vijay government could fall in 6 months?
9: This is just an usual political rhetoric.
2: Reason you don't being, think it's a threat or a warning?
9: Never. What is there to threaten us?
2: Mm.
9: People have given the mandate. We are a stable government because Congress has come on our side. Communists are our side. VCK is on our side. And there's a fragment coming from ADMK on our side. So entire state's other political party are supporting us. We are going to be a stable government, not just for 5 years. We are going to be there for next decades to come. Mark these words. Because my leader, Talapathy Vijay, in the last 1 week, he has delivered what he has promised. And he will also deliver what he has not promised to the people of Tamil Nadu in the days to come.
2: Okay.
9: For the welfare and for ensuring that the new era of social justice comes to Tamil Nadu, reaching the schemes to the nook and corner of Tamil Nadu.
2: Okay. Harish, if these are just mind games, then it's understandable. But is it more than that? Then we've got something to talk about.
10: Even on the second day, Mr. Stalin have categorically denied that they won't support or they won't give any kind of disturbances to the incoming chief minister and the TVK for that matter for the next 6 months. And having said that, even the VCK, even the IUML have had a meeting with Mr. MK Stalin before they go and give the support when the president's rule was imminent. And the leader, Mr. MK Stalin, is the one who have informed Mr. VCK Thirumavalavan and Mr. IUML Kadir Mohideen Sahab, go and give their support because we don't want to have another election or a president rule. Having said that, the DVK spokesperson giving a thumping speech stating that they will be ruling for another 1 year, one decade. Having said that, whether you have any kind of remorse or as a practicing advocate, you are doing an anti-defection law by splitting two factions of the ADMK government and making sure the ADMK party split into two halves, and your chief minister brazenly going and meeting the faction even before they give the support. So this has the prima facie evidence that there has been a horse trading has been going on. And mark my points, Mr. Shiv, if there is any kind of portfolio is assigned to these 25 people of AADMK, there has been a precedent given under 2020 Shyam Sundar case in Manipur.
2: Just Harish, explain the 6 months. Harish, explain this 6 month period that MK Stalin has referred to. What is that 6 month
10: period? That is the generous time as a leader, as an incoming chief minister who doesn't have any proficiency, who doesn't have any relevance to the
2: Understood.
11: He has given a, he was given a magnanimous 6 months to rule and to learn the things.
2: Let Satya Kumar respond to you. Okay, so you've, you know, so you've basically said that the very fact that Vijay is talking to a faction of the AIADMK that's been split down the middle means it's game on. Satya, how would you respond to that? The allegation is horse trading is taking place, and therefore
11: and
2: the gloves.
11: There should be shame of it.
2: And now all is fair. All is fair. 6 months is being given as a generous act, says the DMK from MK Stalin. But if this horse trading is going on, then the gloves are going to come off.
9: Shiv, I completely deny what Mr. Ibrahim has told for a simple reason. He is no one to decide the course of law. There is a due process of law. The matter is pending before the speaker. And everybody in any party has a right to come and support other party with the consent of their own party. Whether they have got the consent or not, it is a due process of law that need to be checked. He is no one to decide and say what is the result of this the actions. So the matter is pending before the speaker. There is no anti-defection law.

0: In a major development in the Twisha death probe, the bail plea of her husband, Samarth Singh, has been rejected by the court as the probe into the death of Twisha under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to abscond with a 10,000 rupees reward announced for him and passport cancellation proceedings initiated against him. Two new CCTVs, meanwhile, have emerged which throws light on the last 53 minutes of Twisha's life. In the first CCTV tape, Twisha can be seen going up the stairs. In the other CCTV, it can be seen how Twisha is being given CPR and then being taken out. There's a claim and counterclaim from both the families. Let's take a look at them.
1: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas hum log saath ko gaye the jab wo chah rahi thi wo first day ki pregnancy ko reverse kare to wo baar baar wo pooch rahi thi why do you want this aur aapne ye kadam kyon uthaya tab usne mere samne kaha I have consumed a large quantities marijuana unke samne usne kabool kiya maine large quantities mein marijuana consume kiya hai. She was on schizophrenic drugs. अगर उसने कुछ कहा भी है क्योंकि एक schizophrenic के अंदर दो लोग बात करते हैं इकट्ठा बात करते हैं क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता है उसका था आई नीड माई स्पेस मुझे दूरी भी चाहिए मेरे मायके वाले मुझे डिसोन किए हैं और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी.
0: You heard what the mother-in-law had to say. Now listen into what Twisha's father had to tell NDTV's Shivarur. Let's take a listen into what he had to say just a short while back.
2: समर्थ से मुलाकात कब हुई थी एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला
3: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई हमें शादी से कुछ छः महीने पहले साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया अप्रूवल दे दिया था.
2: क्या ये कुछ
3: आ रही है सर अब
2: जी जी आ रही है क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था.
3: नहीं नहीं जल्दी शादी नहीं हुई है एक साल भर डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
2: शादी में क्या दहेज दिया था आपने
3: नवनिधि
2: जी क्या दहेज की कुछ बात थी दहेज दिया था आपने ऐसा कुछ था.
3: देखिए आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज़ बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे
2: तो ऐसे क्या
3: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
2: जी. तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से
3: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है फलाना नहीं है इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया फलाना ये हो गया हमने हमारे लोगों ने जा करके उनको गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने एफआईआर में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे कैसे पिलाएंगे अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
2: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई कुछ डिमांड्स आए
3: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियाँ ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए। इट वॉज़ ए केस ऑफ लाइक दैट, पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे। हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
2: त्विशा वापस आना चाहती थी,
3: जिसमें बेड़िया
2: जी जी जी
3: आती थी, आती आना चाहती थी। सर ये एक एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है। सर दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
0: Well, a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has now ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her in-laws' house in Bhopal. Here is her story.
4: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a Rs 10,000 bounty announced on her husband Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry death. While a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Trisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved difficult. Trisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. And beyond her professional achievements, Trisha was also known for her interest in wellness and spirituality. In 2024, during her corporate career phase, Trisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to Trisha's family, within months of the marriage, allegations of dowry harassment and mental distress started surfacing. Her cousin Meenakshi spoke with NDTV and said that she was a jolly and happening girl.
5: इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी, और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कहती वही फैमिली में यार पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है, ऐसे ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए। क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए, 15 किलो उसका वेट लूज हुआ।
4: Now, as investigators piece together the events leading up to her death, questions continue to grow around the circumstances of Trisha Sharma's final months. With a husband still absconding and a family seeking accountability, the case has sparked fresh conversations around dowry harassment, mental distress, and the hidden struggles behind seemingly perfect lives. We report NDTV.
0: Now, if you thought that Trisha's case was the only case, think again, because there is another case that's come to light from Noida. A 14-month-old marriage has ended in tragedy in Greater Noida in Uttar Pradesh, where a 25-year-old woman, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. Her family has accused her husband and in-laws of dowry harassment and murder, alleging demands for a Fortuner, SUV and rupees 50 lakh in cash. According to the complainant, Deepika had called her family on May 17, that's just yesterday, claiming that she was being beaten by her husband and in-laws. Hours later, relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have now arrested the husband and father-in-law, while further investigation in the case is currently underway.
6: Right now, we are standing just outside the mortuary center. Behind me, you can see the visuals over here. The deceased postmortem has already been done. It took approximately 3.5 hours to complete the postmortem. Right now, you can see the ambulance is being just taken out from this mortuary center of sector 94, and it's going towards the residence of the victim. Here you can see the body of the deceased can be seen through the pan right now. And earlier what we have seen that in the FIR, if just go by the FIR details, what we have seen that there were seven accused that have been named in the FIR. But so far, the Gautam Buddh Nagar police team has apprehended two individuals. One, the father-in-law of the deceased, and second one, her husband. So right now, the visuals just outside the mortuary center, you can see the victim's family members over here, and they have been constantly demanding for justice. And since morning, they have been waiting over here to get the body. So the entire process was videographed over here. And right now, what we are seeing that the body has been taken in that very one towards the residence of the victim. Video journalist Ashok Mahale, Akhil for NDTV 24/7.
0: Moving on to some other stories that we're tracking, fuel prices have sparked a fresh political showdown with the opposition attacking the centre over the second price hike of CNG. CNG prices have gone up by 1 rupee per kilogram. This was the second CNG price hike in Delhi NCR since May 15th. Congress has blamed the government for failing to tackle the impact of the Gulf conflict, saying common people are suffering while the Prime Minister is abroad. The BJP has meanwhile hit back, accusing Rahul Gandhi of irresponsible remarks and claiming that India has only seen a minimal fuel price hike despite global disruptions caused by the war. There are reactions that are coming in on that political story. Let's listen in.
7: Diesel aur petrol ke daam itne bada rahe hain. Modi ji agar yahi election ke pehle karte तो मालूम होता था उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के इन्फ्लेशन अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल डीजल गैस सबके दाम बढ़ाए तो इससे ये दर्शाता है कि फोर साइटेडनेस हमारे बीजेपी को सरकार को मोदी साहब को नहीं है
8: तेलंगाना सरकार 36-37% वैट कलेक्ट करते हैं हर लोगों के ऊपर क्यों आप लोग अगर जनता के ऊपर प्रेम है तो क्यों नहीं करते हम किए ना मोदी सरकार बीजेपी सरकार हम वैट कम किया है अलग अलग स्टेट्स में आप क्यों नहीं किया है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है सारी दुनिया से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं लगभग 40 देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं 40 देशों से
9: दाम तो बढ़ेगा ही अब यूं चल रहे तो थोड़ा सा तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कन्वॉय था वो दो गाड़ी में आ गया है माननीय प्रधानमंत्री बोले हम सिर्फ दो गाड़ी लेकर निकलेंगे तो हम लोग सबको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है हफ्ता में एटलीस्ट 2 डेज की 3 डेज देश और पृथ्वी अभी एक संकट से जा रहे इसमें हम लोग को एडजस्ट करना ही है अभी और आगे का दिन अभी अच्छा हो जाएगा तो कोई चिंता नहीं
10: देश में पेट्रोल डीजल एलपीजी पीएनजी की सप्लाई सामान्य है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है, ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है।
0: A tragic incident occurred at an elephant camp in Kodagu district where a woman tourist lost her life after an elephant reportedly fell on her during a clash between two elephants. Now, the deceased has been identified as a native of Chennai. The accident took place while elephants were being bathed in the Kaveri River at the Dubari camp. During the bathing session, an elephant named Kanjan allegedly attacked another elephant. In the chaos, one of the elephants lost balance and fell onto the other tourist. The woman got trapped under the elephant and died on spot. MK Stalin had us thinking he'd play statesman, a measured note on Vijay's government, almost statesman-like. But that was a week ago when Vijay was being sworn in. Now he's saying the Vijay government could collapse at any time. This from a man who is widely believed to still hold sway over the allies, keeping Vijay afloat as chief minister. The Vijay government aced his flow test last week, but Stalin knows and Vijay knows that numbers on paper and numbers you can actually hold a very different things in Tamil Nadu. Then there is the bombshell. The VCK chief has confirmed what was whispered. DMK and AIADMK were in talks. A grand alliance with the chief minister. An all-engineer to deny Vijay the chair, even after VCK had declared support. So what is Stalin actually playing at? Is this psychological warfare keeping Chief Minister Vijay sleeping with one eye open? Or does Stalin genuinely have the levers to pull this government down? The Tamil Nadu chessboard is lit up again. The Vijay government had better keep its watching its back.
11: 1949 தொடங்கிய நம்முடைய கழகம் தொடர்ந்து 52 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 57 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 62 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, அதற்கு பிறகு 67 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 71 இப்படி தொடர்ந்து நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தல்களில் பல வெற்றிகளை கண்டதுண்டு, பல தோல்விகளையும் நாம் சந்தித்திருக்கிறோம். ஆனால் தோல்வியடைய நேரத்தில் தான் திமுக எப்பொழுதுமே ஒரு ஃபினிக்ஸ் பறவை போல கிளர்ந்து எழக்கூடிய நிலையில அது வரும். இங்கே கூட பேசியவர்களெல்லாம் ஏதோ ஒரு சோகத்தில் இருப்பது போல நான் பார்க்குறேன். நாங்கள் மட்டும் இல்லை, இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும் இல்லை, எதிரில் இருக்கக்கூடிய கூட இங்கே சோகமாக காட்சி பார்க்கலாம்.
0: And just when you thought Tamil Nadu politics could not get any more cinematic, director Venkat Prabhu has entered the frame with a full-on callback to GOAT. The filmmaker met Chief Minister Vijay and gifted him the now iconic TN07CM 2026 number plate, the very one used in the greatest of all time. Yes, the same plate that had fans screaming prediction or promotion back in the year 2024, sharing photos from the meeting on X, Venkat Prabhu wrote, and I quote, "A history is made from a thought to a vision to this moment. Happy to have met our Honourable Chief Minister today and present the very first manifestation of GOAT. This is only the beginning."

0: In some other news, Norway has conferred its highest honour, the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit, on Prime Minister Narendra Modi. The Grand Cross is the highest grade of the Royal Norwegian Order of Merit. This is the 32nd global honour for the Prime Minister.
1: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
2: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
3: भय से भरोसा is the transition which is happening now. भय से मुक्ति is the victory.
0: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है. जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की.
5: I think it will be good to bring back the confidence of industry.
6: The people of Kerala understood.

0: In a major development in the Twisha death probe, the bail plea of her husband, Samarth Singh, has been rejected by the court as the probe into the death of Twisha under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to abscond with a 10,000 rupees reward announced for him and passport cancellation proceedings initiated against him. Two new CCTVs, meanwhile, have emerged which throws light on the last 53 minutes of Twisha's life. In the first CCTV tape, Twisha can be seen going up the stairs. In the other CCTV, it can be seen how Twisha is being given CPR and then being taken out. There's a claim and counterclaim from both the families. Let's take a look at them.
1: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas hum log saath ko gaye the jab wo chah rahe the wo first day ki pregnancy ko reverse kare to wo baar baar wo pooch rahe the why do you want this aur aapne ye kadam kyon uthaya tab usne mere samne kaha I have consumed a large quantities marijuana unke samne usne kabool kiya maine large quantities mein marijuana consume kiya hai. She was on schizophrenic drugs. अगर उसने कुछ कहा भी है क्योंकि एक schizophrenic के अंदर दो लोग बात करते हैं इकट्ठा बात करते हैं क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता है उसका था आई नीड माई स्पेस मुझे दूरी भी चाहिए मेरे मायके वाले मुझे डिसओन किए हैं और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी.
0: You heard what the mother-in-law had to say. Now listen into what Twisha's father had to tell NDTV's Shivarur. Let's take a listen into what he had to say just a short while back.
2: समर्थ से मुलाकात कब हुई थी एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला
3: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया अप्रूवल दे दिया था.
2: क्या ये कुछ
3: आ रही है सर अब
2: जी जी आ रही है क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था.
3: नहीं नहीं जल्दी शादी नहीं हुई है एक साल भर डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
2: शादी में क्या दहेज दिया था आपने
3: नवनिधि
2: जी क्या दहेज की कुछ बात थी दहेज दिया था आपने ऐसा कुछ था.
3: देखिए आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज़ बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे
2: तो ऐसे क्या
3: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
2: जी. तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से
3: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है फलाना नहीं है इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया फलाना ये हो गया हमने हमारे लोगों ने जाकर के उनको गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने एफआईआर में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे कैसे पिलाएंगे अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
2: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई कुछ डिमांड्स आए सामने?
3: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट। हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी एक्चुअली। बेटियाँ हैं ना, बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए। इट वॉज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे। हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
2: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी,
3: जिसमें बेड़िया
2: जी
3: आती थी आना चाहती थी। सर ये एक भेड़िए ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड। बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
0: Well, a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has now ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her in-laws' house in Bhopal. Here is her story.
4: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a Rs 10,000 bounty announced on her husband Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry death. While a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Trisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved difficult. Trisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. And beyond her professional achievements, Trisha was also known for her interest in wellness and spirituality. 2024, during her corporate career phase, Trisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to Trisha's family, within months of the marriage, allegations of dowry harassment and mental distress started surfacing. Her cousin Meenakshi spoke with NDTV and said that she was a jolly and happening girl.
5: इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी, और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहती वही फैमिली में यार, पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है। ऐसे ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए, क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए। 15 किलो उसका वेट लूज हुआ।
4: नाउ एज इन्वेस्टिगेटर्स पीस टुगेदर द इवेंट्स लीडिंग अप टू हर डेथ, questions continue to grow around the circumstances of Trisha Sharma's final months. With a husband still absconding and a family seeking accountability, the case has sparked fresh conversations around dowry harassment, mental distress, and the hidden struggles behind seemingly perfect lives. We report NDTV.
0: Now, if you thought that Trisha's case was the only case, think again, because there is another case that's come to light from Noida. A 14-month-old marriage has ended in tragedy in Greater Noida in Uttar Pradesh, where a 25-year-old woman, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. Her family has accused her husband and in-laws of dowry harassment and murder, alleging demands for a Fortuner, SUV and rupees 50 lakh in cash. According to the complainant, Deepika had called her family on May 17, that's just yesterday, claiming that she was being beaten by her husband and in-laws. Hours later, relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have now arrested the husband and father-in-law, while further investigation in the case is currently underway.
6: Right now, we are standing just outside the mortuary center. Behind me, you can see the visuals over here. The deceased postmortem has already been done. It took approximately 3.5 hours to complete the postmortem. Right now, you can see the ambulance is being just taken out from this mortuary center of sector 94, and it's going towards the rest.

0: residence of the victim. Here you can see the body of the deceased can be seen through the pan right now. And earlier what we have seen that in the FIR, if just go by the FIR details, what we have seen that there were seven accused that have been named in the FIR. But so far, the Gautam Buddh Nagar police team has apprehended two individuals. One, the father-in-law of the deceased, and second one, her husband. So right now, the visuals just outside the mortuary center, you can see the victim's family members over here, and they have been constantly demanding for justice. And since morning, they have been waiting over here to get the body. So the entire process was videographed over here. And right now, what we are seeing that the body has been taken in that very one towards the residence of the victim. Video journalist Ashok Mahale, Akhil for NDTV 24/7.
1: Moving on to some other stories that we're tracking, fuel prices have sparked a fresh political showdown with the opposition attacking the centre over the second price hike of CNG. CNG prices have gone up by 1 rupee per kilogram. This was the second CNG price hike in Delhi NCR since May 15th. Congress has blamed the government for failing to tackle the impact of the Gulf conflict, saying common people are suffering while the Prime Minister is abroad. The BJP has meanwhile hit back, accusing Rahul Gandhi of irresponsible remarks and claiming that India has only seen a minimal fuel price hike despite global disruptions caused by the war. There are reactions that are coming in on that political story. Let's listen in.
2: Diesel aur petrol ke daam itne bada rahe hain. Modi ji agar yehi election ke pehle karte तो मालूम होता था उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के इन्फ्लेशन अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल डीजल गैस सबके दाम बढ़ाए तो इससे ये दर्शाता है कि फोर साइटेडनेस हमारे बीजेपी को सरकार को मोदी साहब को नहीं है
3: तेलंगाना सरकार 36-37% वैट कलेक्ट करते हैं हर लोगों के ऊपर क्यों आप लोग अगर जनता के ऊपर प्रेम है तो क्यों नहीं करते हम किए ना मोदी सरकार बीजेपी सरकार हम वैट कम किया है अलग अलग स्टेट्स में आप क्यों नहीं किया है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है सारी दुनिया से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं लगभग 40 देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं 40 देशों से
4: दाम तो बढ़ेगा ही अब युद्ध चल रहे तो थोड़ा सा तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कन्वॉय था वो दो गाड़ी में आ गया है माननीय प्रधानमंत्री बोले हम सिर्फ दो गाड़ी लेकर निकलेंगे तो हम लोग सबको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है हफ्ता में एटलीस्ट 2 days की 3 days देश और पृथ्वी अभी एक संकट से जा रहे इसमें हम लोग को एडजस्ट करना ही है अभी और आगे का दिन अभी अच्छा हो जाएगा तो कोई चिंता नहीं
5: देश में पेट्रोल डीजल एलपीजी पीएनजी की सप्लाई सामान्य है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है
1: अ ट्रैजिक इंसिडेंट ऑकर्ड एट एन एलिफेंट कैंप इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट वेयर अ वुमन टूरिस्ट लॉस्ट हर लाइफ आफ्टर एन एलिफेंट रिपोर्टेडली फेल ऑन हर ड्यूरिंग अ क्लैश बिटवीन टू एलिफेंट्स नाउ द डिसीज हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ नेटिव ऑफ चेन्नई द एक्सीडेंट टुक प्लेस व्हाइल एलिफेंट्स वर बीइंग बेथ इन द कावेरी रिवर एट द डुबारी कैंप ड्यूरिंग द बेथिंग सेशन एन एलिफेंट नेम कंजन अलेजेडली अटैक्ड अनदर एलिफेंट In the chaos, one of the elephants lost balance and fell onto the other tourist. The woman got trapped under the elephant and died on spot. M.K. Stalin had us thinking he'd play statesman, a measured note on Vijay's government, almost statesman-like. But that was a week ago when Vijay was being sworn in. Now he's saying the Vijay government could collapse at any time. This from a man who is widely believed to still hold sway over the allies, keeping Vijay afloat as chief minister. The Vijay government aced his flow test last week, but Stalin knows and Vijay knows that numbers on paper and numbers you can actually hold are very different things in Tamil Nadu. Then there is the bombshell. The VCK chief has confirmed what was whispered. DMK and AIADMK were in talks. A grand alliance with the chief minister, and all engineered to deny Vijay the chair, even after VCK had declared support. So what is Stalin actually playing at? Is this psychological warfare keeping Chief Minister Vijay sleeping with one eye open? Or does Stalin genuinely have the levers to pull this government down? The Tamil Nadu chessboard is lit up again. The Vijay government had better keep its watching its back.
6: 1949 தொடங்கிய நம்முடைய கழகம் தொடர்ந்து 52 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 57 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 62 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, அதற்கு பிறகு 67 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 71 இப்படி தொடர்ந்து நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தல்களில் பல வெற்றிகளை கண்டது உண்டு, பல தோல்விகளையும் நாம் சந்தித்திருக்கிறோம். ஆனால் தோல்விடைய நேரத்தில் தான் திமுக எப்பொழுதுமே ஒரு ஃபினிக்ஸ் பறவையை போல கிளர்ந்து எழக்கூடிய நிலையில அது வரும். இங்கே கூட பேசியவர்களெல்லாம் ஏதோ ஒரு சோகத்தில் இருப்பது போல நான் பார்க்குறேன். நாங்கள் மட்டும் இல்லை, இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும் இல்லை, எதிரில் இருக்கக்கூடிய கூட இங்கே சோகமாக உட்கார்ந்து காட்சி பார்க்கலாம்.
1: And just when you thought Tamil Nadu politics could not get any more cinematic, director Venkat Prabhu has entered the frame with a full-on callback to GOAT. The filmmaker met Chief Minister Vijay and gifted him the now iconic TN07CM2026 number plate, the very one used in the greatest of all time. Yes, the same plate that had fans screaming prediction or promotion back in the year 2024, sharing photos from the meeting on X, Venkat Prabhu wrote, and I quote, "A history is made from a thought to a vision to this moment. Happy to have met our Honorable Chief Minister today and present the very first manifestation of GOAT. This is only the beginning."

0: अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आज आपको विश्वास से कहता हूं, यह हमारी गारंटी है। यह केवल संभावनाओं की नहीं, यह एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कई सीईओस भारत के वाइब्रेंट गुजरात और अन्य इन्वेस्टर समिट में भी बड़े उत्साह के साथ हमेशा भाग लेते रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर इसे न्यू फ्रंटियर की ओर ले जाना चाहिए, और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे।
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन गोइंग एंगेजमेंट विद द नॉर्डिक लीडर्स मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बियॉन्ड कल्चरल एक्सचेंजेस ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंसेज एंड हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग्स द विजिट अंडरस्कोर्स न्यू दिल्लीज इंटेंट टू बिल्ड डीप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद द नॉर्डिक रीजन। हियर इज अ रिपोर्ट ऑन व्हाई दिस मैटर्स।
2: The geopolitical importance of the Nordic region has intensified drastically. With Finland and Sweden recently joining NATO, the regional security architecture has been completely rewired, leaving Russia isolated in the Arctic Council. Simultaneously, an expanding Russia-China polar partnership is rewriting global trade and maritime dynamics. The rewired NATO security order leaves Northern Europe highly vulnerable to infrastructure threats. A going Sino-Russian polar alignment is fast-tracking new energy and shipping corridors. As a result, these contested Arctic sea lanes are transforming from scientific zones into arenas of intense global military and resource competition. New Delhi enters this summit aiming to convert occasional friendly dialogue into a permanent, sustained strategic partnership. India is no longer treating these states as isolated markets. Instead, New Delhi wants a deep, structural alliance that aligns Nordic capital and technology with India's massive manufacturing and security needs. India seeks permanent structure alliances to secure trusted technology corridors. This is critical to building resilient global supply chains in AI, semiconductors and batteries, reducing dependence on China. Furthermore, India wants co-developed defense technologies and advanced maritime capabilities to protect its interests. India's goals extend directly into maritime and resource sovereignty. Rapid ice melt in the Arctic opens up the strategic North Sea route. India wants to extend its Chennai-Vladivostok trade corridor onwards to Murmansk and the Nordics to bypass traditional maritime choke points. Environmentally, because polar ice disrupts Indian monsoon, New Delhi is pushing for

0: the food for
1: work,
0: oilers
1: food,
0: many years ago, similar situation. So the point
1: food
0: is
1: role,
0: this: when it comes to governments, they have to deal with it, as Mr. Kothari said, behind the scenes and perhaps diplomatically. But when it comes to corporations, within the four corners of the law and the American law, if you can settle a matter and move on and get a clean slate, why not? It's an economic cost. It protects it. It restores your credibility. It protects your shareholders, and it enables you to work more effectively in an environment where you are obviously keen to work in, which is the United States.
1: Okay. Look, gentlemen, I'm out of time. We'll leave it over there. I'd like to thank you very much for joining us. I'm going to briefly move on to some other news. The Prime Minister has interacted with top leaders from Norway's business and research sectors. Remember, he's on a five-nation tour. He's on nation four right now. In Norway, he travels to Italy next. These are some images which have come in. He's been there as part of the India-Norway Business and Research Summit, also the Nordic Summit, which is focusing on expanding cooperation in key future-oriented sectors. The discussions covered areas such as green energy, offshore wind, green hydrogen, shipping, healthcare technology, robotics innovation, and higher education. Major Norwegian companies have been investing in India, and there's a sense that there is a great deal more which can be achieved.
2: अक्टूबर 2025 में हमने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टेपा लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आज आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कई सीईओज भारत के वाइब्रेंट गुजरात और अन्य इन्वेस्टर समिट में भी बड़े उत्साह के साथ हमेशा भाग लेते रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर इसे न्यू फ्रंटियर की ओर ले जाना चाहिए, और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे।
1: Meanwhile, the Prime Minister's ongoing engagement with Nordic leaders marks a significant shift in India's foreign policy. Beyond cultural exchanges, traditional dance performances and high-level bilateral meetings, the visit underscores Delhi's intent to build deep, long-term strategic partnerships with the Nordic region. We'll tell you why and leave you with this report.

0: उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी.
1: You heard what the mother-in-law had to say. Now listen into what Trisha's father had to tell NDTV's Shiv Arur. Let's take a listen into what he had to say just a short while back.
2: समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
3: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई. हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था.
2: क्या ये कुछ
3: आ रही है सर अब?
2: जी जी आ रही है. क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
3: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है. एक साल भर, 1.5 साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
2: शादी में क्या दहेज दिया था आपने नवनिधि जी? क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
3: देखिए आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए. आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे.
2: तो ऐसे क्या
3: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
2: जी? तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
3: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया. हमारे लोगों ने जा कर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए. उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
2: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
3: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने. ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट. हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी. एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए. इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट. पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे. हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई.
2: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी नवनिधि जी,
3: भेड़िया
2: जी जी जी बोलिए.
3: आना चाहती थी सर. ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर. दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड. बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी. तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे.
1: Well, a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has now ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her in-laws' house in Bhopal. Here is her story.
4: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Twisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a Rs 10,000 bounty announced on her husband, Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry theft, while a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Twisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved difficult. Twisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. Beyond her professional achievements, Twisha was also known for her interest in wellness and spirituality. In 2024, during her corporate career phase, Twisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to Twisha's family, within months of the marriage, allegations of dowry harassment and mental distress started surfacing. Her cousin Meenakshi spoke with NDTV and said that she was a jolly and happening girl.
5: Itna jolly, itni happening ladki thi, aur shaadi ke baad wo mujhse baat thoda kam kar rahi thi. To maine usse pucha, maine kaha kya hua, kehti wahi family mein yaar pata hi hai shaadi ke baad ye hota hai, mere ko baat karne mein thoda wo dar lagta hai. Aise indication usne kaafi diye. क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए. 15 किलो उसका वेट लूज हुआ.
4: Now as investigators piece together the events leading up to her death, questions continue to grow around the circumstances of Twisha Sharma's final months. With a husband still absconding and a family seeking accountability, the case has sparked fresh conversations around dowry harassment, mental distress and the hidden struggles behind seemingly perfect lives. We report NDTV.
1: Now, if you thought that Twisha's case was the only case, think again, because there is another case that's come to light from Noida. A 14-month-old marriage has ended in tragedy in Greater Noida in Uttar Pradesh, where a 25-year-old woman, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. Her family has accused her husband and in-laws of dowry harassment and murder, alleging demands for a Fortuner, SUV and rupees 50 lakh in cash. According to the complainant, Deepika had called her family on May 17, that's just yesterday, claiming that she was being beaten by her husband and in-laws. Hours later, relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have now arrested the husband and father-in-law, while further investigation in the case is currently underway.
6: Right now, we are standing just outside the mortuary center. Behind me, you can see the visuals over here. The deceased postmortem has already been done. It took approximately 3.5 hours to complete the postmortem. Right now, you can see the ambulance is being just taken out from this mortuary center of sector 94, and it's going towards the residence of the victim. Here you can see the body of the deceased can be seen through the pan right now. And earlier what we have seen that in the FIR, if just go by the FIR details, what we have seen that there were seven accused that have been named in the FIR. But so far, the Gautam Buddha Nagar police team has apprehended two individuals. One, the father-in-law of the deceased, and second one, her husband. So right now, the visuals just outside the mortuary center, you can see the victim's family members over here. and they have been constantly demanding for justice, and since morning they have been waiting over here to get the body. So the entire process was videographed over here, and right now what we are seeing that the body has been taken in that very one towards the residence of the victim. Video journalist Ashok Mahale, Akhil for NDTV 24/7.
1: Moving on to some other stories that we're tracking, fuel prices have sparked a fresh political showdown, with the opposition attacking the centre over the second price hike of CNG. CNG prices have gone up by 1 rupee per kilogram. This was the second CNG price hike in Delhi NCR since May 15th. Congress has blamed the government for failing to tackle the impact of the Gulf conflict, saying common people are suffering while the Prime Minister is abroad. The BJP has meanwhile hit back, accusing Rahul Gandhi of irresponsible remarks and claiming that India has only seen a minimal fuel price hike despite global disruptions caused by the war. There are reactions that are coming in on that political story. Let's listen in.
7: Diesel aur petrol ke daam itne bada rahe hain. Modi ji agar yahi election ke pehle karte तो मालूम होता था. उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के इन्फ्लेशन, अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में, चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा. इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ाए. तो इससे ये दर्शाता है कि फोरसाइटेडनेस हमारे बीजेपी को, सरकार को, मोदी साहब को नहीं है.
8: तेलंगाना सरकार 36-37% वैट कलेक्ट करते हैं हर लोगों के ऊपर. क्यों आप लोग अगर जनता के ऊपर प्रेम है तो क्यों नहीं करते? हम किए ना, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, हम वैट कम किया है अलग अलग स्टेट्स में, आप क्यों नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं. राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ, ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है. सारी दुनिया से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं. लगभग 40 देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, 40 देशों से.
9: दाम तो बढ़ेगा ही, अब यूं चल रहे तो थोड़ा सा तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा. माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कन्वॉय था वो दो गाड़ी में आ गया है. माननीय प्रधानमंत्री बोले हम सिर्फ दो गाड़ी लेकर निकलेंगे. तो हम लोग सबको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, हफ्ता में एटलीस्ट 2 डेज की 3 डेज. देश और पृथ्वी अभी एक संकट से जा रहे, इसमें हम लोग को एडजस्ट करना ही है. अभी और आगे का दिन अभी अच्छा हो जाएगा, तो कोई चिंता नहीं.
10: देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ, और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है. ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है, और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है.
1: A tragic incident occurred at an elephant camp in Kodagu district, where a woman tourist lost her life after an elephant reportedly fell on her during a clash between two elephants. Now, the deceased has been identified as a native of Chennai. The accident took place while elephants were being bathed in the Kaveri River at the Dubari camp. During the bathing session, an elephant named Kanjan allegedly attacked another elephant. In the chaos, one of the elephants lost balance and fell onto the other tourist. The woman got trapped under the elephant and died on spot. MK Stalin had us thinking he'd play statesman, a measured note on Vijay's government, almost statesman-like. But that was a week ago when Vijay was being sworn in. Now he's saying the Vijay government could collapse at any time. This from a man who is widely believed to still hold sway over the allies, keeping Vijay afloat as chief minister. The Vijay government aced his flow test last week, but Stalin knows and Vijay knows that numbers on paper and numbers you can actually hold are very different things in Tamil Nadu. Then there is the bombshell. The VCK chief has confirmed what was whispered. DMK and AIADMK were in talks. A grand alliance with the chief minister. And all engineered to deny Vijay the chair, even after VCK had declared support. So what is Stalin actually playing at? Is this psychological warfare keeping Chief Minister Vijay sleeping with one eye open? Or does Stalin genuinely have the levers to pull this government down? The Tamil Nadu chessboard is lit up again. The Vijay government had better keep its watching its back.
11: 1949 தொடங்கிய நம்முடைய கழகம் தொடர்ந்து 52 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 57 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 62 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, அதற்கு பிறகு 67 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 71 இப்படி தொடர்ந்து நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தல்களில் பல வெற்றிகளை கண்டதுண்டு, பல தோல்விகளையும் நாம் சந்தித்திருக்கிறோம். ஆனால் தோல்வியடைய நேரத்தில் தான் திமுக எப்பொழுதுமே ஒரு ஃபினிக்ஸ் பறவையை போல கிளர்ந்து எழக்கூடிய நிலையில அது வரும். இங்கே கூட பேசியவர்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு சோகத்தில் இருப்பது போல நான் பார்க்குறேன். நாங்கள் மட்டும் இல்லை, இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும் இல்லை, எதிரில் இருக்கக்கூடிய கூட இங்கே சோகமாக உட்கார்ந்து காட்சி பார்க்கலாம்.
1: And just when you thought Tamil Nadu politics could not get any more cinematic, director Venkat Prabhu has entered the frame with a full-on callback to GOAT. The filmmaker met Chief Minister Vijay and gifted him the now iconic TN07CM 2026 number plate. The very one used in the greatest of all time. Yes, the same plate that had fans screaming prediction or promotion back in the year 2024, sharing photos from the meeting on X, Venkat Prabhu wrote, and I quote, "A history is made from a thought to a vision to this moment. Happy to have met our Honourable Chief Minister today and present the very first manifestation of GOAT. This is only the beginning."

0: her husband asked whose baby I was carrying. There were allegations on Twitter that she was perhaps carrying an illegitimate child. Next up, mother-in-law says Twisha visited a psychiatrist and attended counseling. Her in-laws continuously blamed that she perhaps was having some kind of a mental illness. To which these are some screenshots of the messages that Twisha sent. She said that I'm very disturbed, come take me away. They don't wish anything nice for me. Then, mother-in-law says Twisha had shivering hands withdrawal symptoms, pardon me, claiming that she was taking drugs, she was taking marijuana, and post that she was having drug withdrawal symptoms. But Twisha sent this message to her brother in which she said that all of them think I do drugs and that's why I'm in a bad mood. The last statement coming out of the mother-in-law, which she says young women take extreme steps easily and that is why she killed herself. That's the claim that Twisha's in-laws are making, that she died by suicide. But this is again a message which Twisha sent to her family in which she said they have no empathy for the other person and that they don't want me to ever be happy. Hence, these are some of the claims, the counterclaims coming out from both the sides of the family. Earlier today, our managing editor, Shivarur, spoke with Twisha's father. Take a look.
1: समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
2: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
1: क्या ये कुछ
2: आ रही है सर अब?
1: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
2: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है, एक साल भर, डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
1: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनिधि जी, क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
2: देखिए आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे,
1: तो ऐसे क्या
2: समझा जाता है कि ये दहेज ही है।
1: जी तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
2: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया, हमने हमारे लोगों ने जाकर के उनको गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
1: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
2: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है, इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने, ब्रदर ने बोला नहीं कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बिटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
1: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी,
2: जिसमें बेड़िया
1: जी
2: आना चाहती थी। सर ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड। बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हैरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
0: Well, nearly 72 hours since her death came to the limelight, Twisha's mother-in-law, Giribala Singh, a retired judge, has spoken out, blaming her now-dead daughter-in-law over her habits and medication.
3: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas, hum log saath ko gaye the. Jab wo chah rahi thi, wo first day ki pregnancy ko reverse kare, to wo baar baar wo pooch rahi thi, why do you want this? Aur aapne ye kadam kyun uthaya? Tab usne मेरे सामने कहा, आई हैव कंज्यूम्ड लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया, मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है। शी वॉज ऑन शिजोफ्रेनिक ड्रग्स। अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिजोफ्रेनिक के अंदर दो लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता है। उसका था, आई नीड माई स्पेस, मुझे दूरी भी चाहिए, मेरे मायके वाले मुझे डिसओन किए हैं, और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री, कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी।
0: So you've heard claims and counterclaims from both the sides of the family, but let's tell you more about Twisha Sharma herself, a 33-year-old young life lost too soon. A life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has ended in tragedy. Twisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. Our next report telling you more. A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Twisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a rupees 10,000 bounty announced on her husband Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry death. While a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Twisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved difficult. Twisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. Beyond her professional achievements, Twisha was also known for her interest in wellness and spirituality. In 2024, during her corporate career phase, Twisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to Twisha's family, within months of the marriage, allegations of dowry harassment and mental distress started surfacing. Her cousin Meenakshi spoke with NDTV and said that she was a jolly and happening girl
4: इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी, और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहती वही फैमिली में यार, पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है. ऐसे ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए, क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए. 15 किलो उसका वेट लूज हुआ.
5: Now, as investigators piece together the events leading up to her death, questions continue to grow around the circumstances of Twisha Sharma's final months. With a husband still absconding and a family seeking accountability, the case has sparked fresh conversations around dowry harassment, mental distress, and the hidden struggles behind seemingly perfect lives. We report NDTV.
0: A 14-month-old marriage has ended in tragedy in Greater Noida, Uttar Pradesh. A 25-year-old woman, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. Her family has accused her husband and in-laws of dowry harassment and murder, alleging demands for a Fortuner SUV and rupees 50 lakh in cash. According to the complaint, Deepika had called her family on May 17, that's yesterday, claiming that she was being beaten by her husband and in-laws. Hours later, relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have now arrested the husband and father-in-law, while further investigation is underway.
6: Right now, we are standing just outside the mortuary center. Behind me, you can see the visuals over here. The deceased postmortem has already been done. It took approximately 3.5 hours to complete the postmortem. Right now, you can see the ambulance is being just taken out from this mortuary center of sector 94, and it's going towards the residence of the victim. Here you can see the body of the deceased can be seen through the pan right now. And earlier what we have seen that in the FIR, if just go by the FIR details, what we have seen that there were seven accused that have been named in the FIR. But so far, the Gautam Buddha Nagar police team has apprehended two individuals. One, the father-in-law of the deceased, and second one, her husband. So right now, the visuals just outside the mortuary center, you can see the victim's family members over here, and they have been constantly demanding for justice. And since morning, they have been waiting over here to get the body. So the entire process was videographed over here. And right now, what we are seeing that the body has been taken in that very one towards the residence of the victim. Video journalist Ashok Mahale, Akhil for NDTV 24/7.
0: With that, we slip into a very short break, but come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.
7: Across the country,
8: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
9: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला.
10: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है.
11: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल.
9: How will you celebrate?
10: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला.
12: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
13: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
14: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की.
9: One clip that went most viral was the non-interview. Crew spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
15: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
16: I think that was not the only incident.
17: Tobi poran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
8: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
18: So many attacks.
8: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining

0: it'll be good to bring back the confidence of industry.
1: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
2: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
3: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.
4: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
5: TVK headquarters here.
6: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
7: Thank the team for their incredible.
8: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7 with me, Tanisha Avasthi. Lots lined up for you on this edition, but first, as always, the headlines. 33-year-old Twisha's death shocks the nation. Dowry angle under probe. Absconding husband's bail plea has now been rejected. Retired judge mother-in-law now blames the victim. NDTV meanwhile accesses the heartbreaking chat of Twisha with family and friends. Prime Minister Modi conferred Norway's highest honour. The Grand Cross is the highest grade of the Royal Norwegian Order of Merit, awarded in recognition of exceptional service towards strengthening ties with Norway. Big decision by Chief Minister Suvendu Adhikari. State government scraps religion-based welfare schemes. West Bengal also planning a review of the OBC list. Tamil Nadu woman crushed to death after elephant falls on her in Karnataka's Dubre camp. State Environment Minister swings into action, orders tourists can only see elephants from 100 feet away. And Pakistan deploys troops and jets to Saudi under defense pact amid Iran war. Deployment includes 8,000 troops, JF-17 jets, drones, HQ-9 air defense systems. In a major development in the Twisha death probe, the bail plea of her husband Samarth Singh has been rejected by the court as the probe into the death of Twisha under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to abscond with a 10,000 rupees reward announced for him and passport cancellation proceedings initiated against him. Two new CCTVs, meanwhile, have emerged which throws light on the last 53 minutes of Twisha's life. In the first CCTV tape, Twisha can be seen going up the stairs. In the other CCTV, it can be seen how Twisha is being given CPR and then being taken out. There's a claim and counterclaim from both the families. Let's take a look at them.
9: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas hum log saath ko gaye the jab wo chah rahi thi wo first day ki pregnancy ko reverse kare to wo baar baar wo pooch rahi thi why do you want this aur aapne ye kadam kyon uthaya tab usne mere samne kaha I have consumed a large quantities marijuana unke samne usne kabool kiya maine large quantities mein marijuana consume kiya hai. She was on schizophrenic drugs. अगर उसने कुछ कहा भी है क्योंकि एक schizophrenic के अंदर दो लोग बात करते हैं इकट्ठा बात करते हैं क्या सही है क्या गलत है सिर्फ WhatsApp चैट से कुछ भी नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है उसका था I need my space मुझे दूरी भी चाहिए मेरे मायके वाले मुझे डिसोन किए हैं और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी.
8: You heard what the mother-in-law had to say. Now listen into what Twisha's father had to tell NDTV's Shivarur. Let's take a listen into what he had to say just a short while back.
10: समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
11: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
10: क्या ये कुछ
11: आ रही है सर अब?
10: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
11: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है, एक साल भर डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
10: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनीति जी क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
11: देखिए आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज़ बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे,
10: तो ऐसे क्या
11: समझा जाता है कि ये दहेज ही है।
10: जी तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
11: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमने हमारे लोगों ने जाकर के उनको गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने एफआईआर में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
10: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
11: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है, इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
10: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी
11: जिसमें भेड़िया
10: जी जी जी
11: आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
8: Well, a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has now ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her in-law's house in Bhopal. Here is her story.
12: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a Rs 10,000 bounty announced on her husband, Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry death. While a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Twisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved difficult. Twisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. Beyond her professional achievements, Twisha was also known for her interest in wellness and spirituality. In 2024, during her corporate career phase, Twisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to Twisha's family, within months of the marriage, allegations of dowry harassment and mental distress started surfacing. Her cousin Meenakshi spoke with NDTV and said that she was a jolly and happening girl.
13: इतना jolly, इतनी happening लड़की थी और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा क्या हुआ कहती वही फैमिली में यार पता ही है शादी के बाद ये होता है मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए 15 किलो उसका वेट लूज हुआ
12: नाउ एज इन्वेस्टिगेटर्स पीस टुगेदर द इवेंट्स लीडिंग अप टू हर डेथ क्वेश्चंस कंटिन्यू टू ग्रो अराउंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ त्विशा शर्मास फाइनल मंथ्स विद अ हस्बैंड स्टिल अब्सकॉन्डिंग एंड अ फैमिली सीकिंग अकाउंटेबिलिटी The case has sparked fresh conversations around dowry harassment, mental distress, and the hidden struggles behind seemingly perfect lives. We report NDTV.
8: Now, if you thought that Twisha's case was the only case, think again, because there is another case that's come to light from Noida. A 14-month-old marriage has ended in tragedy in Greater Noida in Uttar Pradesh, where a 25-year-old woman, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. Her family has accused her husband and in-laws of dowry harassment and murder, alleging demands for a Fortuner, SUV and rupees 50 lakh in cash. According to the complainant, Deepika had called her family on May 17, that's just yesterday, claiming that she was being beaten by her husband and in-laws. Hours later, relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have now arrested the husband and father-in-law, while further investigation in the case is currently underway.
14: Right now, we are standing just outside the mortuary center. Behind me, you can see the visuals over here. The deceased postmortem has already been done. It took approximately 3.5 hours to complete the postmortem. Right now, you can see the ambulance is being just taken out from this mortuary center of sector 94, and it's going towards the residence of the victim. Here, you can see the body of the deceased can be seen through the pan right now. And earlier, what we have seen that in the FIR, if just go by the FIR details, what we have seen that there were seven accused that have been named in the FIR. But so far, the Gautam Buddha Nagar police team has apprehended two individuals. One, the father-in-law of the deceased, and second one, her husband. So right now, the visuals just outside the mortuary center, you can see the victim's family members over here, and they have been constantly demanding for justice. Since morning, they have been waiting over here to get the body. So the entire process was videographed over here. And right now, what we are seeing that the body has been taken in that very one towards the residence of the victim. Video journalist Ashok Mahale, Akhil for NDTV 24/7.
8: Moving on to some other stories that we're tracking, fuel prices have sparked a fresh political showdown with the opposition attacking the centre over the second price hike of CNG. CNG prices have gone up by 1 rupee per kilogram. This was the second CNG price hike in Delhi NCR since May 15th. Congress has blamed the government for failing to tackle the impact of the Gulf conflict, saying common people are suffering while the Prime Minister is abroad. The BJP has meanwhile hit back, accusing Rahul Gandhi of irresponsible remarks and claiming that India has only seen a minimal fuel price hike despite global disruptions caused by the war. There are reactions that are coming in on that political story. Let's listen in.
15: Diesel aur petrol ke daam itne bada rahe hain. Modi ji agar yahi election ke pehle karte तो मालूम होता था उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के इन्फ्लेशन अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल डीजल गैस सबके दाम बढ़ाए तो इससे ये दर्शाता है कि फोर साइटेडनेस हमारे बीजेपी को सरकार को मोदी साहब को नहीं है
16: तेलंगाना सरकार 36-37% वैट कलेक्ट करते हैं हर लोगों के ऊपर क्यों आप लोग अगर जनता के ऊपर प्रेम है तो क्यों नहीं करते हम किए ना मोदी सरकार बीजेपी सरकार हम वैट कम किया है अलग अलग स्टेट्स में आप क्यों नहीं किया है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है सारी दुनिया से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं लगभग 40 देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं 40 देशों से
17: दाम तो बढ़ेगा ही अब युद्ध चल रहे तो थोड़ा सा तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कन्वॉय था वो दो गाड़ी में आ गया है माननीय प्रधानमंत्री बोले हम सिर्फ दो गाड़ी लेकर निकलेंगे तो हम लोग सबको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है हफ्ता में एटलीस्ट 2 days की 3 days देश और पृथ्वी अभी एक संकट से जा रहे इसमें हम लोग को एडजस्ट करना ही है अभी और आगे का दिन अभी अच्छा हो जाएगा तो कोई चिंता नहीं
18: देश में पेट्रोल डीजल एलपीजी पीएनजी की सप्लाई सामान्य है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है
8: अ ट्रैजिक इंसिडेंट ऑकर्ड एट एन एलिफेंट कैंप इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट वेयर अ वुमन टूरिस्ट लॉस्ट हर लाइफ आफ्टर एन एलिफेंट रिपोर्टेडली फेल ऑन हर ड्यूरिंग अ क्लैश बिटवीन टू एलिफेंट्स नाउ द डिसीज हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ नेटिव ऑफ चेन्नई The accident took place while elephants were being bathed in the Kaveri River at the Dubari camp. During the bathing session, an elephant named Kanjan allegedly attacked another elephant. In the chaos, one of the elephants lost balance and fell onto the other tourist. The woman got trapped under the elephant and died on spot. M.K. Stalin had us thinking he'd play statesman, a measured note on Vijay's government, almost statesman-like. But that was a week ago when Vijay was being sworn in. Now he's saying the Vijay government could collapse at any time. This from a man who is widely believed to still hold sway over the allies, keeping Vijay afloat as chief minister. The Vijay government aced his flow test last week, but Stalin knows and Vijay knows that numbers on paper and numbers you can actually hold are very different things in Tamil Nadu. Then there is the bombshell. The VCK chief has confirmed what was whispered. DMK and AIADMK were in talks. A grand alliance with the chief minister. And all engineered to deny Vijay the chair, even after VCK had declared support. So what is Stalin actually playing at? Is this psychological warfare keeping Chief Minister Vijay sleeping with one eye open? Or does Stalin genuinely have the levers to pull this government down? The Tamil Nadu chessboard

0: Now is young Twisha Sharma's father, Navnidhi Sharma, who has been protesting outside the Chief Minister's residence for the last few days, demanding justice and a fresh post-mortem. Her husband, Samarth, a well-known lawyer in Bhopal, has been absconding. His bail has been denied as well. And Navnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, आपका स्वागत है. मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है त्विशा के डेथ को लेकर. तो पहले मैं ये बोलूँगा कि वी एक्सप्रेस आर डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू यू सर. वी आर वेरी सॉरी टू हियर अबाउट दिस न्यूज़. मेरा पहला सवाल नवनिधि जी, मैं शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी? एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
1: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई. हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था.
0: क्या ये कुछ
1: आ रही है सर अब?
0: जी आ रही है. क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी? दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
1: नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है. एक साल भर, 1.5 साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
0: शादी में क्या दहेज दिया था आपने नवनिधि जी? क्या दहेज की कुछ बात थी? दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
1: देखिए आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए. आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे.
0: तो ऐसे क्या
1: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
0: जी. तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
1: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया. हमारे लोगों ने जा कर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए. उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
0: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी? तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
1: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने. ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट. हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी. एक्चुअली बेटियाँ ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए. इट वॉज़ ए केस ऑफ लाइक दैट. पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे. हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई.
0: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी
1: जिसमें भेड़िया
0: जी
1: आना चाहती थी सर. ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर. दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड. बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी. तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो

0: प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
1: लेकिन नवनीत जी, आपको आपको ये सब पहले ही पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
0: नहीं नहीं, पता नहीं था, पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इससे घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, आई वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली। मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
1: आप मान रहे हैं कि आपकी गलती है नवनीधि जी की, हनीमून में जो हुआ था, त्विशा को धक्का मारा समर्थ ने और आपने कुछ नहीं किया,
0: मानते हैं कि सर देखिए इंडिकेशन इंडिकेशन पर ऐसा है कि कोई भी आदमी जब इतनी शादी करता है तो ये सोच के नहीं करता है कि अगर कोई आदमी एक गलती कर देगा तो तुरंत आपकी शादी कैंसिल कर देगा। आदमी यही कोशिश करता है, बिटिया लोग यही कोशिश करती हैं कि उनका सुहाग बचा रहे, यही हमारी हिंदू परंपरा है सर। बेटियां सुराग को बचाने के लिए बहुत सारा दुख दर्द सहन कर लेती हैं, बाद में बताती हैं अपने माँ बाप को, एकदम इमीडिएटली शेयर भी नहीं करती हैं बहुत सारी चीज़। अगर आज उसने चैट में जो शेयर किया है और जो उसने हमको वर्बली बोला है तो उसका 20% ही पार्ट समझिए आप उसका। तो शिवाज इन पेन, वो पर स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उसने मेरे को बोला था पापा आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, मैं यहाँ से छोड़ के आऊँगी और हम लोग अपना बिजनेस करेंगे या जो भी है काम करेंगे एंड आई विल लीड माय लाइफ।
1: और जब जब त्विशा ने ये बोला था और त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी, ये आप जानते थे नवनीधि जी, तो आपने उसे वहाँ से तुरंत निकाला क्यों नहीं फिर? ये एक बात नहीं थी, हनीमून के बाद भी काफ़ी सारे टेक्स्ट आए थे, कुछ इंसिडेंट्स हुए थे।
0: ऐसा नहीं, काफ़ी बात निकाला, पर यह था मैंने आपको बोला ना कि लड़की का मोटिव हमेशा पॉजिटिव साइड में होता है, लड़की का मोटिव कभी भी ऐसा नहीं होता कि छोटे मोटे या किसी ऐसी दुर्घटना को वो अपने सीने पर लगा करके संबंध तोड़ दे। संबंध तोड़ना लड़की के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है सर उसकी लाइफ का। हाँ, वो अब धीरे इतना सहन करने के बाद वो इस स्टेज में पहुँच गई थी कि वो हमने निर्णय उसके ऊपर छोड़ा हुआ था, लड़की के ऊपर। मैंने कहा यू आर ट्राइंग, यू मस्ट नॉट ट्राई, हमने बोला था। बोले पापा आई एम ट्राइंग जस्ट लास्ट टाइम और अब अगर मुझे नहीं मिला तो आई विल लीव, डेफिनेटली आई विल मेक ए फाइनल डिसीजन।
1: तो फिर अगर अगर
0: प्रोसेस है सर,
1: नवनीत जी, अगर त्विशा उनके मैरिटल होम को छोड़कर वापस आना चाहती थी आपके पास, तो फिर ये एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया उसने, आपके अंडरस्टैंडिंग में क्यों लिया उसने?
0: उसने जी मेरे, आप देखिए ना कि उसने एक्सट्रीम स्टेप लिया कि उसको मार दिया गया, यह बहुत डूबी है, संदिग्ध है। आज हम PM2 की डिमांड करी है हमने बहुत सीरियसली। अगर आज भी अगर आप देखो जो कोर्ट में जमानत मिली है उसमें पुलिस ने जो दलील दी है कोर्ट को, उसमें साफ साफ बोला है कि ये रसूखदार लोग हैं, ये केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनके जो क्लोज रिलेटिव है वो यहाँ के लोकायुक्त हैं सत्येंद्र सिंह जी, इनके हाई कोर्ट में जजेस हैं, इनके लोग हर जुडिशरी में जगह जगह बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, इन्हीं के लोग मेडिकल में बैठे हैं। पूरी फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है जो पहली PM रिपोर्ट आई है जो कि फाइंडिंग से मिसमैच कर रही है, इसलिए हमने PM2 की डिमांड की थी जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अप्रूव करने के बाद में कि आपका जो है तुरंत बॉडी भेजी जाए PM2 के लिए, वो रिजेक्ट कर दी गई और अंडर इसी जुडिशरी के लिए डाल दी गई अप्रूवल के लिए। इट मीन्स जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर वो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, साक्ष्य खत्म हो जाते हैं, तो इस न्याय प्रक्रिया का कोई भी फायदा नहीं है।
1: नवनीधि जी, त्विशा का बॉडी अभी भी मॉर्चुरी में है,
0: स्ट्रॉन्ग है।
1: आपका डिमांड है कि PM2
0: अभी भी मॉर्चुरी में, अभी भी मॉर्चुरी में
1: पोस्टमार्टम हो जाए, समर्थ अभी अब्सकॉन्ड
0: सर, मैं तो मेरा रिक्वेस्ट है
1: नवनीधि जी, समर्थ कहाँ है, उसका बेल डिनाई हो चुका है अभी।
0: ये तो पुलिस से पूछना चाहिए सर, समर्थ इन रसूखदार लोगों के घर पर ही मिलेगा, कहाँ मिलेगा सर, इनको देखना चाहिए। आज पुलिस उसको कस्टडी में नहीं ले पाती है तो ये पुलिस का फेलियर है ना सर।
1: 12th मई की रात 10 बजे आखिरी बात हुई त्विशा से,
0: सर ये बहुत
1: जी, उस वक्त क्या कहा उसने, कोई परेशानी बताई थी उस
0: रात? मेरी रिक्वेस्ट है सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, इस केस को अगर मेरे को आपको न्याय दिलाना है तो मेरे लिए प्लीज़ आवाज़ उठाइए, इस बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से बचाइए, डिकम्पोज होने से बचाइए, इसको तुरंत PM2 के लिए दिल्ली भिजवाइए, प्लस सर इसकी स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी,
1: वो तो NDTV करेगी और कर रही है सर।
0: आप सोचते हैं सर कि ऐसे इसमें मुझे कोई न्याय मिल रहा है? जी जी सर,
1: नहीं, हम तो लगातार करेंगे
0: ऐसी न्याय प्रक्रिया में। आप में विक्टिम का बाप होकर के सर, विक्टिम का बाप हो, मैं खुद विक्टिमाइज हो रहा हूँ आपके जुडिशियल सिस्टम में। सर मैं कैसे सर्वाइव करूँगा एक दूसरी जगह?
1: नवनीत जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, मैं आपको वादा देता हूँ, अभी नेशनल टेलीविजन पर मैं आपको वादा दे रहा हूँ कि NDTV आपके साथ खड़ा है और जस्टिस लाने तक हम इस स्टोरी को रिपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं आपको नेशनल टीवी 9 PM NDTV न्यूज पर आपको लाइव ले रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या पहले कभी त्विशा ने अपने इन लॉज की मारपीट या जुल्म की बात की थी आपसे? कोई पुरानी शिकायत कुछ भी था हनीमून के बाद, ऐसा कुछ भी सामने आया था?
0: बहुत पुरानी शिकायत है सर, हमने उसके व्हाट्सएप चैट्स हैं जो हमने आज कोर्ट में सरेंडर किए साक्ष्य के रूप में। जो मौखिक बात होती है सर वो होती है, पर वो एक इस तरीके का पूरा जो एक सीक्वेंस चला है कि उस लड़की ने सोचा कि ये कैसे भी चेंज हो जाए, ये ऐसी बात ना करें, उसने एक प्रोसेस को झेला है सर, वो बाद में एंड तक उसको प्रोसेस को झेलती रही है सर। वो व्हाट्सएप चैट हमने सबमिट करी है कोर्ट में सर।
1: आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं नवनीति जी, ऐसे आपने बताया है मीडिया को, आपको आपका कहना है कि सबूत मिटाए गए, ये आरोप आप किस चीज के आधार पे लगा रहे हैं? आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, आप ये
0: बिल्कुल इस जी मेरे, हमको कोर्ट परिसर में हमको अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बुलवानी पड़ गई, क्योंकि कोर्ट परिसर में हमारे ऊपर अटैक हुआ, दो बार हमको अटैक किया गया, ये बहुत सारे हमको परेशानी हुई है। और यहाँ पर हम अकेले हैं सर, हमारा कोई नहीं है, आज कोई यहाँ पर लॉयर खड़ा नहीं हो सकता इनके सामने, यही तो लोग हैं, इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा सर? यहाँ पर ये सिस्टम के खिलाफ कौन खड़ा होगा सर? आप देख रहे हैं ना कि अप्रूवल देने के बाद में जुडिशरी में डाल दिया गया PM2 का अप्रूवल सर, इट मीन्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सर। और आज जो बेल मिली है सर, किस बिना पर बेल मिली है, इसमें पुलिस ने दलील दी कि ये लोग बहुत रसूख वाले लोग हैं, पुलिस ने बोला सर, और ये साथियों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये पुलिस का कहना है, मेरा भी कहना नहीं है सर।
1: नवनीति जी,
0: पहले वाले अक्यूज को छोड़ दिया गया,
1: गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं, क्या आपको लगता है इसलिए पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन में डिले किया है?
0: जी जी सर, रिटायर्ड जज भी हैं, आज भी वो प्रेजेंट में भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, हटाई नहीं गई हैं सर, आज भी वो रन कर रही हैं ऑफिस। अगर कोई आदमी ऑफिस रन कर रहा है उसके खिलाफ आदमी कैसे खड़ा हो सकता है? यहाँ वकील लॉबी नहीं खड़ी हुई, हमें यहाँ वकील नहीं मिले सर, वी आर इन अ वेरी डेंजरस एंड प्रिकेरियस सिचुएशन सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
1: नो, NDTV इज विद यू, दैट्स व्हाई यू आर लाइव।
0: मुझे मैं को ये नहीं प्रूव करना या सर,
1: नवनीति जी, वी अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज वाचिंग यू राइट नाउ,
0: वी आर अंडर वेरी मच प्रेशर।
1: यस यस
0: सर, सर
1: आई वांट टू आस्क यू टू मोर क्वेश्चंस।
0: दिया जाता प्रेशर ऐसे दिया जाता है, FIR लॉज नहीं हो रही थी 3 दिन तक सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: यहाँ पर 5 दिन के बाद FIR लॉज हो रही है,
1: नवनीति जी
0: की प्रताड़ना हो रही है, ये सब क्या दिखा रहा है सर? CM हाउस में प्रोटेस्ट किया, CM ने हमें 1 मिनट का समय नहीं दिया मिलने का सर,
1: और आपका
0: CM ने हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया सर किसी भी काम का।
1: आपका बेटा एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर भी है, मेरी बात हुई है उनसे भी, और मुझे पता चल गया कि कितना काम करना पड़ा एक FIR लॉज करने के लिए। लेकिन एम्स में अभी भी नवनीति जी त्विशा का बॉडी पड़ी रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, और दूसरा पोस्टमार्टम क्यों मांग रहे हैं आप स्पेसिफिकली?
0: जी स्पेसिफिकली सर मैं बताऊं, उसमें जो फैक्ट्स लिखे गए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं सर बिल्कुल भी, उसमें बहुत सारी चीजें जो मैच नहीं कर रही हैं, जो हमारी फेंडिंग्स आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मैच ही नहीं कर रही हैं सर, उसमें पूरा ये कैकस निकल के आएगा सर। मैं तो कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है आपको वॉम ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जवाब देना पड़ जाएगा इसमें, इसलिए ये PM2 की रिपोर्ट जुडिशरी में डाली गई है कि अप्रूवल ड्यूरी, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको डिले करके, इसको डिकेइंग प्रोसेस में डाल करके, डिकम्पोज करके इसको सत्य को छुपाया जा रहा है।
1: आखिरी सवाल नवनीति जी, आप मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, अब आपकी सरकार से एक ही मांग क्या है? आपने बोला है कि उन्होंने आपको कोई भी अश्योरेंस नहीं दिया है, तो क्या मांग रहे हैं आप?